0: வந்தே மாதரம்.
1: வந்தே மாதரம் சுஜலாம் சுஃபலாம் மலய ஜ சீதலாம்.

सुप्रभात एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की 7वीं तिथि, तदनुसार 29 जुलाई सन 2026 ईस्वी। आज का दिन हम सबों के लिए मंगलमय हो। स्टूडियो घड़ी में इस समय सुबह के 5:58 और 51 सेकेंड हो रहे हैं। अब आरंभ होता है हमारा आज का प्रसारण।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर सुबह के 6:00 को ही थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2024 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रूपये तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति की जब्त करने जैसे कठोर दंड भी शामिल है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि यह नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
1: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
0: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
2: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
0: वहीं भाजपा सांसद बासुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लाऊ श्रीकृष्ण देवरियालू और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू करने तक के लिए स्थगित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल

0: नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। इस बीच पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। गणपति भक्तों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे 11 से 27 सितंबर तक 246 गणपति विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा। इनमें मुंबई और पुणे को सावंतवाड़ी रोड, रत्नागिरी और मढ़गांव से जोड़ने वाली 184 आरक्षित रेलगाड़ियां और दीवा और खेड़ के बीच चलने वाली 62 अनारक्षित रेलगाड़ियां शामिल हैं। टिकट की बुकिंग 1 अगस्त से सभी टिकट काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू हो जाएगी। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की है। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान जताया है। कर्नाटक, केरला, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। गुलवीर राष्ट्रमंडल खेलों की स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। भारत पदक तालिका में 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 12 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर सुबह के 6:05 और 13 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन, शीर्षक है आत्मविश्वास। आलेख आरसी प्रसाद सिंह का और स्वर है पंकज मित्र का।
2: आज की ये सुबह कितनी सुहावनी है। सुनहली धूप में सारी धरती खिल उठी है। धीरे धीरे बहती हुई हवा के झोंके आ रहे हैं। पेड़ों की हरी हरी पत्तियां मस्ती में झूम रही हैं, चिड़ियां चहक रही हैं, फूल और पौधे मानो खुशी से नाच रहे हैं। छोटे छोटे किलगाड़ियां भरकर बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। क्या आपका हृदय इस आनंद मेले को देखकर हर्ष का अनुभव नहीं करता? क्या इस विराट संगीत समारोह में भाग लेने के लिए आपका मन आतुर नहीं हो उठता? तो समझ लीजिए, आप अपने जीवन में अनायास प्राप्त एक महान अवसर से हाथ धो रहे हैं। आप आज की जिंदगी नहीं जी रहे हैं। आपका शरीर आज की दुनिया में भले ही हो, पर मन अतीत के भोगे हुए क्षणों में उलझा है या भविष्य के बिहड़ जंगलों में भटक रहा है। और यही वो सबसे बड़ी बाधा है जो हमें सुख चैन से जीने नहीं देती। हम वर्तमान को भोग नहीं सकते, लेकिन अनागत या अतीत के सपनों का निरर्थक दाना बुनने में अपनी सारी शक्ति खर्च कर डालते हैं। फिर वर्तमान को अगर हम जीते भी हैं तो हारे थके मन से, मानो जीना नहीं चाहते, विवश होकर जीते हैं। लेकिन ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई, अगर हुई भी तो उधार की हुई, अपनी नहीं। क्योंकि जहां स्वतंत्रता नहीं, जहां अपना कहने लायक भी कुछ नहीं, और जहां अपना कहने लायक कुछ नहीं हो, वहां भला सुखी कैसे मिल सकता है? कारण स्पष्ट है, जिंदगी सदा वर्तमान है। बीता हुआ कल मर चुका है, वो कभी लौटकर आने वाला नहीं। आगामी कल अभी आया नहीं, फिर हाथ में तो वर्तमान ही है। कोयल जब वसंत ऋतु में आम की डाली पर पंचम स्वर अलापती है, तब क्या उसके सामने अतीत की कोई घटना रहती है? या गुलाब के फूल

0: जब बाग बागीचों में अपनी मुस्कान बिखेरते हैं, तब क्या वे भविष्य का कोई सुनहला स्वप्न देखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके इस तरह सहज रूप से मुस्कुराने का रहस्य उनके वर्तमान पलों की तन्मयता में है। गुरुदेव रविंद्रनाथ को जब गीतांजलि नामक काव्य कृति पर नोबेल पुरस्कार मिला था, तो एक वयोवृद्ध व्यक्ति उनके पास पहुंचकर बोला, क्या तुमने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है जो तुमने अपनी कविताओं में बार बार उसके गुण गाए हैं? रविंद्रनाथ उस समय तो कोई उत्तर नहीं दे सके, किंतु वो वृद्ध व्यक्ति भी सहज ही पिंड छुड़ाने वाला नहीं था। बार बार आ जाता और उनसे वही प्रश्न कर बैठता। एक दिन की बात है, कवि गुरु प्रातःकाल के भ्रमण से लौट रहे थे कि उन्हें सहसा एक विराट दर्शन की अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि वर्षा ऋतु के जो बादल रात भर बरसे हैं, अभी आकाश से कहीं दूर चले गए हैं और चारों ओर सुनहली धूप भी हंस रही है। सूर्य का प्रतिबिंब हजार हजार टुकड़ों में नीचे धरती पर पानी से भरे अनगिनत जलाशयों पर पड़ता है, लेकिन प्रत्येक प्रतिबिंब अपने आप में पूरा है, एक भी खंडित या विकलांग नहीं है, सब में पूरा सूर्य उतरा है। रविंद्रनाथ इस अद्भुत दृश्य को देखकर चमत्कृत से रह गए। उनकी प्रसन्नता का पारावार उमड़ पड़ा। जिस पथ से वो घर लौटते, उसी के किनारे वो वृद्ध व्यक्ति भी रहता था। सदा की भांति आज भी उसने कविवर को अपने घर के सामने से जाते देखा और देखते ही फुर्ती से दौड़कर उनको घेर लिया। किंतु इसके पहले कि वो अपने प्रश्न को दोहराए, रविंद्रनाथ की अपूर्व मस्ती भरी मुस्कुराहट को देखकर ही इतना मुग्ध हो गया कि उसके मुंह से निकल पड़ा, आज प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे मुखमंडल पर आनंद की आभा से ही मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। सचमुच वो दिन धन्य होता है जब हम आज की अनुभूति में आनंद विभोर हो जाते हैं। हमारा जीवन तभी सार्थक होता है, सही मायने में हम तभी जीते हैं।
1: आत्मविश्वास शीर्षक से आप सुन रहे थे आज का चिंतन। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:10 हो रहे हैं। आइए शामिल होते हैं ईश्वर भक्ति में। कार्यक्रम है वंदना।

मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में आपने सुना भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम। अगली पेशकश पुष्पा पगधरे और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में।

मन्ना अड्डे को आपने सुना। आप सुन रहे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना एफएम हजारीबाग से। अगली पेशकश शर्मा बंधु की आवाज में।

0: वंदना। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 6:39 और 45 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान की आज की कड़ी एपिसोड 45।
1: एपिसोड नंबर 45।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदरपूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी।

नमस्कार, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:50 होने को हैं। आइए डालते हैं एक नजर आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के ऊपर।

अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग विज्ञान वार्ता। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:20 पर। अगर फिल्में लोकगीतों का कार्यक्रम गीत संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। मॉर्निंग मेलोडी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। 9 बजे हम आपके लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग। 11 बजे से आपको हम पुनः लिए चलेंगे अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। दोपहर 1:10 पर प्रादेशिक समाचार होगा जिसे आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के और रांची केंद्र से। दोपहर 3 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। शाम 4:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT एपिसोड 1338। शाम 5 बजे आप सुनेंगे मुख्य समाचार प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इवनिंग मेलोडी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 5:02 से। खेती बारी ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

फिल्म संगीत शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से, और 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के रांची केंद्र से। जानकार ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 7:15 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स आप सुन सकेंगे शाम 7:30 पर। कानूनी सलाह ये प्रोग्राम आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। संसद समीक्षा प्रस्तुत किया जाएगा शाम रात 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम में आपकी चाहत समाचार संध्या। रात 8:45 पर आप सुनेंगे और रात 9 बजे आप सुनेंगे News 8:9 जिसे हम रिले करेंगे अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से, और रात 10 बजे से 11 बजे तक आप सुन सकेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। रोजाना की तरह रात 11:11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, और रात 11:10 पर सभा का समापन होगा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 6:55 होने को है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र जहां से आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सम्यक् निष्पक्षं च अन्वेषणम् आवश्यकम्। न्यायालयेन विरोधप्रदर्शनकाले गृहीतानाम् 18 वर्षात् न्यूनवयस्कानां तेषां छात्राणां मुक्त्यादेशः प्रदत्तः येषां पूर्वम् आपराधिकाभिलेखः नास्ति। न्यायालयेन सम्बन्धिताधिकारिभ्यः वैद्युतक अंकीय साक्ष्याणां संरक्षणमपि निर्देशितम्। मुख्य न्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य अध्यक्षतायां त्रिन्यायाधीशपीठं प्रदर्शनकाले आरक्षकबलस्य कथितानुचितबलप्रयोगसम्बद्धानां याचनानां श्रवणम् अकरोत्। न्यायपीठेन दिल्लीप्रशासनाय अभिलिखितानां FIR इति प्रकरणानाम् अन्वेषणम् निरन्तरं कर्तुम् अनुमतिः प्रदत्ता। तथापि न्यायप्रक्रियायाः प्रवर्तनकाले प्रदर्शनरतानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कठोरनिर्णयं न कर्तव्यमिति निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशानुसारं तथा अवैधरीत्या नीट परीक्षापत्रप्रकाशनस्य विरुद्धं प्रदर्शनानां विषये सर्वेषां पक्षाणां मूल्यांकनं कृत्वा पश्चिमबंगालप्रशासनेन विरोधप्रदर्शनेषु सम्मिलितानां छात्राणां विरुद्धं किमपि कार्याचरणं न स्वीकर्तुं निश्चितम्। राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलिका हरजिंदर कौर महिलानां 71 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवती। अपरञ्च भारतीय मुष्टियोद्धा एम जादुमणि सिंहः ग्लास्गो नगरे पुरुषाणां 55 किलोग्राम भारवर्गे प्रागुपान्त्य चक्रे मुआले म्वेंगो इत्येनं पराजित्य न्यूनातिन्यूनं कांस्य पदकं सुनिश्चितवान्। अनेन असौ उपान्त्य चक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। FM 102.1 MHz पर सुबह के 7:07 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंग। आइए आज हम आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम के तहत शिवरंजन पांडे गरीब के गए कुछ खोटा लोकगीत। गीत सुनने से पहले सुनिए ये जरूरी संदेश।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: लोक रंग अभी आप सुने थे लोक गीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं फिर 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 7:20 और 32 सेकंड हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान वार्ता के तहत वार्ता इंटरनेट के लाभ और हानि। वार्ताकार हैं ईशा शर्मा।
1: इंटरनेट की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 60 के दशकों में लगभग वर्ष के 1962 से 1969 के बीच में हुई थी। इसको सबसे पहले अमेरिकी रक्षा विभाग ने बनाया था। इसका इस्तेमाल सबसे पहले वर्ष 1969 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में एक संदेश भेजने के लिए किया गया था। इसके बाद यह लगभग वर्ष 972 तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुका था और फिर इसका नाम बदलकर इंटरनेट कर दिया गया था। इंटरनेट ने मनुष्य के जीवन को बहुत ही सरल और ज्ञानवर्धन बना दिया है। हमें इंटरनेट और टेक्नोलॉजी को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आज हम इन्हीं के मदद से देश दुनिया से जुड़ पा रहे हैं और विश्व के कोने कोने का ज्ञान गांव-गांव तक पहुंचा पा रहे हैं। आज हम इंटरनेट का उपयोग व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूलों, कॉलेजों और निजी जीवन हर क्षेत्रों में कर रहे हैं। पुराने जमाने में इंटरनेट के माध्यम से मात्र वेबसाइट ब्राउज किए जाते थे, ईमेल भेजे जाते थे, परंतु आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट को दुनिया के हर एक क्षेत्र में हर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। इंटरनेट अब एक प्रकार से मनुष्य की जरूरत बन चुका है। इंटरनेट के लाभ और हानियों के बारे में पता होना जरूरी है। इंटरनेट के माध्यम से सकारात्मक रूप से बताया जाए तो इंटरनेट की मदद से आसानी से हम घर बैठे अपनी सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग की मदद से कुछ ही मिनटों में बिजली, टेलीफोन, डीएच या ऑनलाइन शॉपिंग के सभी बिलों का भुगतान कर सकते हैं।

सकते हैं। भले ही आप विश्व के किसी भी कोने में बैठे हो, एक जगह से दूसरी जगह कई प्रकार की जानकारियां या सूचना कुछ ही सेकंड में भेज और प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट पर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, ईमेल, वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही कई प्रकार के अन्य फाइल भी भेज सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अब इंटरनेट घर घर में अपनी जगह बना चुका है। इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप चाहे तो अपने व्यापार को बहुत आगे ले जा सकते हैं। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां अपने व्यापार को और आगे ले जाने के लिए इंटरनेट की मदद ले रहे हैं। अब नौकरियों के लिए आवेदन और जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आसान हो गया है। साथ ही साथ इस आधुनिक युग में अब इंटरनेट घर घर में मनोरंजन का साधन बन चुका है। इंटरनेट ने हमारे जीवन मायने पूरी तरह से बदल दिए हैं। इसने हमारे जीवन के स्तर को ऊंचा दिया है और कई कार्यों को बहुत सरल और आसानी बना दिया है। हालांकि इसने कई नुकसानों को भी जन्म दिया है, लेकिन कई कठिन कामों को कुछ ही सेकंड में हल भी किया है। इंटरनेट इन दिनों हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसने लोगों को काफी करीब ला दिया है, चाहे वह आपके दोस्त हो, परिवार के सदस्य या आपके व्यापार। इंटरनेट ने कई बदलाव लाए हैं, जिस तरह से हम रहते हैं और अपने विभिन्न कार्य करते हैं, इसने इन सब को बदल के रख दिया है। इंटरनेट ने अपने कई उपयोगों के लिए जाना जाता है और इसने लगभग हर क्षेत्र को प्रभावित किया है। आज लगभग सभी चीजें ऑनलाइन हो गई है। यात्रा और पर्यटन ऐसे क्षेत्रों में से एक है जिस पर इंटरनेट का भारी प्रभाव पड़ा है। इंटरनेट ने यात्रा करने के तरीकों को बदल दिया है। इंटरनेट ने उपयोग जिस तरह से हम कर रहे हैं यात्रा में, उसमें बड़े पैमाने पर बदलाव किए हैं। अब हम आपको बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक करवाने के लिए लंबे लाइन या समय तक खड़े रहना आवश्यक नहीं है। ऑफलाइन बुकिंग पोर्टल्स ने आपके लिए इस काम को कम किया है। होटल बुकिंग के मामले में यही मामला है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई उलझन नहीं है कि आपको अच्छा होटल मिलेगा या नहीं। किसी दूसरे शहर की यात्रा करना अब कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इंटरनेट लोगों की जिंदगी में जरूरत बनता जा रहा है। आजकल के बच्चों को इंटरनेट की सहायता से कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो स्कूलों में भी समझा नहीं पाते हैं, पर इंटरनेट की मदद से कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं, जिससे विद्यार्थियों के भविष्य बनाते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव भी इस प्रकार से जुड़े हैं। समय की बर्बादी, जो लोग इंटरनेट को अपने ऑफिस के काम के लिए और जानकारी लेने के लिए उपयोग करते हैं, उनके लिए तो इंटरनेट बहुत ही लाभदायक होता है। परंतु जो लोग बिना किसी मतलब इसे अपनी आदत बना लेते हैं, उनके लिए यह समय की बर्बादी के अलावा और कुछ नहीं। हमें इंटरनेट को समय के अनुसार उपयोग करना चाहिए। दुनिया में हर एक व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है, जिससे कई प्रकार के बुरे स्वास्थ्य प्रभाव पड़ते हैं, जैसे वजन बढ़ाना, पैरों और हाथों में दर्द, आंखों में दर्द और सूखापन, मानसिक तनाव, कमर में दर्द आदि। आज की इस आधुनिक युग इंटरनेट की सहायता से ईमेल आईडी को चुरा कर कई धोखेबाज कंपनियां झूठे ईमेल भेजती है, जिनसे वो उन्हें ठगते हैं। आजकल के बच्चों पर भी इंटरनेट का अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उस समय बच्चे जो प्लास्टिक के खिलौने से खेलते थे, वह आज इंटरनेट के माध्यम से खेलने लगे हैं। इंटरनेट ने दूर देशों में रहने वाले लोगों की दूरी को कम कर दिया है, पर वही साथ में नजदीक रहने वाले लोगों को भी दूर कर दिया है। आजकल के परिवार इंटरनेट के
इतने करीब हो गए हैं कि

0: बच्चों और परिवार के सदस्यों की ओर ध्यान देना भूल गए हैं। माता पिता अपने बच्चों को इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति इसलिए देते हैं ताकि वे अपने परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी कर सके, पर कई छात्रों ने इसका दुरुपयोग किया है। चूंकि इंटरनेट मनोरंजन का प्रचुर स्रोत प्रदान करता है, इसलिए इसका विरोध करना कठिन है। कई छात्र इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते हैं या मनोरंजन उद्देश्य के लिए ऑनलाइन गेम खेलते हैं, पर वे जल्द ही इसके आदि जाते हैं। अपना समय इंटरनेट पर कुछ देखने या खेलने पर खर्च करते रहते हैं, यह समय की बहुत बड़ी बर्बादी होता है। आजकल के बच्चे पढ़ने की उम्र में इंटरनेट पर अपना समय व्यक्त कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई में बाधा पहुंच रही है। और साथ ही साथ बच्चों के मानसिक तनाव, आंखों में दर्द आदि कई तरह के असर हो रहे हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो इंटरनेट के बिना ना खाते हैं और ना पीते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। इंटरनेट को सही तरीके से अपने जरूरत और कामों में लगाए, इसे एक गलत आदत और स्वास्थ्य बिगाड़ने का कारण ना बनाए। हम जानते हैं कि इंटरनेट का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कठिन काम कुछ ही मिनटों में हो जाता है, परंतु इंटरनेट का गलत प्रयोग भी ना करें, जिससे नुकसान हो। अब मैं अंत में यह कहना चाहती हूँ, हमें इंटरनेट का प्रयोग समझ बूझ के करना चाहिए, जहाँ हमें कोई तरह की नुकसान ना हो। धन्यवाद।
1: ईशा शर्मा से आप सुन रहे थे वार्ता इंटरनेट की लाभ और हानि, कार्यक्रम था विज्ञान वार्ता। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। पेश खिदमत है अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम, गीत संगीत। कार्यक्रम की पहली पेशकश फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

पंकज उदास को आपने सुना। आप सुन रहे हैं अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत एफएम आजादी बाग से। प्रोग्राम की अगली पेशकश फाल्गुनी पाठक की आवाज में।

पंकज उधास के गाए हुए इसी गीत के साथ अगर फिल्म एल्बम के गीतों का कार्यक्रम गीत संगीत ही समाप्त होता है। गीत संगीत अभी आप सुने थे अगर फिल्म एल्बम के गीतों का हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में इस समय सुबह के 8 बजने को है। आइए वहां आपको ले चलते हैं अपना आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र जैसा जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर आप सुनेंगे मॉर्निंग न्यूज और सुबह 8:30 पर सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से बेहतर तालमेल के साथ काम करने का आह्वान किया। श्री मोदी ने उच्च अधिकारियों के साथ भावी कार्य योजना की समीक्षा की। लोकसभा में लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक 2026 पर आज फिर चर्चा होगी। दिल्ली सरकार ने प्रत्येक पात्र महिला को 2500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता देने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई में पिछले दो दिनों में मरने वालों की संख्या 30 हुई। ईरान ने पश्चिम एशिया में अमरीकी सेना पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीका और सऊदी अरब की सेनाओं ने भी संयुक्त रूप से इराक में ईरान समर्थित समूहों के खिलाफ हमले किए। और राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। हरजिंदर कौर ने भी भारोत्तोलन में रजत पदक अपने नाम किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों के कल्याण से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

0: उन्होंने कहा कि देश को नवाचार, विविधीकरण और क्षमता निर्माण में तेजी लाकर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को हमेशा युवा, गतिशील और दूरदर्शी बने रहना चाहिए और नई चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप फुर्ती और नवाचार के साथ लगातार अनुकूलन करना चाहिए। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर फिर से चर्चा शुरू होगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कल सदन में विधेयक को विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। ये विधेयक लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिनमें 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति को जब्त करने जैसे कठोर दंड शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि ये नया कानून देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता का परिचायक है।
2: 2 महीने के भीतर सारी जांच मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा।
1: श्री सिंह ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को भी दोहराता है कि देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र के प्रति गंभीर नहीं है।
3: ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहिए। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है, क्योंकि ये बिल एक संशोधन बिल है।
1: भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस विधेयक को क्रांतिकारी कदम बताया।
4: ट्रांसफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है, इसकी न केवल आवश्यकता है बल्कि ये आज के समय की मांग भी है। और इस अमेंडमेंट को लाना आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता और उनकी जिम्मेदाराना सरकार का प्रमाण। जब एक कंपेटिटिव एग्जामिनेशन कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसका असर केवल उस कैंडिडेट पे नहीं होता जिसका भाग्य दाव पर लग जाता है, और ये बिल ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है।
1: समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर चिंता व्यक्त की। एआईटीसी के अभिषेक बनर्जी, तेलुगु देशम पार्टी के लावू श्री कृष्ण देव रायलु और शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने विधेयक का समर्थन किया। तेलुगु देशम के सांसद ने प्रश्न पत्र तैयार करने वाली समितियों के विकेंद्रीकरण की भी मांग की। विधेयक पर अभी चर्चा पूरी नहीं हुई है। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने सदन को आज सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने तक के लिए स्थगित कर दिया। पश्चिम बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए और नीट परीक्षा के पेपर लीक से संबंधित विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद राज्य सरकार ने विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को अपनी स्वीकृति दे दी है। दिल्ली सचिवालय में कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल 1 अगस्त

0: अगस्त से खुल जाएगा।
1: बहनों के अप्लाई करने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद जो भी अप्रूवल रहेगा उसके बाद मुझे लगता है कि राखी पे हम पहली किस्त पहले लॉट की बहनों को दे पाएंगे। ये दिल्ली की बहनों के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है कि हमने अपनी सरकार के मात्र सवा साल के भीतर इसको कर दिया है दिल्ली की बहनों के लिए, जिसका लाभ अब उस श्रेणी में आने वाली सभी बहनें ले पाएंगी।
0: झारखंड में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रमुख माओवादी नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा को धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार किया गया है। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। क्षेत्रीय समिति सदस्य मेहनत उर्फ मोछू, माओवादी कार्यकर्ता गौरव और 2 ग्रामीणों को भी संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ करेगी। इस अभियान का औपचारिक उद्घाटन आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: आज वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास के जन्म स्थान पर इस अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम यहां संत रविदास के जन्म स्थान पर दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। इस अभियान के तहत संत रविदास के पवित्र जन्म स्थान की मिट्टी को 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों और देश भर के अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। एक समरसता संकल्प सभा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रमों की ये श्रृंखला माघी पूर्णिमा और संत रविदास की जयंती यानी अगले वर्ष 20 फरवरी तक चलेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्य भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन महासचिव धर्मपाल सिंह और अन्य प्रमुख नेताओं के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद है। पवित्र मिट्टी से भरे 131 कलशों की विधिवत पूजा की जाएगी और उन्हें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को सौंप दिया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश में भी आज यह अभियान शुरू होगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर पीओजेके में बर्बर सरकारी कार्रवाई में मरने वालों की संख्या पिछले 2 दिनों में बढ़कर 30 हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। इस बीच एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तानी सेना द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल के प्रयोग की खबरों की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। अमरीका ने कहा है कि ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कल रात पश्चिम एशिया क्षेत्र में तैनात अमरीकी बलों पर अचानक हमले के प्रयास में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा कि सभी ईरानी मिसाइलों को रोक दिया गया और अमरीकी बल सतर्क और उच्च स्तर की तैयारी में हैं। अमरीका ने यह भी दावा किया कि पिछले 72 घंटों में 30 से ज्यादा हवाई ड्रोन हमलों के साथ ही अमरीका और सऊदी लड़ाकू विमानों ने पूर्वी इराक में कई रसद और हथियार स्थलों पर हमले किए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वो इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। हरजिंदर कौर ने महिलाओं की 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर पेपर लीक मुद्दे पर संसद में हुई बहस और पेपर लीक मामलों को रोकने के लिए बनाए गए नए कानून से संबंधित समाचार छाए हुए हैं। लोकसत्य ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है पेपर लीक, मोदी सरकार ने बनाया विश्व का सबसे कठोर कानून। राजस्थान पत्रिका ने सरकार और विपक्ष दोनों के वक्तव्यों से अपनी खबरों की शुरुआत की है। पंजाब केसरी ने इस खबर को शीर्षक दिया है पूर्व सरकारों में भी हुए पेपर लीक। साथ ही प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी को भी प्रमुखता से छापा है, प्रधानमंत्री को कैमरे का नहीं दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। दैनिक भास्कर ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के घटनाक्रम को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है पीओके में सेना ने चुनाव का विरोध कर रहे लोगों पर गोलियां बरसाई 30 मौतें। पत्र ने मारे गए नागरिकों की तस्वीर भी प्रकाशित की है। अमर उजाला ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के शानदार प्रदर्शन को पहली खबर बनाते हुए शीर्षक दिया।

0: एसआईआर के तहत मतदाताओं से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता निर्धारित समय तक फॉर्म जमा नहीं करेंगे उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हो सकेगा। राज्य में अब तक 99.67% इन्यूमरेशन फॉर्म का डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, जबकि 31 विधानसभा क्षेत्रों में यह कार्य 100% पूर्ण कर लिया गया है। जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी ने कल जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से 8 घंटे तक लंबी पूछताछ की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी ने एल ख्यांगते का पासपोर्ट जब्त कर लिया है ताकि वे बिना अनुमति देश से बाहर न जा सकें। सीआईडी ने एल ख्यांगते को आज फिर से पूछताछ के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने नीट की पुनर्परीक्षा में ओएमआर शीट से जुड़ी गड़बड़ी के मामले में अभ्यर्थी की याचिका पर कल सुनवाई की। अदालत ने एनटीए को मूल ओएमआर शीट को सील बंद लिफाफे में अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को निर्धारित की। गौरतलब है कि प्रार्थी को वेबसाइट में अपलोड की गई ओएमआर शीट में 660 अंक मिले हैं जबकि रिजल्ट में सिर्फ 116 अंक ही मिले हैं। राज्य के एससी एसटी ओबीसी वर्ग के गरीब मेधावी विद्यार्थियों की निःशुल्क शिक्षा के लिए कल्याण विभाग और वीआईटी मेसरा की यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक के बीच कल एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत झारखंड सरकार अगले 10 वर्षों में 79.40 करोड़ रुपए खर्च करेगी। विश्व प्रसिद्ध देवघर श्रावणी मेले को लेकर बाबा धाम और दुमका का बासुकीनाथ धाम पूरी तरह तैयार है। आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर आज मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू दुमका बॉर्डर पर राजकीय श्रावणी मेले का विधिवत उद्घाटन करेंगे। कल से 28 अगस्त तक लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से 109 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा पूरी कर बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ धाम में शिवलिंग पर जलार्पण करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बुंडू अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में कल चौकीदार परेड का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने कहा कि सभी चौकीदारों को निष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन के साथ दायित्वों का निर्वहन करने तथा जनता के साथ बेहतर समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया।
1: चौकीदारी परेड का आयोजन हम लोग अनुमंडल में किया। इसका मेन उद्देश्य था कार्य क्षेत्र है जो बीट बटा हुआ है उसमें उनका कर्तव्य क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त है, क्या काम करना है उसके संबंध में उन लोगों को बताया गया। अपराध से संबंधित अपराधियों पे प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए, बॉर्डर इलाके के चौकीदार है उनको भी एक्टिव किए कि आप अपने इलाके में नजर बना के रखिए कि कहीं कोई बैड एलिमेंट अगर मूवमेंट करते हैं तो उसकी सूचना हम लोग तक पहुँचाइए।
0: गिरिडीह पुलिस ने जिला मुख्यालय में मछली व्यवसायी से छिनतई करने वाले 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरिडीह एसपी डॉ. विमल कुमार ने बताया कि सभी अपराधियों के विरुद्ध गिरिडीह जिले के विभिन्न थानों में मामला दर्ज है।
2: 23 जुलाई को पचम्बा थाना क्षेत्र में 2 मोटरसाइकिल सवार के द्वारा 2,07,000 रुपए छीनने की बात सामने आई। पिछले कार्रवाई करते 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी की है और देसी कट्टा 2, जिंदा गोली 3 और जो बुलेट मोटरसाइकिल बिना नंबर वो भी जब्त किया गया है।
0: सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने 7,59,650 रुपए नकद और 20 पुड़िया मादक पदार्थ बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी ने कहा कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय है, इससे रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी

0: जारी की है। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए 18 सदस्यीय झारखंड की टीम कल तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ होगा। हॉकी झारखंड के महासचिव
1: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में
0: का हौसला बढ़ाया।
1: जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2026 कोयंबटूर में 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक जो प्रतियोगिता है, जिसमें झारखंड का पहला मैच 2 तारीख को है, जिसके लिए झारखंड टीम की घोषणा की गई और टीम की किट का वितरण किया गया और इस प्रतियोगिता के लिए हम लोगों ने 18 खिलाड़ी चयनित किए हैं, झारखंड टीम से खेलेंगे।
0: और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली मिसर बेसरा की गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने लिखा है, जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष से 8 घंटे सीआईडी ने की पूछताछ, पासपोर्ट जब्त, एजेंसी ने आज फिर बुलाया। प्रभात खबर की सुर्खी है, टाटा मोटर्स और राज्य सरकार के बीच करार, युवाओं को मिलेगा ड्राइविंग प्रशिक्षण। हिंदुस्तान ने धनबाद में कोयला कारोबारियों के 150 करोड़ की संपत्ति जब्त करने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और दैनिक जागरण ने पेपर लीक रोधी बिल पर लोकसभा में पक्ष विपक्ष के बीच बहस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अंत में मुख्य समाचार। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी मिसर बेसरा धनबाद गिरिडीह सीमा से गिरफ्तार। झारखंड में एसआईआर के तहत मतदाताओं से इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज। अब तक 99.67% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा। झारखंड हाईकोर्ट ने एनटीए को नीट पुनर्परीक्षा में ओएमआर शीट के मुकाबले रिजल्ट में कम अंक देने के मामले में मूल ओएमआर शीट बंद लिफाफे में जमा करने का दिया निर्देश। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव के असर से पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय। राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप के लिए झारखंड की टीम तमिलनाडु रवाना। झारखंड का पहला मुकाबला 2 अगस्त को पंजाब के साथ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:44 हो रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मॉर्निंग मेलोडी।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
0: हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफ एम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट आकाशवाणी.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

मॉर्निंग मेलोडी, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 9 बजने को है। आइए हम आपको ले चलते हैं अपने आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे

0: देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
1: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आंखों की आंखों में इशारा हो गया।
1: विविध भारती से चित्रलोक और अब गूंज रही है। शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया। एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लापता लेडीज फिल्म का ये गाना आपने सुना और अब अंकित तिवारी की आवाज। फिल्म का नाम है एक विलन।

सुबह के 9:24 हुए हैं। दिन की इस भागदौड़ में आप विविध भारती के संग हैं और शान की आवाज गूंज रही है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका

0: हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
1: यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। प्यार कहो बे झगड़ा या बिजनेस का हो रगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा। सुन सुन सुन अरे बब सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। सुन सुन सुन अरे बब सुन,

0: राय।
1: भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: जरा हट के।
1: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक, यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे। लोग

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे, अरे मास्टर राम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
1: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरु दत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में

0: ना देखा।
1: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
2: आज दहिया था याद आवत है,
3: तबीयत नरम है आज।
2: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंप्यूटर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
3: नींद नहीं आती रात भर।
2: नींद नहीं आवत है पर का है?

0: रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है।
1: दुखता उखता नहीं, कसमसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
0: ओ, ये तो नवा रोग लगा थे। सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
1: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
0: ठहरो, पहले ई बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
1: कैसे? ऐसे
0: बराबर लेटो,
1: भाता है ना ऐसा लेटना।
0: नींद ना आए तो क्या फायदा।
1: अच्छा ये कैसा?
0: दुई कौड़ी का।
1: तो फिर कैसे?
0: इधर घूमो करवट,
1: पल्ले नहीं पड़ता, तुम्ही घुमा लो ना।
0: गोबर गणेश कहीं की।
2: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं 1951 में बाजी।
3: मिस्टर जॉर्ज क्रूज, सन ऑफ जॉर्ज क्रूज, तुम उधर क्या देखता?
4: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
3: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
4: छोकरी? छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
3: यस।
4: ओ गॉड, जब भी हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना, वो किसी में नहीं। डार्लिंग, तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता।
3: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम काहे को उसका बात करता है? डोंट फॉरगेट, तुम हमारे पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी, बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब हो
6: जाएगा। राइट राइट।
3: मैं सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
4: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
3: यू शट अप। सुजन, तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
4: मैं बोला तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
5: हम जानता तुम इधर ही रहेगा।
2: 1952 में जाल।
0: क्या मुसीबत है, लोग रोमांस का भी चांस नहीं देता है।
5: अजीब आदमी है ये, कोई रोमांस करने का जगह है? यहाँ तो लोग आएगा ही। चलो किधर घूमने को चले, गाड़ी नीचे उतारो।
0: नीचे उतारने के लिए थोड़ी ऊपर चलाया है।
5: फिर?
0: इसलिए कि जब तक तुम ये नहीं बताएगा कि तुम हमसे शादी कब बनाएगा, गाड़ी नीचे नहीं जाएगा।
5: ओफो, तुम्हारा खोपड़ी को सर्विस करना पड़ेगा। अरे बाबा, जब तक तुम अंकल से बात नहीं करेगा तो शादी कैसा होगा?
0: अंकल? ओ नो, हम उससे बहुत डरता है, वो तो हमारा होल बॉडी का सर्विसिंग कर डालेगा।
5: नहीं बाबा, वो ऐसा नहीं है। प्रॉमिस करो तुम घर आएगा।
0: प्रॉमिस? जरूर आएगा, काय को नहीं आएगा। अभी अंकल हमको खलास करेगा ना, जब भी आएगा।
2: 1953 में ठोकर, 1954 में टैक्सी ड्राइवर, देवदास, मैरीन ड्राइव, रेलवे प्लेटफॉर्म, चंगेज खान, नया दौर, मधुमती, अमरदीप, काला पानी, लाइट हाउस, कागज के फूल।
7: मिस्टर आयर, आर यू देयर? हम तुम जिसे कहता है शादी, जो नो है पूरा।

ब्लैक कैट, जिंदगी और ख्वाब, सूरज, मॉडर्न गर्ल, शिकार, दिल और मोहब्बत, और इनकी आखिरी फिल्म थी 1997 में चाची 420। अपने जमाने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री शकीला की बहन थी नूरजहां, जिनसे इनका विवाह हुआ था।

जॉनी वॉकर को उनकी भूमिकाओं के लिए हम हमेशा याद करेंगे। उन्होंने जो जीवन अभिनय किया है सिने जगत के रुपहले पर्दे पर और जो छाप छोड़ी है हमारे दिलों में, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारी मुंबई केंद्र से। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से FM 102.1 MHz पर। स्टूडियो घड़ी में समय सुबह के 10 बज चुके हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।

0: ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10:01 और 17 सेकंड हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो हजारीबाग।
1: 10 9 8 7 6

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग,
2: कार्यक्रम हेलो हजारीबाग सुन रहे तमाम श्रोताओं का स्वागत है। खैर मकदम है अभी के इस एक घंटे के दिलचस्प जानकारियों एवं संगीतमय कार्यक्रम में आज आपके साथ मैं अली शब्बीर, कीजिए अभिवादन स्वीकार, नमस्कार। दोस्तों आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं आज के सुविचार के साथ। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से।

दोस्तों अब आइए थोड़ी नजर डालते हैं आज के दिन की ऐतिहासिक घटना पर कि माजी में ऐसे कौन से वाकयात और सानहात पेश आए थे जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गए। इस सिलसिले में पहली बात आती है सन 1526 ईस्वी की कि आज ही के दिन 1526 ईस्वी में जर्मनी के पेसाव में किसान विद्रोह शुरू हुआ था। स्कॉटलैंड के राजा जेम्स सिक्स का राज्याभिषेक हुआ था आज ही के दिन सन 1567 ईस्वी में। नेपल्स में भूकंप में लगभग 1000 लोग मारे गए थे आज ही के दिन सन 1722 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता के लिए ब्रिटिश सेना की पहली सैन्य टुकड़ी भारत पहुंची थी। और 1848 ईस्वी में आज ही के दिन आयरिश विद्रोह शुरू हुआ था। जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने

हारमोनिका संधि पर हस्ताक्षर किए थे आज ही के दिन संसद 1858 ईस्वी में। इटली के राजा अम्बोटा की हत्या हो गई थी आज ही के दिन सन 1900 ईस्वी में। और सन 1921 ईस्वी में आज ही के दिन एडोल्फ हिटलर नाजी पार्टी के अध्यक्ष बने थे। आज ही के दिन सन 1930 ईस्वी में जर्मनी में नाजी पार्टी की प्रेस सेवा स्थापित हुई थी। और सन 1947 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत संघ ने परमाणु बम विकसित करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया था। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी रेडियो पर प्रसारण शुरू हुआ था आज ही के दिन सन 1949 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में आज ही के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगोस्लाविया के टीटो से मुलाकात की थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना भी थी आज ही के दिन सन 1957 ईस्वी में। और 1958 ईस्वी में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा की स्थापना हुई थी। वियतनाम युद्ध यूएसएस फॉरेस्टल पर लगी आग में 134 लोग मारे गए थे आज ही के दिन सन 1967 ईस्वी में। और 1975 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 29 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को में बे एरिया रैपिड ट्रांजिट बार्ट प्रणाली में पहला कंप्यूटर नियंत्रित ट्रेन चलाया गया था। 1987 ईस्वी में आज के दिन भारत और श्रीलंका के बीच भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। और आज के दिन 29 जुलाई को सन 1996 ईस्वी में चीन ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में परमाणु हथियार परीक्षण किया था। पाकिस्तान ने 8 परमाणु मिसाइलों का परीक्षण किया था आज के दिन सन 2002 ईस्वी में। और आज के दिन 29 जुलाई को सन 2005 ईस्वी में खगोलविदों ने बोना ग्रह एरिस की खोज की थी। सन 2008 ईस्वी में आज के दिन भारत के बेंगलुरु में बम विस्फोट हुए थे जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और सन 2013 ईस्वी में आज के दिन भारतीय संसद ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने विंडो 10 को जारी किया था आज के दिन सन 2015 ईस्वी में। सन 2022 ईस्वी में आज के दिन यानी 29 जुलाई को पाकिस्तान में मानसूनी बारिश से बाढ़ आई जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और सन 2023 ईस्वी में आज के दिन 29 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसरो का प्रज्ञान रोबो चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला पहला अभियान बना था।

0: दोस्तों, अब थोड़ी चर्चा इस बात की कि कैसे हुई विश्व बाघ दिवस मनाने की शुरुआत, क्या है इसका महत्व और उद्देश्य। तो दोस्तों, विश्व बाघ दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2010 ईस्वी में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में हुई थी, जहां बाघों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 जुलाई को ये दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। उस समय ये चिंता जताई गई थी कि पिछली एक शताब्दी में जंगलों से लगभग 97% बाघ विलुप्त हो चुके थे और दुनिया भर में सिर्फ तकरीबन 3000 ही जंगली बाघ बचे थे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की घटती संख्या, उनके प्राकृतिक आवासों के विनाश और अवैध शिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके महत्व के तौर पर हम देखें तो बाघ जंगल के शीर्ष शिकारी हैं, जो शाकाहारी जीवों की संख्या नियंत्रित कर पारिस्थितिकी तंत्र को स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, ये दिवस दुनिया भर के सरकारों और समुदायों को एक मंच पर लाकर बाघों की नस्ल को विलुप्त होने से बचाने के लिए एकजुट करता है। दोस्तों, अपने देश भारत में बाघों की गणना की हम बात करें तो इसकी गणना मुख्य रूप से वैज्ञानिक और आधुनिक चरणों में होती है, जिसमें जमीनी सर्वेक्षण, साइंस सर्वे, एमएसट्राइप्स ऐप और अत्याधुनिक कैमरा ट्रैप तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह हर 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA और भारतीय वन्य जीव संरक्षण द्वारा कराई जाती है। दोस्तों, जमीनी सर्वे में वन कर्मी और शोधकर्ता जंगल में पैदल घूमते हैं, बाघों के पगमार्क, पंजों के निशान, मल और पेड़ों पर खरोंच के निशान खोजते हैं। डेटा दर्ज करने के लिए विशेष मोबाइल ऐप एमएसट्राइप्स का इस्तेमाल होता है। जंगलों में तय स्थानों पर मोशन सेंसिटिव कैमरे जोड़े जाते हैं। कैमरों में कैद तस्वीरों का मिलन करके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द्वारा सटीक गिनती की जाती है।
1: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना।

अब नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान की। तो दिन में तापमान, अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस होने और रात में 22.6 डिग्री न्यूनतम तापमान होगा। मौसम के एतबार से आज भी बादल छाए रहने की संभावना है और रिमझिम बूंदों के होने की भी संभावना व्यक्त की गई है।

अब डालते हैं एक नज़र आज के अखबारात की सुर्खियों पर। जो हजारीबाग भास्कर की ये पहली खबर है, खेतों में लौटी रौनक, लगातार तीन दिनों की बारिश के बाद विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में धान रोपनी की शुरुआत हुई है। पिछले दिनों से हो रही लगातार बारिश ने किसानों के चेहरों पर खुशी लौटा दी और पर्याप्त वर्षा होने के बाद ये रौनक खेतों में देखा जा रहा है। किसान खेतों में उतरकर तैयार धान के बिचड़े उखाड़ने और रोपाई करने में तेजी से जुट गए हैं। खेतों में सुबह से ही रोपाई का कार्य तेजी से चल रहा है। किसानों का कहना है कि अगर इसी तरह समय पर बारिश होती रही तो इस वर्ष धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद है। बारिश से सूखे पड़े खेतों में पानी भरने के बाद कृषि कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, जिससे किसानों में उत्साह का माहौल है। और इसी अखबार की एक खबर है, खाना बना रही नवी छात्रा की पर गिरा एस्बेस्टस, जिससे उसकी जान के खतरे का लाहक हो गया। हेल्थ अपडेट में सदर अस्पताल के सभागार में मनाया गया विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 12 अगस्त तक चलेगा हेल्दी लीवर अभियान, ग्रामीणों की भी जांच होगी। इस सिलसिले में सदर अस्पताल में जांच होगी। जो हेपेटाइटिस रोग की रोकथाम, उपचार और जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा बताया गया कि इस अभियान के अंतर्गत एचआईवी संक्रमित व्यक्ति, महिला एवं कर्मी, इंजेक्टेबल ड्रग उपयोगकर्ता, बार बार रक्त चढ़ाने वाले व्यक्ति, डायलिसिस मरीज और जेल में बंद बंदियों की हेपेटाइटिस बी एवं सी की जांच उपचार किया जाएगा। जिला यक्षमा पदाधिकारी ने बताया कि PLHIV और अन्य उच्च जोखिम समूहों की नवीनतम हेपेटाइटिस बी एवं सी जांच की परिस्थिति का आकलन कर जिनकी जांच हुई है उनकी जांच संबंधित ART सेंटर सदर अस्पताल में कराई जाएगी। एक और खबर है इसी अखबार की, मंगलवार को फ्री में इलाज होगा, डॉक्टर सोमा कहती हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सोमा उरांव ने बताया कि प्रत्येक मंगलवार को हेपेटाइटिस की जांच एवं उपचार निःशुल्क किया जाता है। साथ ही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की ANC जांच के दौरान हेपेटाइटिस की 100% स्क्रीनिंग सुनिश्चित की जाएगी और पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों के वायरल लोड की जांच हेतु नमूने राज्य रेफरल लैब रिम्स रांची भेजे जाएंगे। सिविल सर्जन ने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी जैसे चिकित्सक, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को हेपेटाइटिस बी का 3 डोज वाला टीकाकरण 27 जुलाई से 12 अगस्त तक कराया जाएगा। अधिकारियों ने कहा एक के साथ खेती से बढ़ेगा उत्पादन और किसानों की आय, क्लस्टर से बदलेगी खेती की तस्वीर। किसानों को मिला मक्का, मूंग व मूंगफली का उन्नत बीज, ये खबर भी हजारीबाग भास्कर ने छापी है। युवाओं को खेल से जोड़ने की अनोखी पहल की गई है। खुटरा में मैच का आयोजन किया गया और खुटरा पंचायत में गत दिन खुटरा रिटायर 11 और पेलावल रिटायर 11 के बीच फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया था। ये फुटबॉल मैच सिर्फ खेल तक सीमित नहीं रहा बल्कि

ये युवाओं को नशे और मोबाइल की बढ़ती लत से बचाने का सामाजिक अभियान भी बना। प्रभात खबर से एक खबर शाया हुआ है, 5 अगस्त को जारी किया जाएगा ड्राफ्ट मतदाता सूची, राज्य में 43 लाख से अधिक फॉर्म अब भी लंबित पड़े हैं। ये ध्यान रहे कि इनोग्रेशन फॉर्म जमा करने का अंतिम दिन है आज, यानी 29 जुलाई की तारीख है और आज ये आखिरी तारीख है। राज्य में 2.63 करोड़ से अधिक फॉर्म का डिजिटलीकरण किया गया है पूरा। कांग्रेस ने समय सीमा बढ़ाने की मांग भी की है।

और ये खबर हजारीबाग जागरण की है। नौनिहालों की देखभाल पर दिया गया विशेष जोर। इस सिलसिले में मिशन वात्सल्य योजना के तहत संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का उपायुक्त हेमंत सती ने मंगलवार को स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी SAA सृजन फाउंडेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संस्थान में रह रहे बच्चों की देखभाल, स्वास्थ्य सुरक्षा, पोषण, आधारभूत सुविधाओं और मानव संसाधनों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बच्चों के सर्वांगीण विकास और बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त को बताया गया कि संस्थान में वर्तमान में 7 बच्चे रह रहे हैं, जबकि इसकी कुल आवासीय क्षमता 10 बच्चों की है। संस्थान में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 2 आवासीय कक्षा, डाइनिंग हॉल, रसोई स्टोर रूम, कार्यालय स्टाफ रूम और विजिटर कक्ष सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। उपायुक्त ने संस्थान में कार्यरत समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ता, नर्स, सुरक्षा गार्ड और आया की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों की देखभाल में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध रखने के निर्देश दिए। साथ ही बच्चों की व्यक्तिगत स्थिति, उनके पुनर्वास और दत्तक ग्रहण से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की।

दोस्तों थोड़ी चर्चा क्षमा और विनम्रता के महत्व पर। दोस्तों इंसानी जिंदगी या मानव जीवन में क्षमा और विनम्रता का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये दोनों गुण आंतरिक शांति, मधुर रिश्तों और एक सभ्य इंसान, सच्चे इंसान का निर्माण करते हैं। क्षमा मन की कड़वाहट को मिटाकर हमें आगे बढ़ना सिखाती है, जबकि विनम्रता हमारे अहंकार को समाप्त कर हमें दूसरों के प्रति आदर और सरलता का भाव देती है। दोस्तों दूसरों को माफ करने से हमारे अपने दिल का बोझ और गुस्सा खत्म हो जाता है। क्षमा करना किसी कमजोर व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक साहसी और बलवान व बहादुर इंसान की खूबी और गुण है। दोस्तों गलतियों को माफ करने से आपसी प्रेम बढ़ता है और टूटे हुए रिश्ते फिर से मजबूत होते हैं, फिर से जुड़ते हैं और मजबूत होते हैं। और दोस्तों विनम्र व्यक्ति हमें हमेशा अपने घमंड से दूर रहता है और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ नहीं समझता। सरल स्वभाव और मीठी वाणी से विनम्र इंसान समाज में बहुत मान सम्मान और स्नेह पाता है। विनम्रता हमें अपनी गलतियों को जल्दी स्वीकार करना और जीवन में निरंतर आगे बढ़ना सिखाती है। दोस्तों ये और इस तरह की मजीद दिलचस्प जानकारियों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले कार्यक्रम में। आज अब बस यहीं तक। आप उठाइए इस नगमे का लुत्फ और दीजिए कार्यक्रम से कार्यक्रम अहलू हजारीबाग से इजाजत। नमस्कार।

0: देखो फिर आ गया।
1: हेलो हजारीबाग, प्रत्येक दिन के इतिहास, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जन्मदिन, मृत्यु और महत्वपूर्ण दिवस का संपूर्ण ब्यौरा मिलेगा डे टू डे। हेलो हजारीबाग, मिलेगी मौसम की जानकारी, साथ ही हजारीबाग के अस्पताल के ओपीडी अपडेट्स मिलेंगे, हजारीबाग के ट्रैफिक अपडेट्स, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल इवेंट्स के कर्टन रेजर रोजाना, लोकल इवेंट्स के ग्राउंड रिपोर्ट्स का खजाना, सिटी के इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज में हजारीबाग के यूनिवर्सिटी की गतिविधियों और स्पोर्ट्स के ताजे हाल का हेलो हजारीबाग। और अंत में आज के विचार को सुनकर कर दे

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
1: रंग तरंग
0: रंग तरंग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी की ओर से प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।
2: आमी एक जाजाबर
3: पृथ्वी आमा
2: बहुत मशहूर नगमा है भूपेंदा का।
3: भूले छी निजेर घर आमी एक
2: जाजाबर का सही तर्जुमा मुसाफिर भी नहीं, बंजारा भी नहीं, आवारा भी नहीं, लेकिन सबसे करीब आवारा है। बिना मंजिल के घूमते रहना, चलते रहना, बहते रहना, इस जमीन पर, इस पूरी जमीन पर जिसे वो अपना घर समझता है या मंजिल समझता है। और घर जो कहीं नहीं है इसे क्या कहेंगे, आवारा कहीं का या आवारा कहीं का नहीं।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: अनुराधा पौडवाल की आवाज में हम आपको संत कबीर का भक्ति पद सुनवा रहे हैं। धुन बनाई है शेखर सेन ने।

अभी आपने अनुराधा पौड़वाल की आवाज में संत कबीर का ये भक्ति पद सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जिगर मुरादाबादी का कलाम, आवाज बेगम अख्तर की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत और ये विवा ग्रुप की पेशकश है।

कार्यक्रम में अब सुनिए राहुल देव बर्मन का संगीत, गुलजार साहब के बोल और आवाज आशा भोसले की।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सुनिए।

अभी आप सुन रहे थे बैजू मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सईद राही का कलाम, आवाज घनश्याम वासवानी की।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और अब आज का रंग तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: रंग तरंग,
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज

0: बाधा डाल रहे हैं जो उचित नहीं है।
1: प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए। आप माननीय सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को व्यवधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
0: उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होते ही कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। कोयला, खान और इस्पात पर विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसदों पर लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों पर चर्चा न करने और सदन में विभिन्न राजनीतिक मुद्दे उठाने का आरोप लगाया है।
2: आज हम उम्मीद करते हैं राहुल गांधी जी और बाकी लोग बिल पे बोले। इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा हो रहा है और वो इधर उधर का बात करके भटकाने के लिए और राजनीतिकरण करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। इतना अच्छा बिल लाया है और एग्जामिनेशन को लेकर के कोई और सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी। इतना महत्वपूर्ण बिल है और बिल पे नहीं बोलते हैं, ये ठीक बात नहीं है।
0: भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण ने दिल्ली स्थित एक निजी होटल का लाइसेंस खाद्य नियमों का उल्लंघन करने के कारण निलंबित कर दिया है। इनमें खराब हो चुके खाना पकाने के तेल का उपयोग करना और भोजन की खराब गुणवत्ता शामिल है। सोशल मीडिया पोस्ट में खाद्य सुरक्षा नियामक ने कहा कि जन स्वास्थ्य के हित में लाइसेंस तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिए निलंबित किया जाता है और खाद्य व्यवसाय संचालक को सभी खाद्य संबंधी गतिविधियां तुरंत बंद करनी होगी। खाद्य सुरक्षा नियामक ने सभी नियमों का पालन करने के लिए 15 दिन का समय भी दिया है, अन्यथा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने दक्षिण पश्चिमी जापान के कुमामोतो इलाके में कल आए जबरदस्त भूकंप पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने वहां के लोगों और सरकार के प्रति भारत का समर्थन और एकजुटता जाहिर की। भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में बचाव कार्य चल रहा है। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि एमवी अमीर 1 जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। आज वैश्विक बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक बाघ आबादी का 70% से अधिक हिस्सा भारत में स्थित है। उन्होंने कहा कि भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ने पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जाने माने अभिनेता संजय दत्त का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने संजय दत्त की फिल्मों से ही कुछ गीत आपके लिए चुने हैं। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम है रॉकी। आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गीतकार आनंद बख्शी हैं, संगीत राहुल देव बर्मन का है।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था विधाता। गीत रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
2: मुकेश के गानों में है सादगी।
3: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल,
2: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
3: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
2: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
3: जाऊं कहां बताए दिल।
2: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
4: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
2: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनिए नदीम श्रवण का संगीत, समीर की बोल, एसपी बालासुब्रमण्यम, कुमार सानू, पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजें फिल्म साजन के लिए।

0: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
3: एक और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: राहत इंदौरी का लिखा गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। इसे संगीत में ढाला है अनु मलिक ने, आवाजें श्रेया घोषाल और विनोद राठौड़ की। फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS।

और आइए अब सुनते हैं पंकज उदास और साथियों की आवाजों में फिल्म नाम का ये गीत, रचना आनंद बख्शी की और तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं मनहर उदास अलका याग्निक और साथियों की आवाजें। ये फिल्म है खलनायक। गीत रचना आनंद बख्शी की है और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: फिल्म वास्तव का गीत सुनिए, गाने वाले कलाकार कुमार सानू और साथी, गीत रचना समीर की है और संगीत जतिन ललित का है।

कार्यक्रम का आखिरी गीत शांतनु मोहित्रा का संगीत है, स्वानंद किरकिरे की बोल, युगल स्वर सोनू निगम और श्रेया घोषाल की, फिल्म का नाम लगे रहो मुन्ना भाई।

इस दो गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में हमने संजय दत्त की फिल्मों से कुछ गीत आपके लिए चुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर, ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है आपका अपना कार्यक्रम सुरीला सफर। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी तो कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और सुरीला सफर के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों, है ना भाई? आज का दिन भी कुछ खास है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज गुरु पूर्णिमा की हमें बहुत ज्यादा बधाइयां भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। विविध भारती हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है, तो बहुत कुछ सीखने को हमें इससे मिलता भी है। तो ये भी गुरु हुई हमारी, इसलिए गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम अपने अपने गुरुओं को आज प्रणाम कर रहे हैं। जी तो दोस्तों, संगीत हमारी जिंदगी और धड़कन का एक अमिट हिस्सा है, या यूं कहें कि एक अभिन्न हिस्सा बन गई है ये संगीत हमारी जीवन यात्रा में। और हम अक्सर फिल्मी गानों को खासतौर से हम गुनगुनाने लगते हैं। ये गीत हमारी जिंदगी से जुड़ गए हैं मानो, है ना? विवाह हो, उत्सव हो, सुख हो, दुख हो, हम इन गीतों को अपने जीवन में उतार कर जैसे उन्हीं पर आश्रित से हो गए हैं। खुशी है तो हैप्पी सॉन्ग गुनगुनाते हैं, दुख है तो सैड सॉन्ग हम गाने लगते हैं। और मजे की बात ये है कि इनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो फिल्मी पर्दे पर फिल्माकन के रूप में तो हमें नहीं दिख पाए, यानी उनका फिल्मी पर्दे पर तो हमें दृश्य नजर नहीं आया, वो फिल्माए नहीं गए, लेकिन इन गीतों में इतनी ताकत रही कि रेडियो के जरिए, एलपी या ग्राफोन रिकॉर्ड्स के जरिए, यानी किसी न किसी माध्यम से हमारे जीवन में घर कर गए, हमारे दिल में अपनी जगह बना गए। कुछ गाने ऐसे थे जो फिल्मांकन तो किए गए, जिनका फिल्मांकन हुआ, पर्दे पर दिखाई भी गई, लेकिन कुछ समय बाद शायद फिल्म की लंबाई ज्यादा होने के कारण उन्हें हटा लिया गया, यानी कुछ न कुछ कारण रहा इन गीतों को उस फिल्म से हटाने का, लेकिन ये गीत हमारे दिलो दिमाग से कभी नहीं हट पाए। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं गीतों के लिए हम लेकर आए हैं खास। जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्हें तो पता है कि आज की इबारत हमने क्या लिखी है, लेकिन जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उनके लिए हम बता दें, आज की इबारत है बिल्कुल हल्की फुल्की। रात भर जागते हैं आपकी याद में, हंसी खो गई है इस दिल की फरियाद में, दिल वहीं छोड़ आए थे जब आपको देखा था, अब अंधेरा है इस सूने से जहां में, जमुना किनारे यादों की महफिल सजी है, सजन बिना जहान सूना लग रहा है, दिल का चिराग बुझने लगा है अब तो, हमने तो उसी दिन से दिल को आपके कदमों में रख दिया था, जिस दिन से आपको देखा था नींद और चैन सब खो गया है उस दिन से, न आसमां अच्छा लग रहा है न जमीन भा रही है, ये कैसी बेखुदी है, कैसी ये तन्हाई है, देख ली तेरी खुदाई ए ऊपर वाले, बता कितना और तड़पना अभी बाकी है। जी हाँ, यह है इबारत और इनमें कुछ चीजें, कुछ शब्द आपको ऐसे मिलेंगे जो आज के गीतों से जुड़े हैं। हालांकि हमने कुछ शब्दों का जिक्र आपसे नहीं किया है, इस इबारत को पढ़ने के बाद आपको कुछ गीत अपने आप पता चल जाएंगे कि कुछ कुन किन गीतों को आज इस कार्यक्रम में हमने शामिल किया है। तो आज कुछ ऐसे बेहतरीन गाने, जैसा कि हमने आपको बताया, जो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो में बहुत लोकप्रिय हुए, लेकिन फिल्म की लंबाई या अन्य कारणों से उन्हें फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया था। और बॉलीवुड में ऐसे कई बेहतरीन गाने बने जो सेंसर बोर्ड की आपत्तियों या फिल्म की लंबाई कम करने के लिए हटा लिए गए, लेकिन ग्रामोफोन्स रिकॉर्ड या एलपी और रेडियो के जरिए हम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा सफर। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम परवाना, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय और नीति आम नागरिकों के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सीआरपीएफ ने सीसीएल के एनके और पेपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंट कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स FC के बीच होगी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर सरकार के सचिवों के साथ दूसरी उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य और उद्योग तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को गति देना था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। नागरिक केंद्रित शासन के महत्व का प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की जनता शासन के केंद्र में रहनी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि प्रत्येक निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि भारत बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है, लेकिन स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के विकास को भी समान प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने तकनीकी आत्मनिर्भरता और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घरेलू क्षमताओं के निर्माण के महत्व पर जोर दिया। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सावन का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज देवघर स्थित बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में नगर विकास सह पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने राजकीय श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी मौजूद रहीं। इस दौरान मंत्रियों ने बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की और कांवरियों के मार्ग का शुभारंभ किया। श्रावणी मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह बंद रहेगी। इस दौरान श्रद्धालु केवल बाह्य अर्घ्या के माध्यम से जलार्पण कर सकेंगे। रांची नगर निगम ने कल से शुरू हो रहे पवित्र सावन महीने को लेकर पहाड़ी मंदिर और अन्य प्रमुख शिवालयों में सफाई, पेयजल, लाइट और सुरक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ी मंदिर परिसर और मार्ग पर 100 सफाईकर्मी, स्वर्णरेखा घाट पर 40 और शहर में 1200 कर्मी तैनात किए गए हैं। सुरक्षित आवाजाही के लिए स्ट्रीट लाइट की मरम्मत और पेड़ों की डालियों की छटाई की गई है। नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर और प्रमुख शिवालयों के आसपास सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है। आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार आज देश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया में कहा कि गुरु केवल ज्ञान प्रदान ही नहीं करते, बल्कि अपने शिष्यों को सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और उन्हें नेक विचारों और सद्गुणों से परिपूर्ण करते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर राज्य के युवा आंदोलन करने की तैयारी में हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बोकारो में युवाओं से अपील की कि वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भरोसा रखें, सीएम युवाओं के साथ गलत नहीं होने देंगे।
2: हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। जैसे ही संज्ञान में मिला कि कोई चिंतियां पाई गई, गौड़िया पाए गए, लोग जेल में है, वो चेयरमैन है, उनका इस्तीफा लिया गया है। हमारी सरकार पारदर्शिता की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। हम लोग खामियां बर्दाश्त नहीं करेंगे, युवाओं से अपील करेंगे, हमारी सरकार युवाओं के साथ।
0: बोकारो जिले में SIR के डिजिटाइजेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। उपायुक्त अजय नाथ झा ने बताया कि गोमिया, बेरमो और चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र में 100% डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हुआ है, जबकि बोकारो विधानसभा क्षेत्र में भी 99.66% डिजिटाइजेशन हो चुका है। उपायुक्त ने सभी ERO और AERO को एक बार फिर डेटा का सत्यापन करने को कहा है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news@air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआईएसएफ ने सीसीएल एनके और पेपरवार कोल्डफील्ड में कोयला माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जंगल में छिपाकर रखा भारी मात्रा में अवैध कोयला बरामद किया। सहायक कमांडेंट हर्ष लवानिया के नेतृत्व में टीम ने पेपरवार एरिया के कांटर संख्या 9 के पास दो जगहों से कोयला जब्त किया। वहीं कमांडेंट अमित कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय संपदा की चोरी रोकने के लिए अभियान जारी रहेगा, अवैध खनन और तस्करी में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड मुख्यालय में कल 37वीं कॉरपोरेट स्तरीय त्रिपक्षीय सुरक्षा

0: समिति की बैठक सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें खदान सुरक्षा और श्रमिक कल्याण पर मंथन हुआ। बैठक में अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों, वैधानिक अनुपालन, व्यावसायिक स्वास्थ्य और महिला कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं और अलग सुरक्षा व्यवस्था पर सुझाव दिए। झारखंड के आदिम जनजातियों को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने, उनके शिक्षा, भाषा और संस्कृति के संरक्षण को लेकर रांची में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस कॉन्क्लेव में असिस्टेंट प्रोफेसर अभय सागर मिंज सहित कई विशेषज्ञों ने अपनी बात रखी।
1: राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम जो हमारे रांची में हो रहा है और ये अति संवेदनशील जनजातियों के लिए हो रहा है, जरूर ये लोग मंथन कर रहे हैं। जहाँ कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से की है, आईएम वगैरह लोगों से लोग आए हुए हैं, टिस से लोग हैं और बहुत सारे ऐसे सिविल बॉडीज हैं जो इस पे मंथन कर रहे हैं।
0: गुवाहाटी से देवघर के लिए विमान सेवा 4 अगस्त से शुरू होगी। गुवाहाटी से 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार उड़ान सेवा उपलब्ध रहेगी। झारखंड में बढ़ते ब्रेन मलेरिया के मामलों में नियंत्रण लाने के लिए इलाज की पद्धति में बदलाव की नीति पर मंथन किया जा रहा है। रिम्स के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. देवेश कुमार ने बताया कि चाईबासा के गोयलकेरा में आईसीएमआर और एनआईएमआर की देखरेख में शोध जारी है।
2: फैल्सीपेरम मलेरिया, सेरेब्रल मलेरिया कहला रहा है या ब्लैक डेथ जिसको कहते हैं, जिसके कारण बहुत सारी डेथ होने के चांसेस और सीवियर मलेरिया का फॉर्म होता है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस में, सेकंड डे पे प्राइमोक्विन देते हैं, तो उसी पे शोध चल रही है। 5 राज्यों में चल रही है, उसमें झारखंड भी है। फैल्सीपेरम मलेरिया का काफी प्रेवलेंस है यहाँ पर।
0: घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 849 अंक बढ़कर 77,615 पर, जबकि निफ्टी 248 अंक की वृद्धि के साथ 24,233 पर कारोबार कर रहे थे। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,33,600 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,28,000 रुपये प्रति किलो है। 135वें डोरंड कप में आज बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में दूसरा मुकाबला होगा। इस मुकाबले में इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम का सामना श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी से होगा। डिफेंडर्स एफसी जमशेदपुर एफसी से 0-5 की हार के बाद आज के मैच में वापसी की कोशिश करेगी, जबकि इंडियन एयरफोर्स विजयी शुरुआत के इरादे से मैदान में उतरेगी। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्यों को गति देने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। निर्णय और नीति आम नागरिक के हितों और आकांक्षाओं के अनुरूप होने पर दिया जोर। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने देवघर के दुम्मा प्रवेश द्वार पर राजकीय श्रावणी मेले का किया विधिवत शुभारंभ। मेला अवधि में स्पर्श पूजा पूरी तरह रहेगी बंद। आज देश भर में मनाया जा रहा आध्यात्मिक और शैक्षणिक गुरुओं को समर्पित गुरु पूर्णिमा का त्योहार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। राज्य में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी। सीआईएसएफ ने सीसीएल और एनके तथा पिपरवार एरिया के जंगल से भारी मात्रा में अवैध कोयला किया बरामद। और रांची में 135वें डोरंड कप प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला आज शाम 7 बजे से इंडियन एयरफोर्स फुटबॉल टीम और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच होगी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: और हाँ, हमारा दूसरा सवाल ये है कि ऐसा कोई गीत जो आपको बेहद पसंद है, जिसे देखने के लिए आप उस फिल्म को देखने गए थे थिएटर तक और वहां जाकर आपको पता चला कि अरे ये गीत तो फिल्म में रखा ही नहीं गया है, तब आपको कैसा लगा होगा, क्या मनस्थिति आपकी रही होगी, ना वो फीलिंग्स आपको हमारे साथ शेयर करनी है। तो सवाल एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं, ऐसा कौन सा गीत जो आपको पसंद है और फिल्मी पर्दे पर वो गीत आज भी जब हम उन फिल्मों को देखते हैं कहीं न कहीं तो वो फिल्म में हमें नहीं दिखाई देता है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हाँ, ऐसा कोई गीत जिसे देखने के लिए आप थिएटर तक गए और उस फिल्म को देखने आपने पूरा देखा, लेकिन पता चला कि अंत तक वो गीत उस फिल्म में कहीं भी नजर नहीं आया, उसके बाद आपकी मनस्थिति क्या हुई? उस फिल्म का, उस गाने का जिक्र हमारे साथ आपको करना है कम से कम शब्दों में। आइए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की। फिल्म का नाम है सावन की घटा।

दोस्तों 1966 की फिल्म है ये सावन की घटा और मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें थी। ओपी नैयर का संगीत था। कहते हैं कि इसे साउंडट्रैक एल्बम में तो जारी किया गया था लेकिन संपादन या अन्य कारणों से ये पर्दे पर फिल्माए गए दृश्यों में ये गीत नहीं आ पाया था।

हमारे श्रोता का कहना है कि आज की सुंदर सी इबारत में विरह, याद, तड़प, बिछड़न और अधूरे प्रेम की गहरी अनुभूति है। भाव भी यही है कि प्रेम में बिछड़ने के बाद हर पल याद, तन्हाई और इंतजार का एहसास बना रहता है, फिर भी दिल तो दिल है। ये हर पल किसी न किसी की याद में धड़कता है, किसी की खुशी में मुस्कुराता है और किसी की कमी में चुपचाप भीग जाता है। यही तो दिल की सबसे खूबसूरत पहचान है। और आपने कुछ गानों का जिक्र भी किया है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज काव्यांश का मूल भाव शायद ये है कि याद, तड़प, इंतजार और विरह ये चार शब्द नहीं बल्कि प्रेम के वे चार महाद्वीप हैं जिनसे निकलकर हर सच्चा अनुराग अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। याद वर्तमान में अतीत की सजीव उपस्थिति है, ये हृदय के वीराने में चुपके से जलने वाला दिया है। तड़प बिना धुएं के लगातार सुलगती हुई प्राणों की आग है। इंतजार प्रेम की पराकाष्ठा है जो चौखट पर टंगी आंखों की मुख प्रार्थना है। विरह को विप्लव श्रृंगार कहा गया है जिसे मिलन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। ये मिलन की आनंदमयी सुबह से ठीक पहले की घनी रात है। यानी याद अगर बीज है तो तड़प उसकी अंकुरण की चटपटाहट है, इंतजार उस पौधे को सींचना है और विरह वो मौसम है जो अंततः मिलन के अमर फल को जन्म देता है। आपने आगे लिखा है कि गाने पर्दे पर जीवंत नहीं हुए लेकिन कानों को सुकून जरूर देते हैं, वही गाने आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। बहुत सुंदर इबारत आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कई बार फिल्म 3 घंटे से ज्यादा लंबी हो जाती है जिस कारण निर्देशक को मजबूत गानों को भी हटाना पड़ता है, कहानी का ट्रैक बदलना। अगर किसी गाने के आने से फिल्म की कहानी की मुख्य धारा प्रभावित होती है या भटकाव महसूस होता है तो संपादन के दौरान यानी एडिटिंग के दौरान उसे हटा दिया जाता है। ऑडियो की लोकप्रियता फिल्म से हटने के बावजूद संगीत प्रेमियों के बीच ये ट्रैक कैसेट और एल्बम के माध्यम से अमर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी विरह व्यथा की आह है, याद, तड़प और इंतजार की राह है। सुनी है राहें, सुना है डगर, तुम्हारे बिना थम सा गया है सफर। खिलते हैं फूल पर खुशबू नहीं है, पास है सब कुछ मगर वो एहसास नहीं है। कहने को तो सारा जहां साथ है मेरे, पर सच कहूं तो हर तरफ घने अंधेरे। तुम ही हो मेरी दुनिया का उजाला, बिन तुम्हारे सुना है इस जीवन का प्याला। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। आवाज लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मुनीम जी। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था मुनीम जी। गीतकार थे साहिर लुधियानवी और संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो सवाल आज के जो हमने आपसे पूछे हैं, एक बार फिर आपको दोहराई देते हैं। किसी एक गीत का नाम बताइए, फिल्म का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए, कलाकार का नाम बताइए, जो गीत आपको बेहद पसंद है और वो फिल्मी पर्दे पर नहीं दिखाया गया लेकिन रेडियो के जरिए आपके दिलों तक पहुंचा और आज भी अपने दिलों में अपना घर बनाए हुए है। बस किसी एक गीत का जिक्र। और हाँ, हमारा दूसरा सवाल यह है कि ऐसा कोई गीत जब आप उसे देखने के लिए, उसका फिल्मांकन देखने के लिए किसी थिएटर में गए हो उस फिल्म को देखने के लिए और वहां जाकर आपको पता लगा कि अरे इस गीत को तो फिल्म में रखा ही नहीं गया, तो आपकी मनस्थिति क्या थी, कौन सा था वो गीत और आपको उस फिल्म को देखने के बाद फिर कैसा लगा, वो अनुभव कम से कम शब्दों में आपको साझा करना है।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि विरह केवल बिछड़ने का नाम नहीं बल्कि उस प्रेम का दूसरा रूप है जो मिलन से भी ज्यादा अधिक गहरा होता है। अधूरे प्रेम की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि उसमें शिकायत कम और प्रतीक्षा अधिक होती है। किसी की याद आज भी आपकी मुस्कान और आपकी आंखों की नमी दोनों की वजह हो सकती है और वो प्रेम कभी अधूरा नहीं होता। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कुछ ऐसे गाने आप सुनाने को बेताब लग रही हैं और हम भी जो गाने फिल्मों से हटा दिए गए लेकिन वो बेहतरीन नगमे हैं, जब आप प्ले करेंगे तब हमें पता लगेगा कि ये गाने कभी हमने सुने थे या नहीं। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, लगभग आधा कार्यक्रम निकल चुका है, आपने काफी गीत सुन लिए हैं, अब बताइएगा कि ये गीत आपने सुने थे या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरे अपने फिल्म के लिए गुलजार साहब ने मीना कुमारी को जहन में रखकर गीत लिखा, रोज अकेली आए बेचारी जाए चांद कटोरा लिए भिखारन रात। लेकिन गीत शूट होने से पहले ही मीना जी नहीं रही, सुमनताई कल्याणपुर की आवाज में ये गीत कभी कभी रेडियो पर सुनने को मिलता है, आज भी आप सुनाइए। नहीं, आज तो ये गीत हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे, लेकिन हाँ, जब भी इसी तरह का कार्यक्रम या कभी कोई खास गाने हम लेकर आएंगे तो इस गीत को जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत भी बहुत अच्छी है, इस प्रकार के गीत तो बहुत सारे हैं, पर एक कव्वाली शोले फिल्म की थी जिसे मन्ना डे, शैलेंद्र और किशोर कुमार जी ने गाया था। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गाने जो है मन को रोशन कर देते हैं। मंदाकिनी जी, एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी में जिस किसी से भी हम सीखते हैं वो भी गुरु होता है। आज हम कार्यक्रम के जरिए सीख रहे हैं कि ऐसे कौन से गीत हैं जो फिल्मों में शामिल नहीं किए गए थे। वहीं हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि इस तरह के कार्यक्रम अगर अलग अलग तरीके से पेश किए जाए तो अच्छा लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का प्रसिद्ध गीत है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया फिल्म में नहीं रखा गया था और संगीतकार ओपी नैयर और गायिका आशा भोंसले के बीच व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन फिल्म में ये गाना न होने पर फिल्में पर्दे पर फिल्माया नहीं गया, इसके बावजूद गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ और इसी गाने के लिए आशा भोंसले को वर्ष 1975 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया था। वो गीत भी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जरूर आपको सुनवाएंगे इस कार्यक्रम में। एक श्रोता लिखते हैं कि रात की तन्हाई में जब आपकी याद आती है तो दिल की फरियाद और भी गहरी हो जाती है, नींद और चैन कहीं खो जाते हैं और तब लगता है कि जमुना किनारे सजी यादों की महफिल में ये जहां सूना सूना लग रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि

आज का ये कार्यक्रम सुनने के लिए हम तैयार हैं। आपके साथ सुरीला सफर तय कर चुके हैं और आगे आप तक बने रहेंगे, यही हम उम्मीद करते हैं। जी तो हमें बिल्कुल यकीन है कि सुरीला सफर में आप हमारे साथ हैं और उन गीतों के साथ हैं जो हमने अक्सर सुने हैं और ये गीत हमारी जिंदगी में रच बस गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। ओपी नैयर का संगीत है, युगल स्वर मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की, फिल्म का नाम मेरे सनम।

हमने जो दो सवाल आपसे किए हमारे श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आम्रपाली का एक गीत जो लता जी ने गाया था लेकिन फिल्म में नहीं दिखाई पड़ा, जाओ रे जोगी तुम जाओ रे, ये गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज कार्यक्रम सुनने का आनंद ही अलग है, दुर्लभ मधुर गीत सुनकर मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म का गीत, चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मुनीम जी का गीत जो आपने सुनवाया था इसे लता मंगेशकर ने गाया था, एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, साहिर लुधियानवी ने लिखा था। हालांकि ये गाना अपने आप में एक बेहतरीन रचना थी लेकिन फिल्म की पटकथा और गति को ध्यान में रखते हुए इसे थिएटर से पहले हटा लिया गया था, रिलीज होने से पहले हटा लिया गया था, जो बाद में ऑडियो रिकॉर्ड के रूप में लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल वो गीत बहुत ही खूबसूरत था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो

भी आप एक ऐसे कार्यक्रम को गूंथ कर लाई हैं, ऐसे गाने सुनने को मिल रहे हैं जो सिर्फ विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर ही सुनने को मिलते हैं। शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया, ये मेरे सबसे प्रिय गानों में से एक है। आशा भोसले की दर्द भरी भीगी भीगी आवाज, ओपी नैयर का अद्भुत संगीत और SH बिहारी के भावपूर्ण शब्द इस गीत को एक नया अनुपम ऊंचाई दे देते हैं। इस गीत को सुन सुनकर मेरे मन में इसे बड़े पर्दे पर देखने की तीव्र इच्छा थी। इसी उत्सुकता के साथ में प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म देखने गया। पूरी फिल्म समाप्त हो गई लेकिन ये गीत कहीं दिखाई नहीं दिया। उस क्षण जो निराशा हुई उसे शब्दों में बांधना कठिन है। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में ये गीत एक विशिष्ट और अमर पहचान रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये गीत सुनने के बाद तो वाकई दिल में एक अलग ही किस्म का दर्द उठता है। तो चलिए इसी गाने को सुन लिया जाए। आपने जैसा कि बता ही दिया है कि ओपी नैयर का संगीत है, SH बिहारी के बोल हैं, आशा भोसले की आवाज है और फिल्म का नाम है प्राण जाए पर वचन न जाए।

हमारी श्रोता लिखते हैं कि जिस दौर में कलात्मक फिल्में बना करती थी वो दौर तो स्वर्णिम काल था। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गीत चैन से हमको कभी आपने जीने न दिया। ये फिल्म देखने बार बार हम इस गीत को याद करते हैं। मल्टी स्टारर और डाकुओं की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म की कहानी तो अच्छी थी लेकिन ये गीत पूरी फिल्म में कहीं भी दिखाई नहीं पड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम आपके हैं

कौन का फिल्म छत्रपति संभाजी नगर में प्रदर्शित हुई, तब थिएटर मालिक ने माधुरी दीक्षित पर फिल्माया गया चॉकलेट लाइम जूस गीत काट दिया था, फिर कुछ सप्ताह बाद फिल्म में से दिखाया भी गया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए का गाना चैन से हमको कभी, ये गाना कई बार रेडियो पर सुना है। 1972 में यानी 1972 में, फिर जब 1974 में मेरी शादी हुई तो मैं पत्नी के साथ देखने गया था फिल्म, परंतु इस गाने को फिल्म में नहीं देखकर बहुत ही निराशा हुई। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं तो आज जो जानकारी बटोर रही हूं कि इतने सुपरहिट गीत हैं जिन्हें हम सुनते रहते हैं और ये फिल्मी पर्दे पर कहीं दिखाई नहीं गए थे, ये जानकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संजय दत्त और सलमान खान अभिनीत फिल्म 10, जिसमें एक गाना था 10 बहाने करके ले गई दिल, ये फिल्म में नहीं दिखाया गया। वहीं श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सावन की घटा, जिसका गीत तभी आपने सुनवाया, होठों पे हंसी आंखों में नशा, संगीतकार ओपी नैयर की एक बेहतरीन और मधुर रचना थी जिसे मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया था। ये बात सही है कि ये गाना फिल्म के सिनेमाई प्रदर्शन स्क्रीन पर फिल्मांकन में से हटा लिया गया था और केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग्स या एल्बम में ही उपलब्ध रहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि होठों पे हंसी जो गीत आपने सुनवाया आशाताई और रफी साहब की आवाजों में, इस दिलकश गीत के लिए मैं आपका यानी मेरा मंदाकिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने खूबसूरत गीत को आज हमें सुनवाया है। क्या बात है, आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। लिखते हैं कि वाह क्या बात है, दिल खुश हो गया है, बहुत खुशी की बात है। और अगर हमारे श्रोता खुश हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कोई होती ही नहीं है, यकीन करिए हमारा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि यूपी नैयर साहब अपनी खास तांगा लय और फुट टैपिंग संगीत के लिए जाने जाते थे, इस गाने में भी उन्होंने अपनी उसी सिग्नेचर शैली का इस्तेमाल किया है। गाने का संगीत बेहद चुलबुला ऊर्जावान और रोमांटिक है। एकोस्टिक गिटार ढोलक और सैक्सोफोन का जो मिश्रण नैयर साहब ने तैयार किया, सुनते ही श्रोता तो झूमने पर मजबूर हो जाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म 5 राइफल्स का झूम बराबर झूम शराबी जो गाना है, वो फिल्म देखने जब हम गए तो पता चला कि ये गाना काट लिया गया है, तो हमें बेहद निराशा हुई। जी तो आज इस कार्यक्रम में हमने कोशिश की है उन 10 गीतों को लाने की। वैसे तो बहुत सारे गीत हैं ऐसे जिन पर अगर हम चर्चा करें तो शायद कई सारे कार्यक्रम हमें देने पड़े, लेकिन आज जो गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं वो फिल्मों में किसी न किसी वजह से हटा लिए गए थे। और जब कोई श्रोता या हम में से कोई एक उस फिल्म को देखने गया होगा उस गीत को खास सुनने के लिए, तो उसे बेहद अफसोस भी हुआ होगा या निराशा हाथ लगी होगी। ऐसा ही एक गीत है फिल्म कश्मीर की कली का, आशा भोसले की आवाज है, SH बिहारी के बोल हैं, ओपी नैयर साहब की धुन है। आइए सुनते हैं ये गीत। कहते ही गीत दिखाया गया था इस फिल्म में, लेकिन बाद में इस गीत को हटा लिया गया था।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की इबारत शानदार है, उन गीतों को न चाहते हुए भी जब फिल्म में नहीं देखा गया तो बहुत उदासी सी छा जाती है। मैं बात कर रहा हूँ फिल्म रोटी के गीत की, फूलों के साथ दिल भी, ये लता मंगेशकर की आवाज में गीत है। और जब मैं फिल्म देखने गया तो ये गीत उस फिल्म में नहीं था। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल है। बिल्कुल आपने सही कहा। और जब हम अपनी पसंद का कोई गीत फिल्मी पर्दे पर नहीं देखते हैं या वो निकल जाता है तो हमें बेहद अफसोस होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुना है कि फिल्म शोले की शुरुआत में कव्वाली रखी गई थी अमजद खान पर फिल्माया गया था, क्या वो गीत आज सुनने को मिलेगा? जी नहीं, आज इस कार्यक्रम में तो हमने उसे शामिल नहीं किया है। हाँ, आगे कभी हम उस गीत को ढूंढकर जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म सुनहरा संसार का गीत किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ हेलो हेलो, जो राजेंद्र कुमार और हेमा मालिनी पर फिल्माया जाने वाला था, वो नौशाद के किशोरदा के प्रति पूर्वाग्रह के कारण फिल्म के निर्देशक तक नहीं पहुंच पाया, पर ग्रामोफोन रिकॉर्ड पर वो गाना चढ़ गया था। वो गीत इन्हें बेहद पसंद आता है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म बाजीगर का एक गीत मुझे बहुत पसंद है, जब मैं उसे एक कैसेट या टेप खरीद कर लाया तो मैंने इस गीत को कई बार सुना और मैं फिल्म देखने गया बड़े चाव से इस गीत को सुनने के लिए, लेकिन वो फिल्म में मुझे लास्ट तक वो गीत सुनाई नहीं दिया तो मुझे बेहद दुख हुआ। गुट है समझकर चांद जिसको आसमान है, अच्छा कोई गाना जो विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में है वो आपको बेहद पसंद आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मंदाकिनी जी कुछ याद तो नहीं आ रहा, मगर फिर भी कुछ फिल्में हमने देखी हैं जिनमें से कुछ चुनिंदा गीत को तो फिल्म से हटा दिया गया था मगर आकाशवाणी और ऑडियो कैसेट के जरिए हमने उन्हें कई बार सुना है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म हकीकत का गाना खेलो ना मेरे दिल से और ऐसे बहुत सारे गीत हैं जिन्हें हटा लिया गया था। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी पसंद का गीत फिल्म राम और श्याम का है जो फिल्म में नहीं रखा गया, वो है मैंने कब तुमसे कहा था कि मुझे प्यार करो, इसमें दिलीप कुमार और वहीदा रहमान है, ये गाना भी मुझे बेहद पसंद आता है। और कई श्रोताओं ने अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है, लेकिन अब कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक हम पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना, फिल्म नीला आकाश से हमने लिया है, लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को आपने बहुत कम सुना होगा, बेहद ही खूबसूरत गीत है, राजा मैदेली खान की बोल है और मदन मोहन की धुन है।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म नीला आकाश का ये गीत सुना। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सिर्फ लंबी होने की वजह से जो गीत काट दिए गए, लगता है उनमें से कुछ गीत तो ऐतिहासिक गीत बन गए। जी हाँ बिल्कुल, और ये गीत हमारे दिलो दिमाग पर आज भी असर किए हुए हैं, ये बात क्या कम है। तो अब कार्यक्रम का वक्त खत्म हो चला है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें बाघों की। एक इंसान के तौर पर हम सभी जीवों की सुरक्षा का दायित्व रखते हैं, क्योंकि हम ऐसा करने में सक्षम हैं और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम वन्य जीवों की देखभाल करें। बात भारत की हो तो हमारा देश कई वन्य जीवों के संरक्षण में अग्रणी रहा है, इनमें ही शामिल है बाघ। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में विश्व के कुल बाघों में से तकरीबन 75% बाघ वास करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब बाघों की घटती संख्या चिंता का विषय बन गई थी। ऐसे में उसे बचाने और उसकी संख्या बढ़ाने की कवायद शुरू हुई और आज बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बाघ एक प्रमुख शिकारी जानवर माना जाता है, इसलिए उससे हम इंसानों का डरना स्वाभाविक है। उस पर न जाने बाघों को लेकर कितने किस्से कहानियां भी तो हमने सुन रखी हैं। वैसे बच्चों को तो वन्य जीवों के कई गीत भाते हैं,

0: हालांकि शेर, चीते और बाघ जैसे वन्य प्राणियों के हमलों को लेकर कई किस्से कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जिस तरह हम उनसे डरते हैं, वो भी हमसे बिल्कुल उसी तरह डरते हैं। कई बार मानव बस्तियों में शेर, चीते या बाघों का आना तो हमने सुना है, किंतु क्या वाकई वो हमारी बस्ती में आते हैं, या हमने ही उनकी रहने की जगह पर कब्जा करते करते उनके लिए स्वतंत्र रहने की जगह ही बाकी नहीं रखी है। फिर भी शेर, चीते और बाघ जैसे प्राणी दुनिया के सबसे खतरनाक प्राणी यानी मानव से दूर ही रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मानव उनसे भी ज्यादा हिंसा प्रेमी रहा है। अगर वो गलती से भी मानव बस्ती में आ जाएं, तो उन्हें बचकर जाने के लिए जी जान लगाना पड़ता है, और मानवों के पास बाघ, शेर, चीतों को भगाने के न जाने कितने किस्से हैं।
1: मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है,

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ,
3: वन्य जीवों के संरक्षण में तो हम अपना दायित्व निभा ही रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सुरक्षा में हम अपना हिस्सा निभाते हैं? वन्य अभयारण्य या जू आदि में जब हम शेर, चीते या बाघों को देखने जाते हैं तो उन्हें तरह तरह की चीजें फेंक कर परेशान करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी ओर देखें। उनके साथ फोटो लेने की होड़ भी इन दिनों हावी रहती है। इसके लिए तरह तरह की फ्लैश लाइट्स भी उनके मुंह पर चमकाने से हम नहीं चूकते, जबकि इससे उनकी आंखों को नुकसान हो सकता है। जंगल सफारी के दौरान भी हम उन्हें परेशान करने का कोई ना कोई मौका तलाश ही लेते हैं। अब जब हम उनके आधे से ज्यादा निवास स्थान पर अपना आधिपत्य जमा ही चुके हैं तो कम से कम उनके संरक्षित स्थलों पर तो उनकी सुविधा का ख्याल रख ही सकते हैं। एक मनुष्य के तौर पर सभी जीवों का सम्मान करना भी तो हमारा ही फर्ज है, ताकि वो भी अपने स्थान पर उसी सुकून से रहें जैसा हम अपने घर में रहते हैं।
4: तुम भी

आज ही कीजिए ये फैसला कि अब से अपनी ही तरह हर जीव की देखभाल का भी करेंगे ख्याल। इसी संदेश के साथ आज की त्रिवेणी यहीं समाप्त होती है। दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा, विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा, सरकार इस कठिन समय में असम को हर संभव सहायता प्रदान करेगी। भारत ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से व्यापार बहाल होना चाहिए। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा फिर शुरू हुई। ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक में कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसके तहत दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों की दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था।

0: चर्चा में भाग लेते हुए जनता दल यूनाइटेड के सांसद दिलेश्वर कामत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेगा और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों के हित में लाया गया है। वहीं विधेयक का विरोध करते हुए आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि विधेयक अपने घोषित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। विधेयक पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था अब बहुत महंगी हो गई है। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की। श्री रिजिजू ने श्री गांधी से सदन में अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने की मांग की।
1: कौन सा ऑर्डर है वो ऑर्डर आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए। आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए।
0: श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सांसद जॉन ब्रिटास ने जेएनयू छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशे घोष के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पार्टी मुख्यालय में कथित तौर पर घुसने का मुद्दा उठाया। इस पर सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह कानून व्यवस्था का एक सामान्य मामला है। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग पर जोर देते हुए विरोध जारी रखा, जिसके कारण सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। भाजपा सांसद डॉ. सतीश पूनिया ने संसद में कांग्रेस के आचरण की आलोचना करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने भी विपक्ष पर परीक्षा सुधारों पर हुई चर्चा में रचनात्मक रूप से भाग न लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष ने प्रस्तावित कानून में कोई कमी नहीं बताई और न ही सुधार के लिए कोई सुझाव दिया। भाजपा सांसद शशांक मणि ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले के विरोध में झारखंड समेत कई भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजय सेठ ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की।
2: झारखंड के अंदर एक टीडीपीएल एजेंसी है जो परीक्षा कराती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको ब्लैकलिस्टेड किया, यहाँ तक कि जेपीएससी ने ब्लैकलिस्टेड किया, फिर उसको बुलाकर पिछले 4 सालों से उसी को जिम्मा दे दिया। जो ब्लैकलिस्टेड है आपने भी किया, खाली में परोस के दे दिया, अब आप कहाँ से न्याय दे पाओगे। तभी तो आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। हम तो इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे, कब वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री हैं।
0: भाजपा सांसद विद्युत बरन महतो ने झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस सरकार पर गहरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है।
3: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है और आए दिन झारखंड में इस तरह कुछ न कुछ होता है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल इस वर्ष संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी सांसद पीपी चौधरी ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 तथा केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था लागू करना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया।

0: प्रश्न है कि श्री पीपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में हाँ के हैं, जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में ना के हैं। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्व शर्मा से बात की और ऊपरी असम में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर जारी राहत कार्यों की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. शर्मा ने बताया कि श्री शाह ने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्स्थापन और पुनर्निर्माण के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इस बीच असम में बाढ़ की स्थिति में और सुधार हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
2: असम में शिवसागर, गोलाघाट, सरायदेव और जोरहाट जैसे सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। असम सरकार ने हाल की बाढ़ में प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास उपायों की घोषणा की है। इनमें बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि, प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता तथा विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सहायता शामिल है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में गंभीर होती बाढ़ की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इसमें 4 लोगों की मौत हुई है और 6 जिले में 2,00,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि लगभग 28,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल है। बैतरणी नदी आखुआपदा में खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है और सालंदी नदी में अभी भी उफान है। जाजपुर के दशरथपुर में तटबंध टूटने से सैकड़ों परिवार फंस गए हैं। बचाव और राहत कार्यों के लिए NDRF और ODRAF के 17 टीम तैनात की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की है। भारत ने कहा है कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तुरंत बंद होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि पश्चिम एशिया में हमले फिर से शुरू होना चिंता का विषय है।
4: पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत अहम इलाका है। इस इलाके की सुरक्षा और स्थिरता में हमारे बड़े हित जुड़े हैं। भारत का व्यापार और ऊर्जा सप्लाई चेन इस इलाके से मजबूती से जुड़े हैं। खाड़ी इलाके में लगभग 1 करोड़ भारतीय रहते हैं और काम करते हैं। उनकी सुरक्षा और भलाई हमारे लिए सबसे आवश्यक है। इस इलाके में चल रहे टकराव में कुछ समय के लिए रुकावट के बाद हमलों का फिर से शुरू होना और तनाव का बढ़ना चिंता की बात है। ये बहुत चिंताजनक है और भारत तनाव को तुरंत कम करने की अपील करता है।
5: कॉल्स फॉर एन इमीडिएट डीएस्केलेशन ऑफ टेंशंस।
1: श्री हरीश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर आवाजाही और व्यापारिक स्वतंत्रता शीघ्र बहाल की जानी चाहिए। यूक्रेन के कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि MV अमीर वन जहाज पर सवार भारतीय नाविकों से संबंधित स्थिति उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे जहाज पर सवार सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संपर्क में हैं। दूतावास ने ये जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से हस्तक्षेप करने की अपील की है। ये अपील उन खबरों के बाद की गई है जिनमें आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा की गई गोलीबारी में 40 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर मानवाधिकार निगरानी संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क को भेजी अपनी अपील में कहा है कि यह घटना 27 जुलाई को ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी द्वारा शांतिपूर्ण मार्च के रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर दोबारा शुरू होने के बाद हुई। उधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने जारी एक बयान में कहा है कि किसी नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और शांतिपूर्ण सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन बनाने के अधिकार के उल्लंघन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा

0: पता करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आज वैश्विक बाघ दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्य जीव प्रेमियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में बाघों की कुल संख्या का 70% भारत में है। भारत के बाघ संरक्षण प्रयास प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सदियों पुरानी संस्कृति से प्रेरित हैं और जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति से संचालित हैं। वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि भारत ने बाघों के संरक्षण में शानदार सफलता हासिल की है।
1: हमारी जो टाइगर पॉपुलेशन 2226 थी वो बढ़कर 3600 से ज्यादा हुई। 2014 में 47 टाइगर रिजर्व्स होते थे, उनकी संख्या बढ़कर भी 58 हुई है। एलिफेंट रिजर्व्स की संख्या जो 28 होती थी वो भी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर के 32 हुई है। डेजिग्नेटेड रामसर साइट्स की संख्या 26 थी जो बढ़कर के अब 100 हो गई है।
0: इस दौरान श्री यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा विकसित इको टूरिज्म वेब पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल पर सभी बाघ अभयारण्यों की जानकारी उपलब्ध है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने रजत पदक जीतने पर गुलवीर सिंह को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर फिर चर्चा। सरकार ने कहा विधेयक का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों का विश्वास बढ़ाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने असम में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में हाल में हुए कई समुद्री जहाजों पर हमलों की कड़ी निंदा की। पाकिस्तानी सेना की बर्बर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वालों की संख्या 40 हुई। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है सुहाग रात, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था सुहाग रात। गीतकार थी इंदिवर और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें, फिल्म का नाम शिकार, गीत रचना हसरत जयपुरी की है और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: दूर जब दिन ढल जाए।
1: मुकेश के गानों में है सादगी।
2: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल।
1: मुकेश के गानों में है रुमानिया।
2: कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार।
1: हम सब के भीतर रहते हैं थोड़े थोड़े मुकेश।
2: जाऊं कहां बताए दिल।
1: पार्श्व गायक मुकेश की याद में एक दिलचस्प महफिल जिसमें शामिल हैं गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र।
3: जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है।
1: आज के मेहमान 29 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में, फिल्म का नाम है सरस्वती चंद्र। गीत इंदिवर ने लिखा है और तर्ज कल्याण जी आनंद जी ने बनाई है।

फिल्म साथी का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन नौशाद साहब की और आवाज लता मंगेशकर की है।

0: सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म मेरे हुजूर का गीत, गीत हसरत जयपुरी का और संगीत शंकर जयकिशन का है।
7: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
1: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
0: वहीं जमशेदपुर से लोकसभा सदस्य विद्युत वरण महतो ने राज्य सरकार की नीतियों और हालिया परीक्षाओं की शुचिता पर सवाल उठाए हैं।
2: जेपीएससी बहाली में पेपर लीक हुआ है, अभी उत्पाद विभाग के सिपाही की बहाली में 17 सिपाही का जो मृत्यु हुआ है उसको हम लोग मांग करते हैं कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसके लिए हम लोग धरना दिए हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो जेपीएससी में धांधली हुआ इसको सीबीआई जांच करे।
0: सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिस्टर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा गड़बड़ी

0: मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि सरकार ने कांवरियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए हैं।
1: सभी से आते चलते हुए हम तमाम आपस में छोटे छोटे प्रयास को इकट्ठा करते हुए श्रावण मास से महायज्ञ सप्तम कराने में हमारी भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए अपनी भूमिकाओं के निर्वहन का आग्रह करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि देव महादेव की कृपा से यह सावन का मेरा बहुत अच्छे से गति होगा।
0: लोहरदगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता गणना पर प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त ने बताया कि जिले के सभी 293,871 मतदाताओं के प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस सामूहिक प्रयास के बाद अब आगामी 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। लोहरदगा मंडल कारा में न्यायिक हिरासत में बंद एक कैदी की संदिग्ध मौत के बाद आज कुड़ू प्रखंड के पंडरा में ग्रामीणों ने जोरदार हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 कुड़ू रांची मुख्य पथ को करीब 2 घंटे तक जाम रखा, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया। आज पूरे राज्य में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्य भर के प्रमुख मठों, मंदिरों और आश्रमों में सुबह से ही गुरु पूजन और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। विशेष रूप से जामताड़ा जिले के धार्मिक स्थलों पर आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। जिले के नारायणपुर प्रखंड में बराकर नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दुखिया बाबा मंदिर और नाला प्रखंड के देवलेश्वर धाम में हजारों की संख्या में नर नारी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सारी शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को, सभी गुरु को जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा, उन्हें प्रणाम। सोनाली आपको भी नमस्कार।
1: ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार और गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं।
0: आज गुरु पूर्णिमा के दिन सभी अपने गुरु को याद कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, चरण स्पर्श कर रहे हैं। सच में अगर गुरु न होते तो हम इतना सब कुछ कैसे सीख पाते लगता है। हालांकि सबसे पहली गुरु तो माँ होती है, माँ के बाद सबसे पहली गुरु या पहला गुरु जो होते हैं वो स्कूल में टीचर होते हैं। तो कई बार ये स्थिति आ जाती है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए,
1: बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देव बताए।
0: हाँ, तो ऐसी नौबत भी आती है तो हमें लगता है कि बस जिनसे आपने सब कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्हें प्रणाम कर लें। आज
1: हमारे एक साथी ने लिखा है, ममता जी हमने विविध भारती से बहुत कुछ सीखा है, इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विविध भारती को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
0: बिल्कुल, तो हम सभी विविध भारती को प्रणाम करते हैं क्योंकि हमने भी तो सीखा है
1: जी, और हमने बहुत सारे हमारे जो साथियों से भी बहुत कुछ सीखा है। वो जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखकर भेजते हैं तो उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को
0: बिल्कुल
1: मिलता है।
0: और श्रोताओं का से तो हमें बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिलता है
1: जी,
0: जब वो कोई समीक्षात्मक टिप्पणी लिखते हैं, कोई आलोचना लिखते हैं, तो उससे हमें हमारा विकास होता है, परिष्कार होता है हमारी भाषा का, शब्दों का जो हम बोलते हैं और विषयों। अब बात विषयों की चली है तो हम बता देते हैं कि आज हम किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है और बाघ के नाम से डरी तो नहीं ना डर तो लगता है,
1: डर तो लगता है,
0: लेकिन जाते हैं हम लोग, घूमने भी जाते हैं,
1: बस हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए जब हम देखने जाते हैं, जब हम जंगल सफारी पे जाते हैं तो उस वक्त हमें थोड़ी सावधानी बरतना चाहिए क्योंकि हम जोश में आके ऐसी कुछ हरकतें कर देते हैं हम सभी कि उसके कारण जो है बाघ जो है वो हमारे ऊपर हिंसक रूप से हमला वगैरह
0: हमला करते हैं। और उसमें सबसे बड़ी सावधानी तो ये रखनी चाहिए कि जो सबकी बोलने की आदत होती है, समूह में जाते हैं और एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, तो जब वहाँ जंगल सफारी की सैर पर जब जाएं तो एकदम जैसे मोबाइल में म्यूट बटन होता है, म्यूट टच, तो वैसे ही म्यूट हो जाए वहां पर, क्योंकि जरा से भी बातचीत से उनका असंतुलन होता है, ध्यान विचलित होता है और फिर हमला कर सकते हैं। तो ये ख्याल रखना चाहिए। हालांकि जो जंगल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी होते हैं वो बाकायदा इसका ख्याल रखते हैं और
1: रखते हैं।
0: हाँ, और वो बताते भी हैं, हमें समझाइश भी देते हैं इस बात की
1: जी।
0: और
1: आज क्रेडिट कार्ड का माया जाल जिसमें हम लोग उलझते जा रहे हैं, खासकर युवा पीढ़ी।
0: बिल्कुल,
1: तो इस बारे में भी आप लिखकर भेजिए कि आप के क्या अनुभव रहे हैं और किस तरह से ने क्रेडिट कार्ड का हमें उपयोग तो करना ही है पर उसे किस सावधानी के साथ उसका उपयोग करना है, यानी उसके माया जाल में हमें फंसना नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं सोनाली। एक बात बताइए कि जब कहीं घूमने जाते हैं किसी पार्टी फंक्शन में तो क्या पहनना पसंद करती हैं आप, जो रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है ड्रेस या फिर और कुछ?
1: साड़ी पहनना बहुत पसंद है
0: हमें लगता है हर भारतीय स्त्री को साड़ी पहनना पसंद आता होगा। हमने तो सुन रखा है कि जो सुन क्या बातें होती रहती हैं, अब तो मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप के जरिए बातचीत होती है, तो जो विदेशों में जो भारतीय महिलाएं हैं वो यहाँ से बाकायदा साड़ियां मंगवाया करती हैं
1: जी, और पहनती और भी हैं बड़े शौक
0: मौकों
1: से।
0: पर शौक से पहनती हैं
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में बहुत सारी जानकारी हम देंगे क्योंकि साड़ियों का
1: साड़ी केरल
0: साड़ियों का संसार क्योंकि बहुत समृद्ध है
1: जी।
0: तो साड़ी के बारे में जानकारी देंगे और शब्द बहुत अहम होते हैं,
1: अहम होते हैं।
0: हाँ, वो एक तीर की तरह है, कहा जाता है ना कि बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली दोनों वापस नहीं आते तो इसलिए जो भी बोलें तो सोच विचार कर बोलें, शब्द हमारा और विचार आपके।
1: इसमें आदर को हमने चुना है तो आदर भी वैसे ही ममता जी कि आदर जब हम देते हैं तो हमें आदर मिलता है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो या हम उम्र हो, सभी से आदर के साथ पेश आए तो हमें भी आदर ही मिलेगा।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं।
1: और व्यंजन,
0: उसके बिना तो अधूरा लगता है
1: प्रोग्राम। व्रत के व्यंजन, अब व्रत के व्यंजन की बात चलती है तो वही बात चलती है, लोग वही मूंगफली दाने, वही साबूदाना,

0: हम उसमें भी अगर कुछ पौष्टिक खाएं, जैसे मखाने खा सकते हैं, फिर कच्चा पपीता है उसके व्यंजन बना सकते हैं, फिर उसके अंदर रामदाना है जिसे राजगीरा भी कहते हैं, या सामा के चावल, तो उसमें कुछ पौष्टिक हो तो उस तरह के व्यंजन भी हमें लिखकर भेजिए।
1: बिल्कुल, और मखाने के लड्डू भी बनते हैं,
0: मखाने की खीर बनती है,
1: जो खाने के बाद अक्सर मीठा खाने के जो शौकीन होते हैं
0: जी,
1: तो अगर इस तरह खाएं, व्रत में खाएं या ऐसे भी खाएं, बहरहाल अब क्या करें,
0: अब गीत सुनते हैं
1: ये गाना।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने गुरु पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं दी है। वैसे गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और कृतज्ञता का पावन उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में सफलता, संस्कार और आत्मिक उन्नति का मार्ग गुरु के मार्गदर्शन से ही प्रशस्त होता है। इसलिए हमें सदैव अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनके उपकारों को स्मरण रखना चाहिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब चाहिए आपने कहा ना, तो हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए
0: जी।
1: उसके लिए हमें खुद निजी स्तर पर जूझना चाहिए। एक कहावत याद आ रही है, जब बाघ की बात चली है, आज हमारा विषय भी है आज बाघ दिवस है, तो ऐसे में लोग कहते हैं ना कि जंगल की शान है बाघ, प्रकृति की पहचान है बाघ। जिस दिन जंगल से बाघ चले जाएंगे उस दिन जंगल भी वीरान हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये केवल एक वन्य जीव नहीं है बाघ, बल्कि ये पर्यावरण के प्रहरी के रूप में हम इन्हें जानते हैं। और अगर हम जंगलों की जो कटाई होती है, क्षरण हो रहा है, जंगलों की कटाई को रोकेंगे तो हम बाघ की सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोग शिकार करने जाते हैं और बड़े मजे से शिकार करके लौटते हैं और कहते हैं कि हम बाघ का शिकार करके आए, वो ठीक नहीं है। तो उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर ये वन्य जीव हमारे साथ नहीं रहेंगे, जंगलों में नहीं रहेंगे, तो हम जंगल से धीरे धीरे वंचित होते जाएंगे
0: जी। और बाघ खाद्य श्रृंखला में सबसे शीर्ष पर होते हैं संतुलन में। ये शाकाहारी जीवों की आबादी को नियंत्रित कर वन पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं। और एक स्वस्थ बाघ आबादी, समृद्ध जंगलों और बेहतर जल प्रणालियों को का संकेत देती है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है,
1: तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और बता दें अपने श्रोताओं को कि प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक टाइगर समिट के दौरान ये हुई थी।
0: और इस दिवस का उद्देश्य बाघों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, जंगलों की कटाई को रोकना इत्यादि बातें शामिल है। और भारत को विश्व के बाघ संरक्षण में अग्रणी देशों में माना जाता है। दुनिया के अधिकांश भाग बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ने 1973 और बाघ अभयारण्यों की स्थापना जैसे प्रयासों ने बाघों की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
1: तो अब एक काम करते हैं, ऐसा ही एक गाना है जिसमें जंगल आता है और पूरा जंगल की कहानी है
0: और बाघ की दहाड़ भी सुनाई देती है,
1: तो सुने वही गाना
0: जी।

0: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?
1: कई साल पहले की ये बात है।

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।
2: फिर क्या हुआ?
0: खुदा की कसम मजा आ गया मुझे मार कर, बेशरम खा गया।
2: खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है।
0: अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू?

0: माता जी,
1: अरे एक साथ
0: हमारे एक साथी ने लिखा है, एक बागिन तो मेरे घर में ही है, मेरी हाँ। वाइफ
1: अच्छा
0: अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की शुभकामनाएं
1: लेकिन भाई अगर वो सुन रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि ये बात उनकी सुन ली जाए और ताकि उनको ये दोबारा कहने के लिए प्रतिबंध लगा दिया जाए कि कैसे कह सकते हैं बागिन
0: और एक सखी ने और लिखा है कि बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा पार्क में हम बंद गाड़ियों में घूमने गए थे और जो दो बाघ अगल बगल से आ गए, जबकि हम सुरक्षित थे पर डर के मारे मुंह से आवाज ही नहीं निकली और हम एकदम बुद्ध बनकर गाड़ी में बैठे रहे।
1: क्या बात है भाई तो ये मतलब बाघ से डरना भी जरूरी है लेकिन बाघ से प्रेम करना भी जरूरी है
0: और बाघिन से भी डरना जरूरी है
1: बिल्कुल और
0: डर में उपस्थित
1: हाँ वो डर प्रेम वाला डर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डर अगर लगी तो फिर घर में दिक्कतें पैदा हो जाएगी।
0: वैसे आज साड़ियों का संसार, इसमें हम कसाबू साड़ी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। तो कसाबू साड़ी भारत की सबसे प्राचीन गरिमामयी और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध पारंपरिक साड़ियों में से एक है। ये मुख्य रूप से केरल राज्य की पारंपरिक वेशभूषा है। अपनी सादगी, शालीनता और सुनहरे किनारे ने सुनहरी जरी के कारण कसाऊ साड़ी भारतीय हस्तकरघा कला का अनुपम उदाहरण मानी जाती है।
1: और कसाऊ का मतलब ही है कि गोल्डन बॉर्डर किनारा ना, यही सुनहरी जरी साड़ी की सबसे बड़ी पहचान भी है, विशिष्टता भी है। पारंपरिक रूप से इसमें असली सोने और चांदी की जरी का प्रयोग किया जाता था।

0: जबकि आजकल उच्च गुणवत्ता वाली जरी का भी उपयोग होता है। अब सोने चांदी का उपयोग कहाँ कोई कर सकता है,
1: बहुत महंगी हो जाएगी,
0: बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी और पहनने के बाद भी दिक्कतें पैदा हो जाएंगी तो इसलिए कि वो नहीं लगे तो अच्छा है
1: जी। और कसाऊ साड़ी का इतिहास कई सौ वर्ष पुराना माना जाता है। ये केरल की सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय से इसे विशेष अवसरों और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता था। समय के साथ ये साड़ी देश विदेश में अपने विशिष्ट सुंदरता के कारण लोकप्रिय हो गई है।
0: और अमूमन इसका मूल रंग सफेद या ऑफ व्हाइट होता है। चौड़े सुनहरे जरी बॉर्डर इसकी मुख्य पहचान है। ये हल्की और आरामदायक होती है, साथ में आकर्षक भी। पारंपरिक होने के साथ साथ आधुनिक डिजाइनों में भी ये उपलब्ध है।
1: यानी आजकल इसमें सुनहरे बॉर्डर के साथ साथ लाल, हरे, नीले और मैरून रंगों की सजावट भी देखने को मिलती है। और कसाऊ साड़ियों का निर्माण मुख्यतः हथकरघा यानी हैंडलूम पर किया जाता है। पहले सूती धागों से साड़ी बुनी जाती है, फिर उसके किनारों पर सुनहरी जरी जोड़ी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया में बुनकरों की महीन कारीगरी और धैर्य का विशेष योगदान होता है। और केरल के बलरामपुरम, चेंदमंगलम, कुथमपुल्ली और कन्नूर जैसे क्षेत्र कसाऊ साड़ियों की उत्कृष्ट बुनाई के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ अनेक परिवार पीढ़ियों से इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
0: और ये भी बता दें कि कसाऊ साड़ी विशेष रूप से ओणम, विशु, विवाह, मंदिरों के धार्मिक समारोहों, सांस्कृतिक आयोजनों और शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुतियों में पहनी जाती है। केरल की दुल्हन भी विवाह के अवसर पर पारंपरिक कसाऊ साड़ी पहन लेती है। और कसाऊ साड़ी केवल एक परिधान ही नहीं है, पहनावा ही नहीं है, बल्कि केरल की बाकायदा संस्कृति है, परंपरा है और हस्तशिल्प की पहचान भी है। इसके निर्माण से हजारों बुनकर परिवारों को आजीविका मिलती है। ये भारतीय हस्तकरघा उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: कसाऊ साड़ी सादगी, शालीनता और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम है। इसकी सुनहरी आभा केवल वस्त्र की शोभा नहीं बढ़ाती, बल्कि केरल की समृद्ध विरासत, बुनकरों की कला और भारतीय परंपरा की चमक को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। इसलिए कसाऊ साड़ी को भारतीय संस्कृति का एक अनमोल धरोहर माना जाता है।
0: अब एक गाना सुनते हैं और फिर और चर्चा करते हैं अन्य विषयों पर भी।

0: ममता जी, एक हमारे साथी कहते हैं कि लेडीज के लिए कपड़े जितने हो उतने कम ही होते हैं। साड़ी तो अलग अलग जगहों से लेना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उस साड़ी को जब हम पहनते हैं तो उस जगह की, उस शहर की यादें ताजा हो जाती है।
1: क्या बात है। और कुछ लोगों को साड़ियों का इतना ज्यादा शौक होता है कि पहले साड़ी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस साड़ी की विशेषता के बारे में जानकारी हासिल करती हैं महिलाएं, फिर वो साड़ी खरीदती हैं। और फिर आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर
0: पहन के पोस्ट करना
1: फोटो डालना और उसके बारे में लिखना, ये भी आजकल चलन में है।
0: जी,
1: तो जिनको रुचि है, ये अच्छी बात है। अगर आप कोई विशेष साड़ी पहन रही हैं और उसके बारे में जानकारी है तो आप सोशल मीडिया पे बातें अपनी लिखती हैं और लोग लाभान्वित होते हैं, तो अच्छी बात है।
0: अब जैसे सखी ज्ञान में भी बढ़ोतरी होती है।
1: जैसे सखी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से हम बहुत सारी बातें अपनी सखियों तक पहुंचा रहे हैं कि जब कोई नई साड़ी खरीदती हैं और उसके बारे में आपको लगता है कि बताना चाहिए, तो आप लिख सकती हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर और हम आपकी बात आप तक पहुंचाएंगे। मतलब उससे नए श्रोता भी जानेंगे कि अन्य साड़ियों की अन्य क्या क्या विशेषताएं होती हैं, है ना
0: जी।
1: तो अब क्या करें, हम
0: ब्रेक लेते हैं।
1: ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर और भी हम बातें करते हैं।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें,
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह कार्यक्रम सखी सहेली। और सोनाली जी, आज का जो आधुनिक युग है इसमें क्रेडिट कार्ड केवल एक प्लास्टिक कार्ड नहीं होता है, बल्कि सुविधाओं, आकर्षक ऑफरों और तात्कालिक इच्छाओं का ऐसा संसार बन चुका है जो देखते ही देखते व्यक्ति को आर्थिक भ्रमजाल में उलझा सकता है, और हम सब कहीं न कहीं कभी न कभी उलझ जरूर जाते हैं,
4: इस माया जाल में उलझ जाते हैं।
0: और बिना जेब में पैसे रखे खर्च करने की शक्ति देता है भाई, लेकिन यही शक्ति संयम से न बरता जाए तो आर्थिक स्वतंत्रता को बंधन में ये बदल सकती है।
4: और क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आज हमें आज खरीदो बाद में भुगतान करो का अवसर देता है। शुरुआत में यह सुविधा बहुत आकर्षक लगती है ना ममता जी, महंगे मोबाइल है भाई, फिर कपड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, छुट्टियां हैं या रेस्टोरेंट का खर्च है, सब कुछ एक छोटी सी स्वाइप में संभव हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं रहता कि वो अपनी वर्तमान आय नहीं बल्कि भविष्य की कमाई खर्च कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और कैश रखने की जहमत भी नहीं उठाना है, और क्योंकि कैश रखो, गिनो, खर्च करो, कई बार गिरने का भी खतरा रहता है, तो ये फायदेमंद भी है लेकिन कई बार नुकसानदेह भी होता है। बाजार इस मनोविज्ञान को भली भांति समझ जाता है, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स, 0 डाउन पेमेंट और विशेष छूट जैसे आकर्षक प्रस्ताव उपभोक्ताओं को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए प्रेरित करते हैं।
4: यानी हमें जो लालच मिल जाता है तो हम भी लालची बन जाते हैं, और कई बार लोग केवल ऑफर का लाभ लेने के लिए ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं ममता जी जिनकी वास्तव में आवश्यकता ही नहीं होती है। क्रेडिट कार्ड का सबसे खतरनाक पहलू तब सामने आता है जब व्यक्ति केवल न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट करता है, उसे लगता है कि उसने बिल भर दिया, लेकिन जब शेष राशि पर ऊंचा ब्याज जुड़ता है तब समझ में आता है।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो हम सब इस माया जाल में कभी न कभी तो फंसे। साड़ियों की बात कर रहे थे तो आप भी साड़ी खरीदने गई होंगी निश्चित रूप से कि चलो आज ये साड़ी खरीद ही लेते हैं,
4: तो मन बहुत है भले हमारे अकाउंट में नहीं है पर क्रेडिट कार्ड तो है हमारे पास में,
0: तो ये हम सब कभी न कभी करते ही है, इससे बचना
4: के साथ ब्याज इतना बढ़ जाता है ममता जी कि मूल खर्च से कहीं अधिक राशि हमें चुकानी पड़ सकती है और धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और आर्थिक तनाव भी आ जाता है।
0: जाहिर सी बात है अगर ब्याज होगा, बढ़ेगा, कर्ज बढ़ेगा तो तनाव तो होगा ही। ये मायाजाल केवल पैसों तक सीमित नहीं रहता है बल्कि लगातार बढ़ते बिल, भुगतान की चिंता और कर्ज का दबाव मानसिक शांति भी छीन लेता है। कई परिवारों में तो आर्थिक असंतुलन के कारण तनाव, विवाद, लड़ाई झगड़े, भविष्य की योजनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत घटने लगती है और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटना कठिन होने लगता है।
4: हालांकि क्रेडिट कार्ड स्वयं में बुरा नहीं है, ये एक उपयोगी वित्तीय साधन है, इसका उपयोग समझदारी से किया जाए, समय पर पूरा बिल चुकाना, अपने आय के अनुसार ही खर्च करना, अनावश्यक खरीदारी से बचना, एक साथ अनेक क्रेडिट कार्ड ना रखना और ऑफरों के मोह में ना फंसना, ये आदतें व्यक्ति को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखती है।
0: बिल्कुल सही सोनाली जी, आपको याद होगा बचपन में अपने माता पिता को, दादी को, नानी को, बजट का हिसाब करते हुए देखा था, कागज पर पन्ने पर लिखा जाता था खर्च कितना हुआ और कितने पैसे आए, कितनी है और कितने खर्च करने हैं, महीने के बाकायदा सामान की लिस्ट बनती थी। अब वो सब है ही नहीं, वो जमाना ही नहीं रहा। अब तो आप सीधे मॉल में चले जाइए, शॉप पर चले जाइए और चीजें खरीदते रहिए और हाँ कितना हुआ बिल, वो पेमेंट आप सीधे कर देते हैं। तो ये एक नुकसान हो गया है क्रेडिट कार्ड का, फायदे भी है।
4: बिल्कुल सही बात कही कि पुराने जमाने में यानी 2-3 महीने बाद में कोई बड़ा त्यौहार आने वाला है, जैसे दिवाली आने वाली, तो उसकी तैयारियां 2-3 महीने पहले से की जाती थी कि हमें ज्यादा बचत करना है, तो फिर त्योहारों के वक्त हमारा खर्च ज्यादा होगा। आजकल हम इन बारे में कुछ सोचते ही नहीं।
0: और बुजुर्ग कहा करते थे चादर जितनी हो उतनी ही पांव पसारें, और अब चादर की ओर कोई ध्यान नहीं देता तो कई बार जो कर्ज तले भी फंस जाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड सुविधा देता है, आय नहीं बढ़ाता है, वास्तविक समृद्धि अधिक खर्च करने में नहीं बल्कि संतुलित खर्च, नियमित बचत और विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में है।
4: और जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का आकर्षण भी यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो आर्थिक जीवन को उलझा सकता है, और क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग जीवन को सरल बना सकता है, लेकिन लापरवाही इसे आर्थिक संकट का कारण बना सकती है। इसलिए खरीदारी से पहले स्वयं से एक प्रश्न अवश्य पूछे, क्या मेरी ये आवश्यकता है या केवल एक क्षणिक इच्छा है। यदि इस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से दिया जाए तो क्रेडिट कार्ड कभी मायाजाल नहीं बनेगा बल्कि एक उपयोगी वित्तीय साथी सिद्ध होगा।
0: बिल्कुल सही कह रही, क्रेडिट कार्ड की चमक क्षणिक होती है लेकिन कर्ज का बोझ वर्षों तक चलता है, तो इसलिए इसका ध्यान रखें। और हमें ध्यान रखना है कि सुनवा दे एक गाना इस वक्त।

0: सोनाली जी कहाँ खोई हुई हैं, मोबाइल के स्क्रीन पर बस टिप्पणियां ही देखती रहेंगी या कुछ कहेंगी भी?
1: हाँ, कहेंगे ममता जी, श्रोताओं ने इतने सुंदर सुंदर हमें कमेंट्स लिखकर भेजे हैं, तो चलिए उन्हीं के कमेंट्स पढ़ रहे हैं।
0: वो तो हम समझ गए कि आप ढूंढ रही हैं लगातार, लेकिन पढ़ के भी सुना दीजिए कुछ कमेंट, हम भी तो सुन लें क्या आपने अभी क्या पढ़ा।
1: जी, हमारे एक साथी ने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत अच्छी बात लिखी है। ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मायाजाल मैं बताना चाहूंगा। जब क्रेडिट कार्ड का चलन जब शुरू हुआ था, उस समय प्राइवेट बैंक के कर्मचारियों ने चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मैंने क्रेडिट कार्ड बनवाया था, लेकिन बिल में ऐसे चार्जेस लगाना शुरू हो गए थे जिनके विषय में मुझे बताया ही नहीं गया, और बहुत जल्दी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड सरेंडर कर दिया। उस समय से आज तक मैंने तौबा कर ली है, और अभी भी मोबाइल पर क्रेडिट कार्ड का कोई ऑफर आता है तो मैं मना कर देता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि जान बची लाख हो पाए।
0: और हमने अपने श्रोताओं से ये भी आह्वान किया था कि शब्द हमारे, विचार आपके
1: जी।
0: तो अभी तक कोई टिप्पणी तो दिख नहीं रही है
1: जी।
0: तो शब्दों का प्रयोग कैसे करें ये लगता है श्रोता समझ नहीं पाए क्या? और हमें तो इंतजार रहता है उनके टिप्पणियों का, और उन्हें इंतजार रहता है कि हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचाएं। तो तब तक एक काम करते हैं, हम व्यंजनों की बात करते हैं। और ये जो व्यंजन व्रत में खाए जाने वाले व्यंजनों की हमने चर्चा की थी, तो हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि व्रत के शाही नमकीन कच्ची मूंगफली 100 ग्राम। अब यहाँ पर एक मिनट हम अपने श्रोताओं से

0: फिर कह दें कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टिप्पणी शामिल हो, क्योंकि ये जो सेगमेंट हम श्रोताओं के नाम रखते हैं कि हम एक विषय देते हैं और आपको अपनी टिप्पणी लिखनी होती है, तो आदर शब्द हमने दिया है आज, तो आदर पर वो उनके क्या विचार हैं वो भेजें, तब तक हम ये टिप्पणी पढ़ रहे हैं। व्रत की शाही नमकीन बनाने के लिए कच्ची मूंगफली 100 ग्राम ले लें और मोटा वाला साबूदाना ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम काजू, 10 ग्राम किशमिश, 50 ग्राम चारोली, चारोली यानी चिरौंजी दाने, और बादाम गिरी 100 ग्राम, मखाने 50 ग्राम, खरबूजा और कद्दू के बीज 50-50 ग्राम शुद्ध घी तलने के लिए। अगर आप तलना नहीं चाहती हैं तो सिर्फ मूंगफली को भून ले, सेक ले, सारी चीजों को मिक्स करके ऊपर से 2 चम्मच घी डालकर, काली मिर्च, सेंधा नमक और पुदीने का चूर्ण डालकर एयर फ्रायर में 160 डिग्री पर 10-15 मिनट के लिए लगा दें। आपकी हेल्दी नमकीन तैयार हो जाएगी। और अगर घर में एयर फ्रायर ना हो तो कढ़ाई में घी डालकर तल भी सकती हैं या कम घी में भी भून कर बना सकती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देना है कि एयर फ्रायर में साबूदाना न डालें, साबूदाने को अलग से कढ़ाई में भून कर फिर इस मिश्रण को मिक्स करें।
1: एक हमारे साथी ने मखाने या साबूदाने की खीर की रेसिपी लिखकर भेजी है कि दूध को गाढ़ा करके मखाने, मेवे और चीनी डालकर बनाई जाने वाली एक पारंपरिक मिठाई, फलों का रायता, ताजे दही में अनार, सेब और केला मिलाकर बनाया गया एक ताजा सेहतमंद विकल्प है। साथ ही एक साथी ने लिखा है कुट्टू का आटा, इससे स्वादिष्ट और कुरकुरी कुट्टू की पूड़ी, पकौड़ी या पराठे बनाए जाते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी देते हैं। सिंघाड़े का आटा, इसका उपयोग मुख्य रूप से मीठे सिंघाड़े का शीरा यानी हलवा या नमकीन सिंघाड़े की कड़ी बनाने के लिए किया जाता है। राजगिरा का आटा, इसकी रोटियां और पूरी स्वास्थ्य के लिए बेहद पौष्टिक है। और एक हमारे साथी ने तो व्रत वाले दही वड़े लिखकर भेजे हैं।
0: अरे वाह, तब तो आप जरूर बताइए कैसे बनाते हैं।
1: 1 कप सामा के चावल, 1/4 कप साबूदानों को अच्छे से धोकर 3-4 घंटे के लिए पानी में भिगो दे, फिर पानी छान कर दोनों को मिक्सी में डाले, साथ में हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा सेंधा नमक और 2 चम्मच पानी डालकर चिकना पेस्ट कर ले। अब इस पेस्ट को एक पैन में डाल के मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं जब तक ये गाढ़ा होकर आटे जैसा ना बन जाए। मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें कद्दूकस किया हुआ एक उबला आलू, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से गूंथ ले और हाथों में थोड़ा थोड़ा तेल लगाए और मिश्रण से गोल गोल बड़े बनाए और गर्म तेल या घी में मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल ले और तले हुए गर्म वड़ों को हल्के गुनगुने पानी जिसमें थोड़ा सेंधा नमक मिला लो 5 मिनट के रख दे, फिर हल्के हाथों से निचोड़ कर निकाल ले। अब आवश्यकता अनुसार दही ले, इसमें चीनी और थोड़ा सेंधा नमक डालकर अच्छी तरह फेंट ले। एक प्लेट में वड़े रखे, ऊपर से गाढ़ा फेटा हुआ दही डाले। इसके बाद व्रत वाली खट्टी मीठी चटनी, अमचूर या खजूर की हरी चटनी, भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च और अनारदानों के साथ साथ ठंडा ठंडा परोसे।
0: क्या बात है। और हमारी एक सखी लिख रही है कि व्रत में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं, पर मेरी समझ से व्रत का मतलब शरीर को डिटॉक्स करना है, जिसमें हमें तरल पदार्थ और वो पदार्थ जो आसानी से पच जाने जाए लेने चाहिए, जैसे कि कम घी में भुने मखाने, ऐसे ही भगर यानी कि सामा के चावल की खिचड़ी और खीर, फल मिक्स, कच्चे सलाद, खीरा, गाजर, चुकंदर का रायता, दही, नींबू, पानी, छाछ और खूब सारा पानी, इससे शरीर भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। ये बात भी सही है कि जब हम व्रत करते हैं कि हमें मतलब शरीर को थोड़ा आराम मिले, पेट को आराम मिले, तो ये तरीका भी सही है। व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि रोज की तुलना में खूब सारा तला भुना खा लें और इतना ज्यादा खा लें कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए।
1: जी।
0: और इस समय हम एक गाना सुनवा लेते हैं, तब तक हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोता लिख भेजेंगे, कुछ टिप्पणियां आई हैं शब्दों के लिए
1: जी।
0: लेकिन अभी और बाकी हैं, सुनते हैं गाना।

0: सुनारी, रात के कली एक ख्वाब में आए। हम रात को तो ख्वाब देखते ही हैं, कई बार दिन में भी लोग ख्वाब देखते हैं
1: जी।
0: और ख्वाब देखने के बाद उसकी चर्चा भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन कई बार कुछ बताने का अंदाज बड़ा अलग होता है, अनोखा होता है, जो आपको अलग जुदा करता है लोगों से, मतलब अच्छा लगता है। और कुछ लोगों के बोलने का अंदाज बहुत ही रफ होता है, रूखा होता है, रूखा होता है तो बहुत खराब लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर कि जब भी बोलें तो किसी के साथ सम्मान के साथ बोलें, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, तो कितना अच्छा लगता है ना।
1: फिर कई वो बार बड़े हो, छोटे हो, बुजुर्ग हो या फिर वो हम उम्र हो, है ना।
0: तो आप छोटों से आदर के साथ बोलते हैं?
1: जी, बोलना ही पड़ता है आजकल के छोटे भी।
0: सीखेंगे कैसे?
1: जी जी,
0: अगर हम उन्हें सिखाएंगे कि आप आदर के साथ बोलो और उन्हें आदर नहीं देंगे तो कहां से सीखेंगे, है ना।
1: ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने। वैसे आदर केवल एक शब्द नहीं बल्कि मानवीय रिश्तों की पवित्र बुनियाद है। दिखावा बनाम वास्तविकता, ये झुककर प्रणाम करने से ज्यादा मन में सद्भाव रखने की भावना है। समानता का प्रतीक है आदर, सिर्फ बड़ों के लिए नहीं बल्कि हर छोटे बड़े व्यक्ति के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात हमारे एक साथी ने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक श्रोता ने ये भी लिखा है कि शब्द होठों से निकलते हैं, विचार मन से जन्म लेते हैं, लेकिन आदर दिल से आता है और जिस बात में दिल का आदर जुड़ जाए वो हमेशा याद रह जाती है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि आपके लिए एक छोटी सी बात शब्दों की मिठास कानों तक पहुंचती है, विचारों की गहराई मन तक, लेकिन आदर सीधे दिल में उतर जाता है। इसलिए जीवन में सबसे सुंदर भाषण हमेशा सम्मान वाले होते हैं।
1: एक साथ ही लिखते हैं, आप दूसरों को जो आदर देते हैं वो असल में आपके अपने संस्कार को दर्शाता है, अधिकार नहीं। उपहार आदर कभी भी ताकत या पद के बल पर नहीं मांगा जा सकता, इसे अपने आचरण से कमाया जाता है। आत्म सम्मान से जुड़ाव, जो व्यक्ति खुद का आदर नहीं करता वो दूसरों का सच्चा आदर कभी नहीं कर सकता।
0: कई बार तो सम्मान लोग मांग के लेते हैं, कहते हैं कि देखो अरे आपने हमसे ऐसे बोला, हम तो इतने बड़े ओहदे पर काम करते हैं और ये हम इतने बड़े हैं आपसे उम्र में। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग आदर नहीं मांगते हैं, वो जैसे भिक्षा मांगते हैं। और आदर मांग के नहीं लिया जा सकता है
1: जी,
0: आदर के लायक
1: कमाया जाता है,
0: कमाया जाता है, उसके लायक बनना पड़ता है। आपके भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो, आपके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ हो कि लोग अपने आप विनम्रता से झुक जाए आपके सामने।
1: एक साथी ने लिखा है कि आदर वो सुगंध है जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से फैलती है। जिस घर में आदर का दीपक जलता है वहां प्रेम की रोशनी भी कम नहीं होती है।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो खामोश भाषा है जिसे हर दिल बिना किसी अनुवाद के समझ लेता है। इसमें ऊंची आवाज की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। जहाँ आदर हो वहाँ रिश्ते अपने आप खूबसूरत हो जाते हैं।
1: एक साथी ने और भी लिखा, आप पढ़ रही हैं? और
0: नहीं, आप पढ़िए, आपके हाथ में मोबाइल है और स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं
1: जी। एक साथ ही लिखते, आदर ऐसी चीज है जिसे पाने की इच्छा हर इंसान के मन में होती है। बड़े हो या छोटे, हर किसी को अच्छा लगता है जब उसकी बात सुनी जाए और उसे महत्व दिया जाए। मेरा मानना है सम्मान देने से कोई छोटा नहीं होता और रिश्ते बल्कि रिश्ते बड़े हो जाते हैं। जब जहाँ आदर होता है वहाँ प्यार, अपनापन और विश्वास अपने आप आ जाते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे आपने हमें आदर दिया भी कि आप पढ़ेंगे तो मैंने कहा नहीं आप पढ़िए तो ये एक शब्दों में आदर कहीं छिपा होता है
1: जी,
0: हमें बताने की जताने की जरूरत नहीं होती। ये तो हम श्रोताओं को बता रहे हैं, वरना हम आपस में कहाँ कभी बताते हैं कि हम आपको आदर दे रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आदर वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। क्या बात है भाई, जिस व्यक्ति के व्यवहार में सम्मान होता है उसके रिश्तों में विश्वास और अपनापन बना रहता है। बड़े हो या छोटे, हर इंसान सम्मान का अधिकारी होता है। मीठे शब्द, विनम्र व्यवहार ही सच्चे संस्कार की पहचान है। हमने तो कई घरों में देखा है कि वो छोटे बच्चों से, 3-4 साल के बच्चों को भी आप कहकर बात करते हैं
1: जी।
0: तो कई बार ये भी लगता है इतने छोटे बच्चे को आप क्या कहना, लेकिन वहीं से सीखते हैं बच्चे जी।
1: और फिर बच्चे हम जैसा जैसा सुनते हैं वैसा ही वे पेश आते हैं।
0: अब आदर की बातें हो गई हैं, अब घड़ी की ओर जरा देखिए।
1: तो गाना सुनते हैं
0: ये गाना, प्रोग्राम का आखिरी गीत।

0: भाई दिल तो हमारा भी अभी नहीं भरा है, लग रहा है कि अभी और थोड़ा बोल लें बतिया लें, लेकिन बिल्कुल
1: रुकना पड़ेगा।
0: तो अब सभी श्रोताओं से लेते हैं इजाजत, आप सभी को ममता सिंह
1: और सोनाली पाठक का नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: सखी सहेली
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
2: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, प्रस्तुत है प्रादेशिक मुख्य समाचार।
3: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग की कि राज्य कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से आज लगातार दूसरे दिन सीआईडी कार्यालय में पूछताछ की जा रही है। इससे पहले कल उनसे 8 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई थी। सुरक्षा बलों ने झारखंड, बिहार और ओडिशा में आतंक का पर्याय बने 1 करोड़ रुपए के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बेसरा को गिरफ्तार कर लिया है। आईबी, सीआरपीएफ और धनबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में बरवा अड्डा थाना क्षेत्र से बेसरा को उसके 2 सहयोगियों के साथ दबोचा गया। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार और वाहन जब्त किए गए हैं। देवघर में आस्था के महापर्व राजकीय श्रावणी मेला का आज झारखंड बिहार सीमा के दुमा प्रवेश द्वार पर पारंपरिक शुभारंभ हो गया है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार और ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। एम्स देवघर के डॉक्टरों ने पहली बार बिना बड़े ऑपरेशन के एक 14 वर्षीय बच्चे के दिल का सफल इलाज किया है। अस्पताल की कार्डियोलॉजी टीम ने स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशन तकनीक का उपयोग करके जटिल पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को पूरी तरह ठीक कर दिया है। गुमला में संवेदक संघ ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय परिसर में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। संवेदकों ने ऑनलाइन रॉयल्टी चालान की अनिवार्यता से हो रही परेशानी को दूर करने और विगत 4 वर्षों से लंबित भुगतान को जल्द जारी करने की मांग की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, और इन दोनों गायकों ने न केवल मुकेश के बहुत सारे गाने गाए बल्कि ये भी बताया कि मुकेश की गायकी की क्या खासियत थी और मुकेश उनकी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं।

0: संगीत से जुड़े रहने के लिए और उस दौर के दिलचस्प बातें और किस्से सुनने के लिए बहुत अच्छा जरिया रहा है हमारी जिंदगी में। इसने बहुत अहम किरदार निभाया हमारे जिंदगी
1: क्या बात है गोविंद, आप तो इलाहाबाद से आते हैं और बहुत पॉपुलर है वहां पर भी
2: बहुत बहुत। और मैं तो मतलब इलाहाबाद जहाँ पे गांव में पला बड़ा हूँ वहाँ पे तो अक्सर लाइट्स की बहुत प्रॉब्लम होती थी रात में।
1: हाँ
2: तो हमारे घर के बाहर के हिस्से में सब चारपाई लेके बैठ जाते थे, मेरे बाबूजी, चाचा जी, मेरी दादी, मेरी अम्मा, मेरे बुआ, वो सब बैठ जाते थे और रेडियो बीच पे रख देते थे। तो वो दौर छोटा था लेकिन सुनता रहता था उनके साथ कि वो क्या सुन रहे हैं, मैं भी उनके साथ पंखे हाँकते रहता था और सुनता रहता था
1: बाबा।
2: वो दौर लेकिन मैं आज भी याद करता हूँ, मतलब
1: हाँ
2: अब वापस नहीं आया।
0: हाँ सच सच बात, सच बात।
2: बहुत मजा आता
1: तब
2: था उस टाइम
1: जिंदगी में
2: पे,
1: एक सादगी थी
2: सच
1: और
2: में,
1: सब लोगों का साथ था।
2: सच में सच
0: हाँ
2: में
0: और बहुत खुशी थी।
1: हाँ
2: बहुत खुशी थी।
0: अभी बाकी की सारी चीजें बहुत सारी जिंदगी में आशाएं बहुत सारी हैं,
1: हाँ
0: लेकिन वो खुशी जो दिल की थी वो कहीं ना कहीं लेकेंगे।
1: अब कौन सा गाना सुनाने वाले हैं आप लोग?
0: अभी हमारी चॉइस की बात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: गाने तो मुकेश जी के गाए तो सारे ही हमको पसंद हैं। ये ऐसी ऐसी बात होती है कि मतलब इतने सारे गानों के बीच में कभी कोई बोल देगा अच्छा कोई अपनी पसंद का गाना सुना,
1: ये बड़ा मुश्किल हो जाता है।
0: कौन सा मेरे को कौन सा पसंद है।
1: बिल्कुल सही है। देखिए ऐसा करते हैं म्यूजिक डायरेक्टर चुनते हैं रोशन।
0: तुम अगर मुझको ना चाहो तो कोई बात नहीं। और
1: एक बहुत प्यारा गाना मुझे याद आ रहा है शैलेंद्र का, बहुत दिया देने वाले ने तो।
0: हाँ क्या बात है, आप क्या फ्लूट उसमें बजाइए,
1: क्या बात है।

0: ये एस एन त्रिपाठी का संगीत है और वो भी एक ऐसे संगीतकार और फिल्मकार भी थे, फिल्में भी बनाते थे, जिन्होंने बहुत क्लासिकल टच के गाने बनाए।
1: आपने अच्छा हुआ फिल्म का नाम लिया, म्यूजिक डायरेक्टर बोलते तो मैं नहीं गा पाता।
0: मेरी वो तो हमारी जिम्मेदारी है। मुख्तार भाई, मुकेश को हमेशा ये कहा जाता है कि वो सादगी भरे गाने, सीधे चलन के गाने गाते थे, लेकिन उनके बहुत सारे गाने हैं जिनमें प्रॉपर शास्त्रीयता है, क्लासिकल टच है। तो इसकी बात करते हैं और कुछ गानों की मिसाल के साथ करते हैं।
2: थोड़ा सा लाइट वो उन्होंने गाया, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए,
1: इन कदमों पे
2: किसका जिया ना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए।
0: एक फूल चार कांटे फिल्म का ये गाना है,
2: हाँ
0: है ना।
2: हाँ,
0: आपको याद था?
1: नहीं।
0: क्या प्यारा गाना याद दिया है, वाह वाह। और कौन से क्लासिकल गाने याद आ रहे हैं?
1: चंदन सावधान ने
0: आप गाओ।
1: चंद

0: उनके गानों की, उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं, और अभी उनके क्लासिकल टच वाले गानों की बातों से बात करते हुए हम यहां तक आ गए। मुझे पंडित रविशंकर के म्यूजिक डायरेक्शन वाली एक फिल्म याद आ गई, गोदान।
1: गोदान, राजकुमार।
0: हाँ, और इस गाने की कितनी कम चर्चा होती है।
1: वाह, सही बात, सही
0: जो भोजपुरी शैली का गाना है।

0: देखिए क्लासिकल मुकेश जो है ना, ये एक पूरा अध्याय है जहां पर एक से बढ़ के एक गाने आते हैं, और बल्कि मजाहिया गानों का भी एक पूरा मामला है ना। जैसे मुझे कहते हैं कल्लू कबाल जैसा गाना भी उन्होंने गाया है। मैं हूँ ठुमरी तू है ख्याल, मतलब कमाल है ना। ये देखिए राजेंद्र कृष्ण क्या लिखते हैं इस गाने का मुखड़ा।
1: मुझे कहते

0: क्या बात है।
1: मुकेश को याद करते हुए ये जो शुरुआत में हमने कहा था ना कि उनको केवल सैड सॉन्ग्स के बादशाह नहीं कहा जा सकता, एक तरफ उनके गानों में रूमानियत है, दर्शन है, दूसरी तरफ जो है बहुत खिलंदड़ किस्म के, बहुत शरारती किस्म के गाने भी उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में, उनकी डिस्कोग्राफी में बाकायदा आते हैं। लेकिन शोज में अमूमन बहुत पॉपुलर गाने ही चलते हैं, तो मुझे तौबा ये मतवाली चाल जैसा गाना याद आता है। मजरू साहब का ये गाना,
2: तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, तौबा ये मतवाली चाल झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आकर मांगे।

0: गोविंद ये बताइए कि वो क्या बात है कि आज के जमाने के गाने इतना नहीं ठहर पाते हैं जितने अभी हम जितनी देर से बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है हमने दर्जनों गानों की बात की और न जाने कितने गाने आपसे तो मैंने गवा लिए हैं। वो क्या बात है कि आज के गानों की शेल्फ लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है?
1: एक बात जो मैं जैसा मुख्तार भाई ने कुछ समय पहले बोला था और मैं 2020 की बात करूं, 2020 में मैंने प्यारे लाल जी के साथ गुजरात टूर किया और रेफरेंस देने वाले भी यही हैं।
0: अच्छा,
1: थ्रू ही मैं गया था उनके साथ, आर्ट शो किया। जैसा इन्होंने बोला कि वो रिहर्सल में सीखने को मिलता है, वैसा वो एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हुआ कि आठ के आठ शो में हम उनके साथ रहे, लेकिन शो से दो घंटे पहले वो मीटिंग करते थे, डिस्कस करते थे गाने को कैसे क्या करना है, कैसे करना है, किसके बाद क्या, किसके बाद वो पूरा होता था। तो उस चीज को जब मैंने फील किया तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे भी ऐसे होते होंगे कि लिरिसिस्ट बैठते होंगे, कंपोजर बैठते होंगे, सब बैठते होंगे, फिर वो गाना बनता होगा। आज के दौर पर ऐसा नहीं है। आज के दौर पर मैंने भी भजन बहुत सारे रिकॉर्ड किए, तो कंपोजर आता है, वो ट्यून देकर चला गया, लिरिक्स देकर चला गया, मैं खाली गा लिया, रिकॉर्डिंग बोला मैं मिक्सिंग कर लूंगा। तो आज जैसा चल रहा है उस हिसाब से वो सोल जो होता है ना वो कनेक्ट नहीं हो रहा है। शायद यही रीजन है कि गाने आज जो है वो आ रहे और जा रहे, लोगों के मन में नहीं बैठ रहे।
0: आपका क्या कहना है मुख्तार भाई?
2: बिल्कुल, गोविंद भाई ने जो बात कही वो बिल्कुल सही बात है। और ये पुराने गानों पे एक तो लिरिसिस्ट ने इतने खूबसूरत अल्फाज लिखे
0: जी।
2: और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उतनी खूबसूरत ट्यून बनाई, गाने वालों ने, गुलूकारों ने इतनी सहजता के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ उनको अदायगी की और स्टोरी के साथ, फिल्म की स्टोरी के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते थे। और वो फिल्मों का जो दौर था वो एक आम इंसान की ज़िंदगी से कहीं ना कहीं रिलेट करता था, तो इसीलिए वो सारे गाने इतने मीनिंगफुल थे कि आज भी अगर खुशी के गाने सुनो तो आपको खुशी महसूस होती है, गम के गाने सुनो तो गम महसूस होता है
0: जी।
2: और आजकल के सच बात है कि फिल्मों में अमूमन ज्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जिसको शायद वो इस तरीके से काम नहीं किया जाता। गोविंद भाई ने बताया कि अगर सिंगर आ रहे हैं तो उनको एक लाइन बताई और उसने एक लाइन गाया और उसके बाद दूसरी लाइन उसको बताया, पूरा गाना भी शायद उनको नहीं पता हो क्या होना, एक एक लाइन पंच कर करके। और डिजिटल टाइम में ये सब शायद हो सकता है उनके वक्त की रिक्वायरमेंट ऐसी हो
0: जी। और इसीलिए आज के संगीत में उस तरह से
2: ठहराव
0: ज्यादातर गानों में आत्मा नहीं है।
2: नहीं,
0: अब मैं आप लोगों को एक मुश्किल चैलेंज देने जा रहा हूँ और वो चैलेंज ये है कि कोई एक फीमेल गाना चुनिए जिसको आपको मुकेश की आवाज में गाना है।
2: अच्छा,
0: लेकिन उसका मुकेश वर्जन नहीं होना चाहिए।
2: मुझे स्ट्रेट यही याद आ गया कि चलो मुझको इस रात की तनाई में यहाँ लौट गया था। मजेदार बात तो है ये कि अगर मुकेश जी गाते तो कैसे गाते हैं ना।
0: हाँ, ये सुनने वालों को भी एक अंदाजा लगेगा।
2: देखिए, एक मुझे लता मंगेशकर जी का गाना बहुत पसंद है, लग जा गले के फिर यहाँ सीधा,
0: तो ये यही सुनते हैं। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं, जैसे मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना तो गोविंद ऐसे बैठ जाते हैं, मेरी बारी आने वाली है।
1: मैं सीरियस जाता हूँ, एक्चुअली मुख्तार भाई जो सोच रहे थे ना वही मैं भी सोच रहा था।
0: तब तक ये सोच,
1: उनको ये गाना है
0: ये लेकिन मजेदार होगा, लग जा गले मुकेश की आवाज में।
2: लग जा

0: शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से हे।
1: क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है इसको मुकेश जी की आवाज में सुनना।

0: बात है, क्या बात है। देखो क्या मजेदार है कि मुख्तार भाई ने मदन मोहन का गाना चुना और इन्होंने शंकर जयकिशन का दिल अपना और प्रीत पर आई फिल्म का गाना।
1: देखिए लोगों को लगना चाहिए हम वर्सटाइल हैं।
0: क्या बात है, वाह वाह वाह, ये बहुत मजेदार।

0: बात थी। आपके परिवार की नई पीढ़ी नए गानों को सुनती है या पुराने गानों को सुनती है?
1: मेरी बेटी जो है वो पुराने गाने सुनती है, बेटा जो है वो नए गाने।
2: मैं देखिए मेरी रोजी रोटी मुकेश से चलती है।
0: हाँ।
2: लेकिन मेरे घर में मेरी वाइफ मुकेश जी को छोड़कर सबको सुनती है।
0: तो आपको जबरदस्ती
2: और एकदम रेयर नंबर सुनती है, मतलब वो जो हम रेगुलर गाते हैं ना।
0: हाँ, हाँ,
2: वो नहीं सुनती वो, इसलिए शोज में भी नहीं आती, बोलती तुम भाई तो गाओगे कुछ नया तो गाओगे नहीं। इसलिए वो आती भी नहीं है और एकदम रेयर सुनेगी वो।
0: अच्छा।
2: अनरिकॉर्डेड किशोर जी का, आशा जी का, लता जी का एकदम वो सुनेगी, क्योंकि बंगाली है तो वो अलग सुनेगी और मुझे भी सुनाती है।
0: अच्छा।
2: सुनो सुनो सुनो
0: बिठा के
2: सुनना पड़ता है, घर में खाना मिलेगा तो सुनना ही पड़ता है।
0: ये मजेदार है। अच्छा, कभी ऐसा लगता है कि जिस गाने की चलित ट्यून जो बनी हुई ट्यून है उससे इतर किसी और ट्यून पर उसको गाया जाना चाहिए, मुकेश जी का गाना हो कोई?
1: ये सोचने के लिए तो हम बहुत छोटे हैं, हमको तो वो जो गाने जैसे बने हुए हैं ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल परफेक्ट बने हुए, अगर इसको अगर गा लें तो वही बहुत बड़ी बात है।
0: लेकिन आजकल बहुत रिमिक्सेज हो रहे हैं तमाम तरह के गानों के, और मुखड़े उठा के कई बार ये होता है कि पूरे गाने को वैसा का वैसा रिमिक्स कर दिया, कई बार ये होता है कि सिर्फ मुखड़ा उठा लिया और आगे के अंतरे नए तरीके से लिख लिए और गाने डाल दिए। इधर के सालों में ये प्रयोग बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: एग्जैक्टली,
0: आप लोगों की क्या राय है इस बारे में?
1: मैं समझता हूँ कि जो अभी ये कंटेम्प्रेरी जो सिंगर्स प्रोग्राम या वो करने लगे हैं या थोड़ा बहुत अगर फिल्मों में कर रहे हैं, तो वो रिमिक्स का जो बीच में थोड़ा सा एक दौर आया जिसमें कुछ एक एडिशनल रिदम वो लोगों ने ऐड करके थोड़ा उसको डांसिंग मोड बनाने की कोशिश की है कोई भी गानों के अंदर। मैं जैसे नेदरलैंड भी जाता हूँ तो शो के बाद वो लोग एक सक्सेस पार्टी करते हैं, शो खत्म हो गया पूरा ही पुराने गानों का जैसा था वैसा, फिर वहाँ के वो गोरे म्यूजिशियन हमारे साथ ये पुराने गाने गा रहे हैं। अब अगर वो तेरे प्यार का गम, तो अब उसमें वो लोगों को डांस करना है, तो वो उसके अंदर वो थोड़ा सा बेस गिटार वो ऐड करके तो उसको वो रिदम दे दिया जाता है कि उन लोगों को वैसे उसमें मजा आ रहा हो डांस कर रहे
0: हैं। क्या मजेदार बात है। मतलब ये सोचना ही मजेदार है कि वो तेरे प्यार का गम जो है वो जैज हो जाए, रॉक हो जाए, उसमें वायलिंस आ जाए, उसमें बेस गिटार आ जाए, ये तो अलग ही बात हो गई पूरी तरह से।
1: तो शायद नए लोगों ने इस वजह से, यंगस्टर्स की वजह से शायद ये किया हो कि भाई थोड़ा लोगों को लिरिक्स से उनको मतलब नहीं, जो शायद ये नई पीढ़ी है ज्यादातर लोगों को, और डांसिंग बीट अगर चल रहा है तो वो दे एंजॉय है।
0: गोविंद, आपका क्या कहना है रिमिक्सेस के बारे में, गानों को नई शक्ल देने के बारे में?
2: मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने में जो गाने बने हैं वो कुछ सोच के ही बने होंगे। आप आपके पास उनसे कुछ बेहतर है तो आप लेकर आइए, उनसे कुछ बेहतर नहीं है तो आप मत कीजिए, छेड़खानी मत कीजिए। और आप अभी का जनरेशन की बात करूँ तो मतलब मेरा ऐसा मानना है या मैंने देखा भी है बहुत जगहों पर कि आजकल छोटे बच्चे भी जो हैं, जो 10 12 15 साल के, जो जनरेशन आजकल तो चल रही है, वो पुराने गानों की ही ट्यून सीख रहे हैं।
0: बिल्कुल।
2: और वो गा भी रहे हैं, मैंने कई जगह पर बहुत से लोग मेरे साथ गाते भी हैं पुराने गानों को, जैसे भाई अजीब दास्ता मैंने गाया, इन्होंने लग जा गले गाया, वो सब गाते हैं, किसी की मुस्कुराहटों पे गाते हैं, जीना यहाँ गाते हैं, जाने कहाँ गए, ये सब गाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के।
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: भाई,
0: आज इतने बरस बाद भी, और हम तो विविध भारती में बैठे हैं जिसने संगीत को, पुराने संगीत को बाकायदा बचा कर रखा है और दिन रात हम वही गाने तो प्ले करते हैं।
1: बिल्कुल। और शायद यही वजह क्या, अभी जितने ये बड़े सिंगर्स जो स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं तो मैंने इनको लाइव शोज में भी देखा है कि वो अपने गाने या डांसिंग और उसके बाद भी एक एक अपना एक पार्ट तो ऐसा रखते हैं जिसमें वो पुराने गाने गाते हैं और वो लोगों को वो भी बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुकेश के गाने गाते हुए लाइव शोज में आपने देखा कि लोग जज्बाती हो रहे हैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं, है ना?
1: यस,
0: ये जो है कहीं ना कहीं वो गाने कनेक्ट करते हैं।
1: Exactly.
0: किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है तो जाने कौन सा दर्द उभर के आ जाता है।
1: एग्जैक्टली Exactly. सही बात है।
0: अब आप दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि एक एक दर्द भरा गाना आप लोग गाइए।
1: मैंने अक्सर ये देखा है कि जैसे जाने कहां गए वो दिन ये गाना हुआ, या दोस्त दोस्त ना रहा, या एक दिन बिक जाएगा, ये गानों में कभी शो ख़त्म होने के बाद कोई ऐसा ऑडियंस में से कोई आता है और वो बोलता है कि आप वो गा रहे थे तो मेरे आंख में आंसू आ गए। क्योंकि ये गानों का फील इतना ज़बरदस्त है,
0: बिल्कुल
1: इसको बनाया गया है, ऐसे ट्यून इतनी खूबसूरत है, तो शायद कहीं ना कहीं अगर इंसान की अपनी ज़िंदगी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ या रिलेट कर रहा है वो
0: जी
1: तो जज्बात उसके उभर आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो जाने कहाँ गए वो दिन, जाने का।

0: क्या बात है, बिल्कुल मन में वायलिन बजने लगा इस गाने को सुनकर। गोविंद, आप कौन सा दर्द भरा गाना गाएंगे?
1: मुझे तो एक गाना बहुत पसंद है और बहुत कम गाने को मौका मिला, जाऊं

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी।

0: करता है।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। तो आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक खूबसूरत विचार से, जिसे भेजा है पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पूना राम देवांगन और कृष्ण देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य है, क्योंकि शांत रहने वाला इंसान हर तूफान पार कर जाता है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए सुनते हैं पिछले दिनों

0: हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
1: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
0: नमस्ते।
1: उमंग कार्यक्रम सुनकर दिल खुशी से झूम जाता है। ये कार्यक्रम नंबर वन कार्यक्रम है। ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी ये कार्यक्रम उमंग कार्यक्रम में सुना और बहुत पसंद आया। ये कार्यक्रम बेहतरीन अंदाज के साथ सुनवाया गया जो कि हमें बहुत अच्छा लगा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। अगला हमें मिला है संदेश छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। इसके साथ साथ
1: मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी।
0: आपने भेजा हमें संदेश ऊपरकोट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से संदेश भेजते रहें और हमारी प्रश्नोत्तरी में भी भाग लेते रहें। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारी लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और प्रेरक प्रसंग। मित्रों, हम सब महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से परिचित हैं।
0: जी श्रोताओं, वे मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और प्रारंभिक चलचित्र कैमरे के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं।
1: जी,
0: लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने 1000 से भी अधिक पेटेंट लिए जो अपने समय में एक असाधारण उपलब्धि थी।
1: जब एडिसन बिजली के बल्ब का आविष्कार कर रहे थे तब उन्होंने उपयुक्त फिलामेंट खोजने के लिए हजारों प्रयोग किए। अधिकांश प्रयोग असफल रहे। कहते हैं कि वे लगभग 10,000 बार असफल हुए।
0: एक बार की बात है श्रोताओं, बिजली के बल्ब के आविष्कार के बाद एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि आप हजारों बार असफल हो चुके हैं, क्या आपको कभी निराशा नहीं हुई?
1: एडिसन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
0: मैं असफल नहीं हुआ हूँ, बल्कि मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीकों को ढूंढने में सफलता पाई है जो काम नहीं करते।
1: इस कथन का मूल अंग्रेजी वाक्य है, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क।
0: श्रोताओं, असफलताओं को देखने का यह दृष्टिकोण सचमुच कितना सकारात्मक और श्लाघनीय है। इस सकारात्मक सोच ने उन्हें लगातार प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी
1: और अंततः उन्होंने ऐसा फिलामेंट खोज लिया जिससे व्यवहारिक विद्युत बल्ब का निर्माण संभव हो सका।
0: तो श्रोताओं, इस प्रसंग से क्या प्रेरणा मिलती है? यही ना कि सफलता अंत नहीं बल्कि सीखने के अवसर का प्रारंभ है।
1: हर असफल प्रयास हमें सफलता के एक कदम और निकट ले जाता है यदि हम में निरंतरता बनी रहे और
0: धैर्य, निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच से बड़ी सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। तो श्रोता मित्रों, जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का प्रेरक प्रसंग कैसा लगा। हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था श्लाघनीय। आइए अब इसका अर्थ जान लेते हैं।
0: श्रोताओं, श्लाघनीय का अर्थ होता है प्रशंसा के योग्य या प्रशंसनीय। ये श्लाघा शब्द से आया है। श्लाघा का अर्थ है प्रशंसा।
1: और अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
1: जी, प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं। थॉमस एडिसन अपने प्रयोगों में लगभग कितनी बार असफल हुए थे और श्लाघनीय शब्द का क्या अर्थ है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800-4405559 पर। आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के अनेक विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मातृभूमि।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की इस कविता के रचयिता सोहन लाल द्विवेदी हैं। कार्यक्रम में कविता को संगीत के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो मातृभूमि के प्रति कवि के गहरे प्रेम को प्रकट करता है। कविता में भारत भूमि के सौंदर्य और विविधता का वर्णन किया गया है।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी।
1: इस कार्यक्रम में टेलीविजन के आविष्कार की कहानी को एक रोचक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है तथा ये भी बताया गया है कि आविष्कार की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों को किन किन तकनीकी समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना पड़ा।
2: डायना डायना, आज

0: फुटबॉल मैच देखने पर मजा ही आ गया। वाह क्या शानदार मैच था, मैनचेस्टर की टीम ने तो कमाल ही कर दिखाया।
1: जॉन मुझे भी बहुत इच्छा थी मैच देखने की, कितने दिनों से तैयारी कर रही थी, मगर इस बुखार को भी इसी समय आना था, काश मैं भी देख पाती।
0: मैंने उस मैच की कुछ तस्वीरें खींची हैं, जब साफ होंगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा।
1: मुझे पता था कि तुम तस्वीरें जरूर लोगे, फोटोग्राफी का शौक जो है तुम्हें।
0: मेरे मन में एक बात आ रही है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि जिस तरह हम रेडियो पर कुछ आवाजें सुन सकते हैं, उसी प्रकार क्या हम दूर के किसी दृश्य को किसी उपकरण के सहारे देख नहीं सकते?
1: वाह क्या बात कही है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है?
0: हाँ मुश्किल तो है लेकिन शायद असंभव नहीं।

दोस्तों, ये बालक था जॉन लोगी बेयर, जिसे टेलीविजन के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। यूं तो टेलीविजन के विकास में अनेक लोगों का योगदान है, लेकिन जॉन लोगी बेयर ने पहली बार चलते फिरते दृश्यों के प्रसारण में सफलता पाई। जॉन का जन्म 14 अगस्त 1888 को स्कॉटलैंड के हेलेन्सबर्ग में हुआ था। उसे फोटोग्राफी का बहुत शौक था। उन दिनों विद्यालय में फोटोग्राफी पर विशेष बल दिया जाता था। एक दिन की बात है, जब जॉन लगभग 11 साल के थे,

0: शांत हो जाओ बच्चों, शांत। बच्चों, इस साल की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफी का पुरस्कार दिया जाता है जॉन लोगी बेयर्ड को।
1: ये मुझे तो पता था।
0: जॉन मंच पर आकर पुरस्कार ग्रहण करें। और एक बात और, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जॉन की फोटोग्राफी इतनी उम्दा है कि उसे इस स्कूल के फोटोग्राफी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष भी बनाया जाता है।

जॉन का बचपन एक माली के लड़के के साथ बीता जो उसके घर के बागीचे में काम किया करता था। वो अक्सर उसके साथ फोटोग्राफी करता। जॉन पढ़ने में बहुत तेज था। विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉन बेयर्ड ने ग्लासगो में रॉयल टेक्निकल कॉलेज में विज्ञान का अध्ययन आरंभ किया। 5 वर्ष की पढ़ाई के बाद वो सहायक इंजीनियर बन गए। एक बार वो अपने मित्र से मिलने त्रिनिदाद गए। यात्रा के दौरान जहाज के रेडियो ऑपरेटर से उनकी दोस्ती हो गई।

फिर तो दोनों ने विद्युत द्वारा हवा में तस्वीरें भेजने की समस्या पर गंभीरता से विचार किया। चौंतीस वर्ष की अवस्था में सन 1922 में वो इंग्लैंड लौट आए।

1923 में वो लिंटन क्रेसेंट चले गए और एक जगह किराए पर ले ली, और यही जगह उनकी प्रयोगशाला बनी। उनके सहायक थे विलियम।

0: विलियम, इतने दिनों से हम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन लगता है कि अभी मंजिल दूर है।
1: हाँ जॉन, जॉन क्यों ना हम अपने प्रयोग को एक बार फिर नए सिरे से करें।
0: हाँ ठीक कहा तुमने। अच्छा सुनो, देखो मैं कुछ चीजें लेकर आया हूँ।
1: क्या?
0: ये है चाय रखने का पुराना डिब्बा, और ये है टोपी रखने वाला गत्ते का डिब्बा।
1: जॉन मैं भी कबाड़ी की दुकान से एक बिजली की मोटर लेकर आया हूँ जैसा तुमने कहा था।
0: अच्छा
1: ये देखो।
0: हेलो, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। हाँ ठीक है, ये तो कट गया। अब हम इस गोल गत्ते में ढेर सारे छोटे छोटे छेद बनाते हैं।
1: छोटे छोटे छेद?
0: हाँ,
1: उनसे क्या होगा?
0: मैं बनाता हूँ। इससे ये होगा विलियम कि इस गोल गत्ते को हम बिजली की मोटर में लगाकर घुमाएंगे।
1: अच्छा।
0: और इसके पीछे रहेगा ये प्रोजेक्शन लैंप।
1: वाह।
0: हाँ, और बीच में तस्वीरों के नेगेटिव रखेंगे। फिर देखते हैं क्या होता है।
1: चलो करके देखते हैं।
0: इसको इसमें छेद तो कर दिए। अब इसमें तस्वीरों के नेगेटिव लगाए।
1: ये प्रोजेक्शन लैंप पे यहाँ रख देता हूँ।
0: ठीक है, अब इसको घुमा के देखते हैं। बात तो बनती नजर आ रही
1: है। देखो सामने दीवार पर देखो। जॉन लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं।
0: और घुमाओ, और घुमाओ। हाँ शाबाश शाबाश, ऐसे ही लगता है मैं कांधे में मिल रही है। हम जरूर सफल होंगे विलियम, जरूर सफल होंगे।
1: हमारी मेहनत रंग लाएगी।

दोस्तों, उन्होंने पाया कि चकत्ती घुमाकर प्रकाशित किए जाने वाले संपूर्ण दृश्य छिद्रों के माध्यम से तीव्र एवं मंद बिंदुओं में खंडित हो जाते थे। उत्साहित होकर उन्होंने सेलेनियम सेल और नियॉन लैंप रेडियो वॉल्व आदि उपकरणों के माध्यम से अपना काम शुरू किया। इस प्रयोग में उन्हें काफी समय लगा। कठोर परिश्रम से उनका पहला टेलीविजन ट्रांसमीटर और रिसीवर बन पाया। आखिरकार वो सन 1924 ईस्वी के वसंत में एक तस्वीर को 3 गज की दूरी तक भेजने में कामयाब हुए। लेकिन समस्या ये थी कि तस्वीर साफ नहीं थी और उसको पहचानना भी मुश्किल था। सन 1925 2 अक्टूबर उन्होंने अपने उपकरण में प्रकाश को विद्युत किरणों में परिवर्तित करने के लिए एक नई चीज लगाई।

0: स्विच दबाने पर वो आश्चर्यचकित रह गए। उनके उपकरण में दृश्य का पूरा चेहरा उभर आया था। उसे देखकर वो कुर्सी से उछल पड़े। इस प्रकार मानव आकृति के प्रसारण में ये सफलता उनकी पहली सफलता थी।
1: साथियों, रॉयल इंस्टीट्यूट लंदन के इस विशेष समारोह में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित है। इन्होंने एक खास उपकरण का आविष्कार किया है जो चलते फिरते दृश्यों का प्रसारण कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रेडियो आवाज को प्रसारित करता है, वो विशेष व्यक्ति है जॉन लोगी मेयर। आज ये अपने उपकरण का प्रदर्शन करेंगे। आइए मिस्टर जॉन लोगी मेयर
2: जी। साथियों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अब दृश्यों का प्रसारण संभव है। इस उपकरण के द्वारा आप दूर के दृश्यों को अपने घर में भी देख सकते हैं।
3: श्रीमान, मुझे तो ये बात असंभव लगती है।
2: संभव है श्रीमान, ये संभव है। आप इस कैमरे के सामने आएंगे?
3: हाँ,
2: आइए।
3: यहाँ?
2: हाँ, आइए आइए, इस तरफ।
3: इधर?
2: हाँ, अब आप इस कैमरे के सामने चलिए। हाँ, इधर? हाँ, थोड़ा सा
3: इधर?
2: हाँ, अब ठीक है। हाँ, साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया सामने स्क्रीन पर देखिए।
4: ओह, ये तो कमाल हो गया। आपको विश्वास नहीं होता। वेरी गुड। कांग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। इट्स
2: अ मिरेकल। वाओ, शुक्रिया।

0: सन 1928 ईस्वी में ही उन्होंने रंगीन टेलीविजन के प्रसारण पर भी कार्य करना शुरू कर दिया था। सन 1936 ईस्वी में बीबीसी ने अपनी टेलीविजन सेवा उनके विकसित उपकरण से शुरू कर दी। 14 जून सन 1946 में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। जब भी हम टेलीविजन देखते हैं, जॉन बेयर अक्सर याद आते हैं। विश्व उनके इस महान योगदान के लिए सदा उनका आभारी रहेगा।
1: तो श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम टेलीविजन की कहानी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपने जरूर पसंद किया हो।

सोशल मीडिया पर चैटिंग करते समय अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। NCERT द्वारा जनहित में जारी।

0: तो अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, इसलिए अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना,
1: अर्शद,
0: सौम्या
1: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की आज की कड़ी को। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2 करोड़ 20 लाख के इनामी माओवादी कमांडर मिसर बिश्रा को धनबाद से गिरफ्तार किया है।

0: डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 15 लाख का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भाजपा द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। चतरा में आज उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान IG ने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवादी विरोधी अभियानों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। कल से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की महापौर रोशनी खलखो ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 102.1 MHz पर हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी।

कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म चांदनी के इस खूबसूरत से गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोंसले और विनोद राठौर ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज़, और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की। फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके।

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आवाजें हैं आशा भोसले और अभिजीत की।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत अभिजीत की आवाज में। फिल्म है

अभिजीत की आवाज में फिल्म हासिल के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम इवनिंग मेलोडी अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम खेती बारी।

कार्यक्रम खेती बाड़ी सुनने वाले सभी किसान भाई बहन के नसीम के दिन से आदाब जोहार नमस्कार। और किसान भाई बहन हम इन हर रोज तरी आज हो हम इन अपन कार्यक्रम में नया नया जानकारी शामिल कर ले हिए, जेकर में आज हम इन बात करबे कि अगस्त महीना में कृषि के का काम होवो है। गीत संगीत और जरूरी संदेश भी हम इन सुनबे। बरसात के दिन में पशु सबके खुर और मुँह में का बीमारी हो वो है, एकर पर भी हम इन बातचीत सुनबे। और आज किसान भाई बहन खातिर जानकारी एक भेंट वार्ता के रूप में लान ले ये। और ये जानकारी है कि धान की खेती जो है कैसे करल जाए। एक युवा किसान हथिन, नाम है उनकर मोहम्मद इराक हुसैन। ये अपन खेती बाड़ी के अनुभव जो है हम इनसे साझा करते थीं कि धान की बढ़िया खेती उन्नत खेती जो है कैसे करल जाए। जल जमाव जल भराव से फसल के कैसे बचावे के चाहिए, एकरो पर भी हम इन चर्चा करबे। तो ये सब मुद्दा जो है आज हम इन अपन कार्यक्रम खेती बाड़ी में शामिल कर ले। तो सबसे पहले हम इन बात करो ये कि बरसात के अगस्त के महीना में जो है का काम करना चाहिए किसान भाई बहन के कि उनखर जो है वो अधिक लाभ होते हैं। तो सबसे पहला ये है कि पहला काम जो हम इनके करे के चाहिए वो धान मक्का बाजरा सोयाबीन आदि फसल की निराई गुड़ाई जो है वो करना ज़रूरी हो जाए। देखा कि जब हम इन फसल बोवो हुई है तो रोप के या वह तरह छोड़ ना देवे के चाहिए, बल्कि ओकर निराई गुड़ाई और ओकर देख रेख जो है वो ज़रूरी हो जाए, ताकि फसल जो है वो घास के बढ़ावार जो है ज़्यादा हुआ है और फसल के बढ़ावार जो है कम हुआ है, तो वो फसल जो है फसल के नुकसान हो जाए घास उस या खरपतवार के बढ़े से। और जितना हम इन खरपतवार साफ करबे, जड़ साफ रहते, हवा लगता है, पानी लगता है, सूरज की रोशनी लगते है, तो देखा कि पौधा जो है वो तेज़ी से जो है बढ़ो है और उकर फसल भी बढ़िया हुआ है। फसल में खरपतवार जो नियंत्रण करना ये ज़रूरी हो जाए। क्या कि देखा कि बरसात के दिन में घास फूस जो है खेत खलिहान में जो है ज़्यादा उगो है, तो ओकर लेल का है कि खरपतवार की निराई कुड़ाई भी जो है वो ज़रूरी हो जाए। ज़रूरत के अनुसार यूरिया और दूसर उर्वरक के टॉप ड्रेसिंग करे के, ये दवा के छिड़काव या जे खाद उद के छिड़काव हुआ है ये ज़रूरी हो जाए। ख़ासकर देखा कि बरसात के दिन में कीड़ा मकोड़ा ज़्यादा लगो है, कीट के प्रकोप ज़्यादा हुआ है, तो ये लेल का है कि हम इन अगर दवा के छिड़काव करिए। और देखा उकर में भी सबसे बड़ा जो बड़ी बात यह है वो ये है कि जैविक खाद का अगर हम इन इस्तेमाल करोइए या जैविक कीटनाशक का इस्तेमाल करोइए तो वो ज़्यादा फसल के लिए बेहतर हो वो है। बारिश के अनुसार पानी निकले खातिर कोई उपाय करना करे के चाहिए, ताकि खेत में जमा पानी से हम इनके फसल नुकसान ना होवे। ये आज किसान भाई बहन की बड़ी चुनौती है और बड़ी समस्या है कि खेत से पानी की निकासी के, अगर खेत में पानी अगर जमो है तो ओकर से फसल जो है पौधा जो है वो सड़ो है, बीज सड़े के ज़्यादा चांस रहो है। तो हम इन जो भी खेती करो ये ओकर में कहे कि पानी निकासी जो है वो ज़रूरी हो जाए। चाहे देखा कि अगर धान भी अगर हम इन खेती करो ये तो धान में भी जो है एक समय में पानी निकालने की ज़रूरत पड़ जाए,

लेकिन नमी जो है वो बने बना रहना जो है ये जरूरी हो, वो है नमी खेत में होवे के चाहिए और समय समय पर दवा के छिड़काव करे के चाहिए ताकि फसल में जो कीट और जो रोग ओकर में लगो है वो ख़त्म हो जाए। जहाँ बुआई बाकी है वहाँ बुआई देर से करे के चाहिए। सब्जी की रोपाई और एकर देख रेख भी जो है अगस्त के महीने में किसान भाई बहन के करना चाहिए। यह महीना में फूलकोबी, पत्ता गोभी, टमाटर, मिर्चाई के नर्सरी तैयार करल जा है और एक रोपाई भी जो है वो करल जा है। तो ये तो हो गए भाई अगस्त के महीना में हम इन का खेती करो ही है या का करे के चाहिए अपन फसल खातिर एकर पर जो है बातचीत। तो ये तो हो गए बरसात अगस्त के बारे में। तो अब आगे बढ़े से पहले कुछ हम इन जरूरी संदेश सुनो ही और गीतनाद के आनंद उठेबे।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: तो किसान भाई भाई बहन, अभी हमें सुनो लिया गीतनाथ और जरूरी संदेश सुन लिया, ओकर बाद अब हम इन बात करो ये कि बरसात के दिन में पशु के का बीमारी होवो है, खासकर खुर वाला जो पशु होते हैं ओकर में का बीमारी हुआ है, खुर और मुंह की जो बीमारी है एकर बारे में। ये अत्यंत समझे कि संक्रामक फैले वाला बीमारी है, और ये बीमारी में गाय भैंस बकरी भेड़ और जो सुअर जैसन खुर वाला जानवर आवो हथिन। तो बरसात के मौसम में नमी और गंदगी के कारण जो है बड़ी जल्दी ये बीमारी फैलो है। तो हमें अपन गाय बैल भैंस के जो हमें गोरू डांगर हमें पाल ले ही है, तो एकर में विशेष ध्यान देवे के चाहिए कि उनकर मुंह में या पैर में जो है कहीं खुरा चपका बीमारी तो ना हो रहा है। अगर ऐसा लक्षण मिले तो तुरंत हम इनके डॉक्टर जे पशु चिकित्सक होते हैं उकर से संपर्क करके एकर जो है इस सब के इलाज जो है वो ज़रूरी हो जाए। एकर लक्षण है कि ये बीमारी में पशु में तेज़ बुखार आवो है, मुंह जीभ और होंठ पर जो है छाला पड़ जाए, अधिक लार चुवो है, और देखा कि खुर के बीच छाला और घाव हो जाए जेकर से पशु लंगड़ा कर चलो लगो हथिन। साथे साथ देखा कि ओकर चले में दिक्कत हुआ है। अगर ऐसा लक्षण है तो तुरंत हम इनके चिकित्सीय परामर्श जो है वो लेवे के चाहिए। साथे साथ देखा कि चारा कम खा हथिन और दूध उत्पादन में जो है कमी हो जाए है, तो ये जो है मुख्य लक्षण है। अगर इस सब पर भी हमें ध्यान देवे तो अपन पशु के बीमारी से बचा सको ये। और एक सबसे बड़ा चीज़ है कि समय पर टीका लगाना ज़रूरी हो जाए है। गुहाल जहाँ में हमें पशु उशु रखो ये हुमा साफ़ सुथरा और हवादार होना चाहिए ताकि कोई बीमारी जो है वो ना फैले। और साथ ही साथ देखा कि जे पशु बीमार है ओकर स्वस्थ स्वस्थ पशु के साथ जो है ना रखना चाहिए, वो कहा कि वो संक्रमण जो है तेज़ी से फैलो है। और जो स्वस्थ पशु हथिन जे बीमार ना हथिन ओकर से जो है बीमारी से बचावल जा सको है। पशु खातिर साफ पानी और पौष्टिक चारा की भी व्यवस्था करना ज़रूरी हो जाए। और अंत में जैसे बीमारी के कोई लक्षण दिखे तुरंत जो है पशु चिकित्सक से संपर्क संपर्क करना चाहिए और ओकर से सलाह लेके दवा ज़रूर कराना चाहिए। तो ये तो होला बरसात के दिन में जो पशु हथिन अमीन उनकर देख रेख जो है कैसे करल जाए है। ये जानकारी के बाद अब हमें चलो ये कि भाई ये किसान हथिन किसान से जो बात कर ले ये कि धान की उन्नत खेती कैसे करल जाए, बड़ी अच्छी जानकारी है। तो चला ये सुनो ही ये धान की उन्नत खेती कैसे करल जाए, जानकारी दे रहल थिन मोहम्मद इराक हुसैन और बात कर रहल थिन नसीम अहमद। तो सुनल जाइए बातचीत। आज हम आरा पंचायत के डुमरबेड़ा बस्ती आए हुए हैं और हमारे सामने एक युवा कृषक मौजूद हैं, नाम है इनका इराक हुसैन। आज हम इनसे बात करेंगे कि धान की खेती जो है ये कैसे करते हैं और इसमें इन्होंने कहाँ तक सफलता पाई है। ये अपने क्षेत्र के लिए एक वरिष्ठ किसान माने जाते हैं तो युवा पढ़े लिखे हैं और काफ़ी दिनों से जो है ये धान की खेती कर रहे हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि ये धान की उन्नत खेती जो है कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं, आप अपना परिचय दें।
1: मेरा नाम हुआ मोहम्मद इराक हुसैन, मैं डुमरबेड़ा का रहने वाला हूँ जो रामगढ़ ज़िला से।
0: आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है?
1: मेरा पढ़ाई तो बीकॉम तक।
0: बीकॉम करने के बाद आप जो है पढ़ाई लिखाई के छोड़ दिए या फिर
1: किसी कारण से छूट गई पढ़ाई?
0: छूट गए। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, खेती बाड़ी में आ गए?
1: अभी हम खेती कर रहे हैं।
0: खेती में आप क्या महसूस करते हैं?
1: खेती में जैसे
0: अच्छा महसूस करते हैं या
1: नहीं? अच्छा महसूस करते हैं।
0: अच्छा, आपका भरण पोषण खेती से होता है?
1: खेती से ही होती है।
0: कितने सालों से खेती कर रहे हैं?
1: वही 6-7 साल से।
0: 6-7 साल से। कितने एरिया में खेती करते हैं?
1: वही 45 डिसमिल के आसपास।
0: अभी आप धान का बीजा लगाए हुए हैं, बीजा लगाए हुए कितना दिन हुआ आपको?
1: 12 से 15 दिन हुआ है।
0: जनरेशन हो गया यानी पौधा निकल गया?
1: हाँ, पौधा निकल गया।
0: कितने दिनों में आप इसको खेत में लगाइएगा?
1: वही 20 से 25 दिन के बीच में।
0: 20 से 25 दिन में आप लगा दीजिए?
1: हाँ, इसको लगा देंगे।
0: खेत की तैयारी कैसे करते हैं?
1: खेत की तैयारी सबसे पहला खेत की तैयारी जैसे गर्मी का मौसम जैसे कि अप्रैल मई के आसपास में एक फर्स्ट जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी का ऊर्जा बने। और उसके बाद जब रोपने का समय आता है धान तो हम लोग उस टाइम 2-3 बार जुताई करते हैं।
0: अच्छा,
1: उसके बाद फिर धान उसमें लगाते हैं।
0: बिहन जो करते हैं, बीजा जो हम लोग करते हैं तो उसमें दो तरह का होता है, एक सूखा होता है एक लय होता है। तो हाँ, आप जो लय किए?
1: लय किए हैं। लय
2: लय में जो है क्या है कि पौधा जल्दी से जो जनरेशन होता है वो जल्दी होता है।
1: हाँ।
2: खेत की तैयारी में जो है जब आप खेत तैयार करते होते हैं तो उसमें कौन कौन सी खाद का इस्तेमाल करते हैं आप?
1: जैविक खाद, जैसे गोबर,
2: जैविक खाद का इस्तेमाल करते हैं। तो खेत की तैयारी के बाद जो है समझे कि जब बिजड़ा हो जाता है, कितना लंबा हो तो कितना बड़ा होता है तब आप बिजड़ा आप खेत में लगाते हैं?
1: 12-14 इंच का होता है, लगा देते हैं।
2: अब लगा देते हैं, कौन सी बीज का आप इस्तेमाल करते हैं?
1: धान का, उसमें दो तीन प्रकार का है
2: जी,
1: जैसे एक हम हायराज लगाते हैं।
2: अच्छा।
1: और एक मनीष लगाते हैं
2: जी,
1: और एक अनुपम लगाते हैं।
2: अच्छा, इनमें सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली फसल कौन सी है?
1: मनीष है।
2: मनीष है, यही आप क्यों लगाते हैं?
1: इसका किस्म अच्छा है और पैदावार भी ज्यादा है।
2: अच्छा, इधर की जो मिट्टी है वो देख रहे हैं थोड़ा सा कंकरीली और बलुही मिट्टी है।
1: हाँ जी।
2: तो उसमें ये मनीष जो है वो बढ़िया है?
1: बढ़िया, उसका पैदावार बढ़िया है।
2: अच्छा, तो आप इसमें जो कीड़ा मकोड़ा लगता होगा तो कैसे आप इसका उपचार कैसे करते हैं?
1: इसका उपचार जैसे कि कीटनाशक दवा से
2: जी। कौन कौन सी दवा का छिड़काव करते हैं?
1: का दो तीन किस्म का है, कार्बेंडा जिम 50 WP या थीरम खरपतवार के लिए इस्तेमाल करते हैं।
2: तो ये आप जो है दवा का छिड़काव करते हैं, कैसे पता चलता है कि हमारे पौधे में जो है वो बीमारी लग गई?
1: जाने खेत, जैसे हम लोग जाते हैं देखने के लिए खेत, तो वहाँ जब खेत देखते हैं, फसल को देखते हैं, तो उसमें रंग से पता चलता है, जैसे कि जड़ से बीमारी लगा है तो पौधा में लालपन आना स्टार्ट हो जाता है।
2: अच्छा।
1: और अगर ऊपर पत्ता में लगा है तो व्हाइटपन पत्ता में आना स्टार्ट होता है, इसी से हम लोग को बीमारी पता चलता है, या तो फिर तना कट रहा हो उससे भी पता चलता है बीमारी का।
2: अच्छा, तो धान की जो फसल आप जो लगाते हैं इसकी रोपाई जो है कैसे करते हैं?
1: 15 या 20 बाय 20 सेंटीमीटर की दूरी में
2: खेत में जब घास हो जाती है तो उसकी, क्योंकि जब घास बड़ी हो जाएगी तो फिर क्या है वो धान को जो है दबा देता है।
1: हाँ, वो तो
2: दबाती है। जो फसल होनी चाहिए वो फसल जो है पूरी तरह से नहीं हो पाएगी।

0: हो पाती है, ग्रोथ नहीं होती है,
1: ग्रोथ नहीं होता है तो क्या है कि फिर उसकी कितने दिनों में उसकी जो है निकोनी करते हैं घास की?
0: घास की निकोनी फर्स्ट कम से कम 15 से 20 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है घास बड़ा होना का।
1: अच्छा,
0: उसके बाद में वो निकाल लेते हैं या तो फिर महीना भर के आसपास में।
1: दवा का छिड़काव कब करते हैं, कितने दिनों में जो है, जब आपको ये मालूम हो गया कि बीमारी हो रही है खेत में लगाने के बाद जो है कितने दिनों तक, मतलब आपको ये लगता है कि बीमारी लग रही है, 15 दिन 20 दिन या 1 महीना?
0: नहीं, बीमारी अगर स्टार्ट होता है फर्स्ट तो पता चलता है 10-12 दिन से ही पता चलता है। धान जैसे अपना शेप में आता है सीधापन में,
1: हाँ हाँ,
0: उस टाइम भी दिखता है कुछ बीमारी, कभी कभी वैसा नहीं भी होता है तो कुछ दिन आगे जाके वही 20-25 दिन के बाद भी नजर आने लगती है बीमारी।
1: अच्छा, खेत में कितना पानी रहना चाहिए, जरूरी है पानी खेत के लिए?
0: 1 से 2 इंच।
1: 1 से 2 इंच पानी जो है हमेशा रहना चाहिए ताकि जो है,
0: नहीं जब छोटी पौधा हो ना तब उस टाइम 1 इंच काफी है, जब थोड़ा सा बड़ी हो जाए पौधा तो उस टाइम कम से कम 2 इंच, और जब पौधा पूरा तैयार हो जाए उसका मुहार वार जब बन जाता है कम्प्लीट उस टाइम आप 4-5 इंच भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: अच्छा, एक चीज और हमें श्रोता बताइए कि जो है कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि इधर की मिट्टी तो बलसर मिट्टी हम देखते हैं, तो इधर की मिट्टी किस तरह की मिट्टी है?
0: इधर की मिट्टी तो दमोट मिट्टी है, चिकनी भी है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है, और अच्छी मिट्टी है लेकिन चिकनाहट मिट्टी नहीं है इधर।
1: ये जो आप जो बीज लगाए हैं तो ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है?
0: लगभग 110 से 50 150 दिनों में,
1: यानी 110 से 150 दिन में ये आपकी फसल तैयार हो जाएगी।
0: हाँ।
1: तो जब आप फसल का आपको तैयार हो जाएगी, अच्छा, किसानों को जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो धान के समय में आती है कि चुनौती क्या क्या होती है धान की पैदावार के लिए?
0: कीट रोग खरपतवार की वजह से ही ज्यादा परेशानी होती है किसान को,
1: और कम वर्षा भी जो है
0: कम वर्षा भी परेशान करती है किसान को।
1: अभी तो जो है इधर देख रहे हैं रह रहा कि तो बारिश हो रही है, और कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल बारिश नहीं होती है, किसान परेशान हो जाते हैं, तो वैसे सूरत में जो है सिंचाई की कोई व्यवस्था?
0: जिसकी सिंचाई की व्यवस्था, जैसे मेरा तो सिंचाई का व्यवस्था है तो हम सिंचाई कर लेते हैं।
1: अच्छा,
0: उसके बाद में फिर बारिश आती है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आती है तो सेकेंड में फिर सिंचाई करते हैं।
1: तो क्या उसकी क्या व्यवस्था है, तालाब से करते हैं या कुआं है या फिर नदी?
0: नदी है, मेरे बगल में नदी है, खेत के बगल में
1: है नदी है, तो वहां से आप सिंचाई
0: कर लेते हैं।
1: तो आपकी जो रोजी रोटी है अभी इसी से चल रही है आपकी?
0: रोजी रोटी हल्का फुल्का, और भी थोड़ा बहुत कुछ काम कर लेते हैं, खेती के टाइम अभी खेती कर रहे हैं, खेती खत्म हो जाएगी उसके बाद थोड़ा बहुत अपना काम भी देखते हैं इधर।
1: अच्छा, ये साग सब्जी भी लगाते हैं आप?
0: हाँ, साग सब्जी भी लगाते हैं।
1: उसमें क्या लगाते हैं साग सब्जी में?
0: साग सब्जी में जैसे आलू का सीजन में आलू लगाते हैं, प्याज के सीजन में प्याज लगाते हैं, हरी सब्जी में जैसे कि भिंडी करेला।
1: अच्छा, अभी तो भिंडी का समय है?
0: हाँ, अभी भिंडी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी।
1: तो बीज का इस्तेमाल जो है प्रमाणित बीज इस्तेमाल करते हैं या फिर?
0: प्रमाणित दुकान से खरीद के यूज करते हैं,
1: प्रमाणित करते हैं, इसमें उपज जो है अच्छी होती है।
0: अच्छी होती है।
1: तो मान लिया कि अगर बारिश नहीं होती है तो कितनी सिंचाई आपको करनी पड़ती है उसमें?
0: उसमें कम से कम 4 से 5 सिंचाई,
1: 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है। नर्सरी की तैयारी कैसे करते हैं?
0: नर्सरी की तैयारी हम लोग ऐसे करते हैं, पानी लगने पर क्या करते हैं उसको जुताई करते हैं रोटावेटर से।
1: अच्छा।
0: ताकि मिट्टी मुलायम हो जाए पानी होने के बाद।
1: हाँ।
0: उसके बाद में उसमें धान को बीज को जो है कि हम लोग फूलने के लिए दे देते हैं। अच्छा। रात में सुबह उसको छान देते हैं, कपड़ा में रख देते हैं पानी। अच्छा। ताकि पानी सब उड़ जाता है, उसमें हल्का अंकुर पन आता है, उसके बाद में उसको बीज को लेकर के वो खेत में धीरे धीरे करके गिरा के एक समतल।
1: अच्छा।
0: और उसको कम्प्लीट करते हैं
1: तो उसके ऊपर कुछ डालते हैं ना, तो चिड़िया जो है सब
0: ना उसके लिए फोरेट वोरेट देते हैं ताकि सैंड से नहीं आती चिड़िया चीटी।
1: अच्छा, यानी ऊपर में कुछ पुआल वाल या
0: नहीं? वो सब नहीं डालते हैं।
1: नहीं डालते हैं?
0: नहीं,
1: वैसे जो है डाल के छोड़ देते हैं।
0: हाँ, जो फोरेट यूज करते हैं उसका सैंड से चिड़िया और चीटी नहीं, अनाज को बर्बाद नहीं करती।
1: अच्छा, तो जो आपका बिजड़ा का जहाँ पे लगाते हैं तो वो ऊंचाई पे होता है या फिर? अगर ऊंचाई पे नहीं करेंगे तो क्या है कि पूरा बारिश होगी, पूरा पूरी बीज जो बह जाएगी, तो कैसे करते हैं उसकी तैयारी?
0: साइड से एक राउंड से गड्ढा करते हैं।
1: अच्छा,
0: जब पानी की जरूरत रहता है तो पूरे रहता है, और जब पानी की जरूरत नहीं पड़ता है तो राउंड गड्ढा है ना उसमें रहता है, उसको जब अंकुर निकल जाता है थोड़ी 2-3 इंच के आसपास होता है, उसका पानी छोड़ते हैं खेत में।
1: तो कितने दिनों के बाद जो है आप इसको बीजा को खेत में लगाते हैं? 15 दिन 20 दिन?
0: 20 से 25 दिन का बीज,
1: 20 से 25 दिन के में आप लगा देते हैं
0: जी।
1: इसमें आप कौन सी खाद का प्रयोग करते हैं?
0: नाइट्रोजन और पोटास का
1: इस्तेमाल करते हैं ना। तो कितनी बार करते हैं पूरी फसल तैयार होने तक जो है, कितनी बार इसमें आप देते हैं इसमें?
0: वही दो बार
1: देते हैं
0: जी।
1: चलिए, ये थे इराक हुसैन जो हमारे श्रोताओं को ये बता रहे थे कि धान की जो है उन्नत खेती कैसे की जाती है। और आखिर में हमारे श्रोताओं को कुछ आप सलाह संदेश देना चाहते हैं जो युवा बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ करते नहीं है, बेरोजगार हैं?
0: युवाओं के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूं, अगर जिसके पास अगर रोजगार नहीं है, आज जमीन उमीन है तो वो खेती उती कर सकता, उससे भी भरण पसंद हो जाती है आदमी का। और जिसके पास नहीं है और वो चाहता है अगर खेती करने के लिए, तो लीज पे जमीन भी उपलब्ध हो जाती है, उससे भी खेती करके अपना भरण पोषण कर सकता है।
1: चलिए, तो ये थे इराक हुसैन जो हमारे श्रोताओं को ये सलाह दे रहे थे, मशवरा दे रहे थे कि जिनके पास ज़मीन नहीं है वो लीज पे लेके ज़मीन पे जो है लीज पे लेके खेती कर सकते हैं और अपनी जीविका जो है यानी अपना भरण पोषण जो है वो कर सकते हैं। तो इराक हुसैन, आप हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सर।
1: तो किसान भाई बहन, अभी हम इन एक धान की उन्नत खेती के बारे में बातचीत सुनो लिए, जानकारी दिल थी मोहम्मद इराक हुसैन, अच्छी जानकारी दिल थी। हमारा उम्मीद है कि किसान भाई बहन ये बात के सुन ले, गौर से सुन ले अपन और यह तेरी खेती करे के कोशिश करते थे। अब देखा कि भाई चलते चलते अब हम इन बात कर लिए कि जल भराव वाले ज़मीन में जो है कैसे हम इनके पानी निकाले के चाहे या फसल हमार कैसे सुरक्षित रहे, एकर बारे में भी थोड़ा सा हमें बात कर रही है। देखा कि खेत में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होवे के चाहिए ताकि पानी जल्दी जो है निकल जाए। खेत के समतल करे के चाहिए जगह से पानी एक जगह जमा ना होवे और आसानी से पानी निकल जाए। ऊंची मेड़ पर खेती करे के चाहिए, नाली बनावे के चाहिए ताकि वर्षा के पानी बहकर बाहर निकल जाए। और साथ ही साथ जल भराव सहन करे वाली फसल हम इनके जो है किस्म के बीज के इस्तेमाल करे के चाहिए या फसल के इस्तेमाल करे के चाहिए ताकि आसानी से जो है वो पानी बर्दाश्त कर सको है। और मौसम पूर्वानुमान के अनुसार खेती की योजना बनावे के चाहिए ताकि भारी बारिश से पहले आवश्यक तैयारी जो है वो करल जा सको है। और आखिर में देखा कि बारिश के बाद जल्दी से खेत से पानी निकाले के चाहिए, काहे कि लंबे समय तक अगर पानी जमते तो फसल के सड़े के जो है पूरा संभावना हो है और फसल जो है वो ख़राब हो जो होवे के पूरा चांस रहो है। तो ये सब पर भी अगर हमें ध्यान दरबे तो हमें के फसल जो है सुरक्षित रहते और सुंदर रहते और फसल के नुकसान हो वैसे हमें अपन फसल के बचा सकोइए। तो यह है बातचीत के साथ, जानकारी के साथ कार्यक्रम खेती बाड़ी से जाए के भी बेरा हो गया है। तो हमारा नसीम के अनुमति दा, नमस्कार, जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबारी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कुछ पल प्रतीक्षा करें।

अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर एसीबी की कार्रवाई तेज हो गई है। एसीबी ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है।

0: हजारीबाग के उपायुक्त हेमंत सत्ती ने खाद और बीज बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया और डीएपी बेचने की शिकायतों की जांच की। उपायुक्त ने जिला कृषि पदाधिकारी को सभी गोदामों की सघन जांच करने और मुनाफाखोरों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया है। रांची के लोअर बाजार थाना में आयोजित जनशिकायत समाधान शिविर में आज वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। एसएसपी ने अधिकारियों को पीड़ितों की जमीन विवाद, धोखाधड़ी और मारपीट जैसे शिकायतों का त्वरित निपटारा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। जामताड़ा के मिहिजाम में कानगोई पत्थर डंप के पास फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर वसूली करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वसीम राजा ने बताया कि आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 2 वॉकी टॉकी, 2 चाकू और जैप 5 का फर्जी आईडी कार्ड बरामद हुआ है। सिमडेगा जिले के रेंगारीह में एक युवक ने लाठी से पीटकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी युवक एक्शन मेंज ने शराब के नशे में घरेलू विवाद के दौरान अपने पिता पर हमला कर दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। 135वें डूरंड का फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स एफटी और श्रीलंका की डिफेंडर्स एफटी के बीच शाम 7 बजे बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हो रहा है। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है युवाओं को संबोधित हमारा अगला कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम युववाणी सुनने वाले आप सभी युवा साथियों को श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जैसे हम अपने जीवन में किसी भी काम की शुरुआत भगवान के नाम से, ईश्वर के नाम की को स्मरण करते हुए या फिर ईश्वर की आराधना करते हुए हम शुरू करते हैं, तो आज का यह कार्यक्रम हम शुरू करना चाहेंगे गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, ये जानते हुए कि हमारे जीवन में गुरुओं की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है। दोस्तों, गुरु हमारे जीवन में वो सूर्य की प्रकाश की तरह होते हैं जिनके प्रकाश से हम प्रकाशित होते हैं, आलोकित होते हैं और हमारा अपना जीवन बेहतर तरीके से आगे बढ़ता जाता है। अगर हमारे जीवन में गुरुओं का साथ ना हो, गुरुओं का मार्गदर्शन ना हो, तो हमारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। जीवन में गुरु का महत्व अत्यंत गहरा है, क्योंकि वे अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाते हैं और व्यक्तित्व का विकास भी करते हैं। गुरु के बिना जीवन दिशाहीन और अधूरा माना जाता है। गुरु हमें असत्य और अज्ञान से निकालकर सत्य और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। जीवन की हर उलझन और कठिन परिस्थिति में गुरु एक कंपास की तरह राह दिखाते हैं और सही दिशा में हमें अपने जीवन को बढ़ाने की सीख देते हैं, शिक्षा देते हैं। वे हमें अच्छे संस्कार, विनम्रता, अनुशासन और मानवीय मूल्य सिखाते हैं, जिनकी हमारे जीवन में बेहद आवश्यकता पड़ती है। पढ़ाई, कला या किसी भी क्षेत्र में कुशलता पाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य होता है। गुरु हमारे भीतर छिपे डर को दूर कर साहस और प्रेरणा का संचार करते हैं। उनके अनुभव और आशीर्वाद से ही हम जीवन के अंतिम और बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। तो हम में से ऐसे तो हमारे जीवन में, हम सभी के जीवन में गुरु होते ही होते हैं। गुरु के बिना आज कोई भी इंसान नहीं होगा जिसके जीवन में गुरु ना हो। गुरु के रूप में चाहे वो हमारे माता पिता होते हैं या स्कूल कॉलेज जाने के बाद जो हमें किताबों से रूबरू करवाते हैं, किताबों के ज्ञान से रूबरू करवाते हैं, वे शिक्षक होते हैं, या आम जन जीवन में जो हमें कुछ सीख दे जाते हैं, वे भी हमारे गुरु होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसे लोग हमारे जीवन में मिल जाते हैं आस पड़ोस में, जिनके मार्गदर्शन में हमारा जीवन जो है वो काफ़ी फल फूल करके विकसित होता है। तो हम सभी ऐसे गुरुओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं आज के इस गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, और आप गुरुओं की छत्र छाया में

आना चाहिए या कौन सा करियर उनके लिए बेहतर हो सकता है। करियर को लेकर फोकस्ड बच्चे तो सही समय पर अपनी जॉब पकड़ लेते हैं, जिससे उनके जीवन में आर्थिक स्थिरता आ जाती है और वे अपना जीवन सुकून से गुजार रहे होते हैं। वहीं करियर को लेकर कंफ्यूज्ड युवा करियर बनाने में अक्सर असफल रहते हैं और जीवन में अनेकों संघर्षों का सामना करते रहते हैं जीवन भर। सही करियर चुनना और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना जीवन को सफल बनाने के मुख्य कदम हैं। इसमें सबसे पहले अपनी रुचि पहचानना होता है, सही परीक्षा चुननी होती है और एक निर्धारित लक्ष्य के साथ ही समय सारणी बनानी होती है। आज के दौर में प्रतियोगिता इतनी अधिक बढ़ गई है कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के लिए करियर बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुकी हैं। संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, SSC, बैंकिंग, रेलवे, गेट जैसी परीक्षाएं युवाओं को सरकारी नौकरियों की ओर ले जाने वाले प्रमुख रास्ते हैं। लेकिन इन परीक्षाओं की राह इतनी आसान भी नहीं होती। इनकी तैयारी में केवल विषय का ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य, सही रणनीति और मानसिक संतुलन भी बेहद जरूरी है। परीक्षा के पैटर्न और पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझना भी जरूरी होता है। प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को हल किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा का पैटर्न और लेवल का पता आपको चल सके। मॉक टेस्ट भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बेहद आवश्यक होता है, साथ ही निश्चित सफलता के लिए निरंतरता बहुत आवश्यक है। तैयारियों के लिए बेहतर तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो निरंतरता आपको बनानी ही होगी। हर दिन तय समय तक मन लगाकर पढ़ाई करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित इन आवश्यक बातों के अलावा करियर सिलेक्शन में भी कुछ बातें ध्यान में जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि आप वही क्षेत्र चुनें जो आपको पसंद हो और जिसमें आपकी योग्यता अच्छी हो, पकड़ अच्छी हो। करियर के चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखें कि भविष्य में किस क्षेत्र में नौकरियों की डिमांड ज्यादा है और किसमें आगे बढ़ने के अच्छे चांसेस हैं, मौके हैं। अपने टैलेंट और वीकनेस को देखते हुए भी आप करियर के चयन में सही निर्णय ले सकते हैं। करियर चयन और प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित इन जानकारियों के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है गीत का, तो दोस्तों हम बिना देर के आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, फिर करेंगे कार्यक्रम में और भी ढेरों बातें जो होंगी बाघ, भारत में बाघ संरक्षण की चुनौतियां और चुनौतियों से संबंधित बातें। तो सुनिए पहले इस गीत को और कुछ जरूरी संदेशों को भी।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: जरूरी संदेशों और गीत के बाद आपका एक बार फिर से कार्यक्रम युववाणी में स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान समय में धरती पर असंख्य जीव जंतुओं के अस्तित्व के बावजूद भी हमारे बीच से ऐसे कई जीव जंतु विलुप्त हो चुके हैं और कई जीव जंतु विलुप्ति के कगार पर आ रहे हैं, जिन्हें संरक्षित करना हमारे पर्यावरण यानी पर्यावरण और इकोसिस्टम के लिए बेहद आवश्यक है। इसी कड़ी में भारत में बाघों के संरक्षण के लिए कई कदम सरकार के द्वारा उठाए जाते रहे हैं। भारत में भारतीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा वर्ष 1972 में शेर के स्थान पर बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया। वस्तुतः देश के बड़े हिस्सों में इनकी मौजूदगी के कारण ही बाघ को राष्ट्रीय पशु चुना गया। निरंतर बढ़ती जनसंख्या और तीव्र गति से होते शहरीकरण के कारण जंगलों में अनियोजित विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिससे बाघों के प्राकृतिक आवास नष्ट होते जा रहे हैं। साथ ही बाघों को मार करके इनके छालों और हड्डियों को बाजारों में बेचा जा रहा है। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट कार टाइगर की शुरुआत केवल 9 टाइगर रिजर्व के साथ हुई थी, जबकि वर्तमान में देश में 72,000 वर्ग किलोमीटर में 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं। इन सभी टाइगर रिजर्व का मूल्यांकन एक स्वतंत्र प्रबंधन द्वारा किया जाता है। सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया के तहत बाघों की स्मार्ट निगरानी के लिए एक कार्यक्रम मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेट्स शुरू किया गया है। इसके परिणाम काफी बेहतर भी देखे जा रहे हैं बाघों के संरक्षण में। हाल ही में भारत के नवीनतम बाघ जनगणना को 25,000 से अधिक कैमरों की पहुंच में रखने और 35 मिलियन से अधिक फोटो खींचने के लिए भारत को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। यह दुनिया भर में किसी भी देश द्वारा किया गया बाघों का सबसे बड़ा मतगणना था। खास बात यह है कि भारत ने बाघों की आबादी को दोगुना करने संबंधी वर्ष 1910 की सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को 4 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया है। वर्तमान समय में बाघों की वैश्विक आबादी का 70% भारत में बाघ पाए जाते हैं। देश में इनकी वर्तमान संख्या 2,967 है। यह भारत के लिए एक बड़ी संरक्षण सफलता के साथ साथ एक समृद्ध जैव विविधता का प्रतीक भी है। यह उपलब्धि देश को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देशों का नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करती है। बाघों के संरक्षण को प्रोत्साहन देने हेतु प्रति वर्ष 29 जुलाई को विश्व बाघ संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता और आहार श्रृंखला में बाघ महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज बाघ संरक्षण केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। इनके संरक्षण के अभाव में हमें बाघ से मिलने वाले लाभों से वंचित रहना पड़ सकता है। इसलिए बाघों का संरक्षण न केवल आवश्यक है बल्कि अनिवार्य भी है। और अब बाघ संरक्षण पर इन तमाम बातों के बाद कार्यक्रम में आगे समय हो चला है आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने का।

0: आइए हम सुनते हैं इस भेंट वार्ता को। विषय है, आज के अर्थ प्रधान युग में कॉमर्स विषय करियर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रही हैं वर्षा सिन्हा और इनसे हमारी सहयोगी बात कर रही हैं रानी सहाय।
1: श्रोताओं, अब दुनिया बड़ी तेजी से अर्थ प्रधान हो रही है। व्यापार और वाणिज्य में पेशेवर दक्षता की आवश्यकता बढ़ गई है। ऐसे में कॉमर्स विषय को लेकर किस तरह का भविष्य आने वाले दिनों में है, उसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बच्चे 11वीं 12वीं के समय से ही सजग हो जाएं, तो एक अच्छा, बेहतर और समृद्ध करियर उन्हें जरूर प्राप्त होगा। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कार्मल स्कूल की शिक्षिका वर्षा सिन्हा जी, जो हमें बताएंगी आज के अर्थ प्रधान युग में कॉमर्स विषय करियर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में हम करते हैं इनका बहुत बहुत स्वागत और कहते हैं नमस्कार।
2: नमस्कार
1: वर्षा जी, कॉमर्स विषय का चयन करते समय विद्यार्थी किस बात पर विशेष ध्यान दें, इसके बारे में आप विद्यार्थियों को थोड़ी जानकारी दें।
2: मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी नंबर्स में अच्छे हैं, स्टैटिस्टिक्स, डेटा हैंडलिंग, नंबर्स, इकोनॉमिक्स, कैलकुलेशन या बिजनेस से संबंधित चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कॉमर्स ले सकते हैं।
1: जी, 11वीं से पहले वर्षा जी, इस विषय की जानकारी छात्र छात्राओं में बहुत कम होती है, आप क्या सलाह देना चाहती हैं इस बारे में?
2: यह बात सच है, परंतु बच्चे स्कूल में पहले से इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर पढ़ते हैं और बिजनेस के बारे में जानते हैं, तो वैसे बच्चों को इसमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन करना बच्चे गणित में सीख ही लेते हैं, और या तो फिर वो काउंसलिंग में जा सकते हैं और डेमो क्लासेस देख सकते हैं, जिससे उन्हें फायदा होगा।
1: जी, 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर सभी में अगर कॉमर्स की पढ़ाई करें तो रोजगार की दृष्टि से क्या फायदा है?
2: यह अवधारणा है कि जो बच्चे पढ़ने में सामान्य होते हैं, जिन्हें हम एवरेज कह सकते हैं, वो कॉमर्स ले लेते हैं।
1: जी,
2: जबकि ऐसा नहीं है। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देश की इकोनॉमी को बेहतर बनाने में योगदान दे सकता है।
1: जी,
2: इससे ढेर सारे करियर स्कोप हैं।
1: जी,
2: इसमें अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर पढ़ाया जाता है। कॉमर्स में कंप्यूटर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर बिजनेस तो ई कॉमर्स हो गए हैं, तो जिसमें बच्चों को कंप्यूटर भी जानना जरूरी है, इसलिए कॉमर्स में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण विषय है।
1: जी,
2: इससे मार्केटिंग हम लोग का ग्लोबलाइज हो जाता है और इसमें हम लोग आगे जाके बीकॉम कर सकते हैं, एमकॉम कर सकते हैं, जिसे हम लोग मास्टर्स कह सकते हैं कॉमर्स में, फिर बीबीए कर सकते हैं, बिजनेस, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एमबीए कर सकते हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एलएलबी में हमें फायदा होता है। इसके बाद हम कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर सकते हैं, सीए जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, उसका कोर्स कर सकते हैं, और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसका एक हिस्सा बैंकिंग कह सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स इसमें इंटरेस्ट लेते हैं बैंकिंग की ओर, वो लोग, उन लोगों के लिए बहुत ओपन मार्केट है कॉमर्स अगर वो लेते हैं तो। गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हैं, जैसे बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस की तैयारी जो करते हैं, तो वो भी इससे फायदा होगा।
1: जी, अच्छी पुस्तकों का महत्व हमेशा से रहा है वर्षा जी, इंटरमीडिएट से लेकर उच्चतर कक्षाओं में किस तरह की पुस्तकों का अध्ययन करें जिससे उन्हें सफलता मिले, और कुछ लेखकों का नाम भी आप बता दी तो अच्छा रहता।
2: हमेशा जो बेस बुक होता है उसे जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे एनसीईआरटी की पुस्तक इत्यादि। मगर कॉमर्स प्रैक्टिस का विषय है, इसलिए जिन पुस्तकों में अधिक उदाहरणों के साथ विषय को समझाया जाता है, वैसी पुस्तक पढ़ना ज्यादा फायदेमंद होता है। जैसे कि बिजनेस स्टडीज में डॉक्टर सीबी गुप्ता की पुस्तक हम लोग पढ़ सकते हैं, और भी वैसे बहुत हैं। इकोनॉमिक्स में डॉक्टर आशीष बनर्जी, डॉक्टर देवाशीष मजूमदार, अकाउंट्स के लिए डीके गोयल या राजेश गोयल की पुस्तकें पढ़ सकते हैं
1: जी।

0: वर्षा जी, ये युग सोशल मीडिया का है, इसका कितना फायदा छात्र छात्राओं को मिल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगी?
1: सोशल मीडिया के युग में फायदा और नुकसान दोनों है। जहाँ छात्र छात्राओं को नई चीजें सीखने का मौका मिल रहा है, वहीं कुछ छात्र इसका फायदा उठाकर गलत विषयों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यहाँ शिक्षकों एवं अभिभावकों को इसकी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। उन्हें समय समय पर चेक किया जाना चाहिए।
2: जी, बहुत जरूरी है।
1: और जहाँ तक जरूरत हो सिर्फ वहीं तक छूट दी जाए, अन्यथा बच्चे गलत राह में जा सकते हैं। जैसा कि कहा गया है, पतन की राह बहुत चिकनी होती है। मेरा मानना है कि जब तक बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स कंप्यूटर्स के तो उन्हें स्कूल में ही सिखा दिए जाते हैं, तो फिर मोबाइल अथवा किसी अन्य साधन के द्वारा सोशल मीडिया पर उपलब्ध रहना आवश्यक नहीं है।
0: वर्षा जी, कोचिंग संस्थानों और ग्रुप के अध्ययन को भी प्रमुखता दी जा रही है ना? आप क्या सलाह देना चाहती हैं विद्यार्थियों को?
1: आजकल के बच्चे कोचिंग को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं
2: जी।
1: लेकिन मेरी ये धारणा है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाए या कॉलेज में पढ़ाया जाए, बच्चे अगर उसे ध्यान से समझकर और उससे प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर ग्रुप स्टडी वो करना चाहे तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ग्रुप स्टडी में तरह तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी अपनी नॉलेज होती है, जिससे वो शेयर करेंगे तो उनकी नॉलेज बढ़ती है।
0: वर्षा जी, तैयारी में समय प्रबंधन का अपना महत्व है। अक्सर विद्यार्थियों में यह स्थिति देखने को मिल रही है कि वो ये तय नहीं कर पाते हैं, तो समय प्रबंधन की रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दें।
1: टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है
2: जी।
1: किसी भी फील्ड में हम रहें, सफलता के लिए समय मुख्य कारक सिद्ध होता है। समय के महत्व को समझकर यदि तैयारी उसके अनुसार की जाए तो सफलता निश्चित है
2: जी, बिल्कुल।
1: कुछ छात्र केवल परीक्षा के समय दिन रात एक करके पढ़ते हैं, किंतु इसमें नॉलेज से ज्यादा मार्क्स को प्रधानता देते हैं
2: जी।
1: लेकिन मेरा मानना है कि नॉलेज ज्यादा जरूरी है। बेस स्ट्रांग हो जाए या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने पर ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर छात्र को अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए और वो पूरे साल के लिए होना चाहिए और उसके अनुसार तैयारी करनी चाहिए
0: जी। बहुत अच्छी बात कही आपने। तो अंत में एक सवाल हम और भी आपसे जानना चाहेंगे कि सफलता के लिए महत्वपूर्ण है अच्छी समझ और सटीक प्रस्तुति, इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दे दें।
1: अच्छी समझ होना बहुत जरूरी है
2: जी।
1: अच्छी समझ होने से छात्रों में यह समझदारी आएगी कि उन्हें किस ओर जाना है
2: जी।
1: ठीक है, जिस ओर उन्हें जाना है, उनकी समझ होने से वे अपने करियर को डिसाइड कर पाएंगे और सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे। अगर यदि वो जानेंगे कि उन्हें किस ओर जाना है और सफलता के लिए वो लगे रहेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी
2: जी।
0: वर्षा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, विषय था आज के अर्थ प्रधान युग में कॉमर्स विषय करियर के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। भेंटवार्ताकार थी वर्षा सिन्हा और इनसे हमारी ओर से बातें कर रही थी हमारी सहयोगी रानी सहाय। तो दोस्तों, भेंटवार्ता के जरिए आपने सुना करियर के लिहाज से कॉमर्स विषय के महत्व को, और हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा यह कार्यक्रम और कार्यक्रम में मिली जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी, लाभान्वित हुए होंगे आप। और अब इसी के साथ कार्यक्रम युवाणी से विदा लेने का वक्त भी हो चला। फिर मिलेंगे हम अगले कार्यक्रम में आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम फिल्म संगीत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं फिल्म धड़कन के इस खूबसूरत से गीत के साथ, आवाज अलका याग्निक की।

कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और सुरेश वाडेकर के युगल स्वरों में ये गीत, फिल्म का नाम अफसर।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से। लीजिए पेश है कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है फिर तेरी कहानी याद आई, आवाज अलका याग्निक की।

फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक की आवाज थी। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं अलीशा चिनॉय और सुदेश भोंसले की युगल स्वरूप में फिल्म वक्त की आवाज का ये

वक्त की आवाज फिल्म के इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और फिर जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
1: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आँखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
2: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
1: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: घर सूर्य घर।
8: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका के डिफेंडर्स एफसी के बीच डुरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने जैसे कड़े दंड के प्रावधान शामिल हैं। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का आदेश दिया गया है। संसद परिसर में आज झारखंड के भाजपा सांसदों ने जेपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सांसदों ने मामले की सीबीआई जांच और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने मांग

0: की कि कांग्रेस को राज्य सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए।
1: झारखंड के अंदर जेपीएससी घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला हुआ, पेपर लीक हुआ और आज झारखंड के लाखों युवा मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ। उत्पात सिपाही दौड़ में हमारे 16 युवा मारे गए, कौन न्याय देगा? क्यों नहीं उनको सरकारी नौकरी देते उनके परिवार को? एक हाथ में सुरमा और एक में वो, हम तो इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, कब वो झारखंड आएंगे, कब मुख्यमंत्री आवास के सामने धरने बैठेंगे।
0: झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत 2,20,00,000 के इनामी माओवादी कमांडर मिस्टर बेसरा को धनबाद से गिरफ्तार किया है। डीजीपी तदाशा मिश्रा ने बताया कि कोबरा बटालियन के संयुक्त अभियान में 15,00,000 का इनामी मेहनत और एरिया कमांडर गौरव को भी दबोचा गया है। इनके पास से 3 AK-47 राइफल और 288 कारतूस मिले हैं।
2: झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है। पिछले करीब 6 माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूंगी IGSTF, IGPRPF, IGOPS और हमारे SSP धनबाद और SP गिरिडीह, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है।
0: चतरा में आज उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के IG शैलेंद्र कुमार ने रामगढ़ और चतरा पुलिस के साथ अहम समीक्षा बैठक की। उन्होंने दोनों जिलों की कानून व्यवस्था, उग्रवाद विरोधी अभियानों और सीमावर्ती सुरक्षा की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। राज्य में कथित शराब घोटाला और उत्पाद नीति में अनियमितताओं को लेकर ACB की कार्रवाई तेज हो गई है। ACB ने टेंडर प्रक्रियाओं और वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के सिलसिले में राज्य के 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी किया है। ACB के अनुसार 4 अगस्त को तत्कालीन उत्पाद आयुक्त अमित प्रकाश, तत्कालीन संयुक्त आयुक्त गजेंद्र सिंह और JSBCL के तत्कालीन महाप्रबंधक सुधीर कुमार दास को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राज्य भर में आज संत गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता महापर्व अभियान की शुरुआत की गई है। इस राज्यव्यापी अभियान के तहत प्रदेश के सभी जिलों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बोकारो सहित विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
4: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डुरंट कप 2026 की मेजबान।
3: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
4: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी।
3: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
4: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के लिए रांची, जमशेदपुर और देवघर में प्रीमियम मिलेट्स कैफेटेरिया खोलने जा रही है। इन कैफेटेरिया में मोटे अनाज यानी श्री अन्न से बने स्वादिष्ट और पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन उपलब्ध होंगे। कृषि निदेशक विद्यानंद शर्मा पंकज ने बताया कि प्रत्येक प्रीमियम कैफेटेरिया के लिए सरकार पहले वर्ष 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता देगी।
5: पूरे राज्य में मिलेट मिशन के बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने ड्राइव भी चलाया था जुलाई में। अभी हम लोगों ने उसमें करीब 22,000 किसानों को इनरोल कराया है। उद्देश्य यही है कि मिलेट्स का प्रोडक्शन में झारखंड जो है पूरे देश का अग्रणी राज्य बने। इसमें हम

0: पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी।
1: चौथा जनशिकायत समाधान कार्यक्रम है और हम लोग एक डेली डेटा शीट भी बना रहे हैं कि कितने शिकायत हम लोग ऑन स्पॉट समाधान कर पा रहे हैं, कितने लंबित हैं, कि बहुत सारे पर FIR इत्यादि भी दर्ज हो रहा है। एक महीने दो महीने का पीरियड बीत जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है और पूर्व में जो लोगों ने शिकायत दी उनका समाधान हुआ या नहीं हुआ।
0: सावन का पवित्र माह कल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही देवघर समेत राज्य के सभी शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देवघर में पहले दिन कल करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इससे पहले आज मंत्री सुदिव्या कुमार और दीपिका पांडे सिंह ने दुम्मा प्रवेश द्वार पर दीप प्रज्वलित कर देवघर के राजकीय श्रावणी मेले का भव्य उद्घाटन किया। उधर दुमका के विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम में भी आज राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव का पारंपरिक और विधि विधान से शुभारंभ हो गया। जरमुंडी विधायक देवेंद्र कुंवर, आयुक्त संजय कुमार और उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इधर रांची में भी सावन माह के पावन अवसर पर विशेष तैयारी की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए रांची की मेयर रोशनी खलखो ने आज ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर का औचक निरीक्षण किया।
2: हर साल जो तैयारी होती है उससे ज्यादा हम लोग तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुगणों को सुविधाएं हम लोग मुहैया करा सके। जहां पर लाइटें नया बदलने की आवश्यकता है उसे नया बदलने के लिए भी ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया है। इसके साथ ही बाबा की नगरी को पूरा दुल्हन की तरह सजाना है।
0: 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के रांची चरण में आज दूसरा मुकाबला इंडियन एयरफोर्स FT और श्रीलंका की डिफेंडर्स FC के बीच अब से थोड़ी ही देर बाद बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में शुरू होगा। इस रोमांचक मैच के लिए स्थानीय दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को दी मंजूरी। पेपर लीक करने वालों को होगी 10 साल की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। झारखंड के भाजपा सांसदों ने JPSC परीक्षा गड़बड़ी को लेकर संसद परिसर में किया जोरदार प्रदर्शन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांगा इस्तीफा। राज्य में कथित शराब घोटाला मामले में ACB की बड़ी कार्रवाई। 3 बड़े अधिकारियों को समन जारी कर 4 अगस्त को किया तलब। देवघर में विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेले का मंत्रियों ने किया उद्घाटन। पहले दिन कल 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के बाबा नगरी पहुंचने की संभावना। और रांची में अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा एयरफोर्स और श्रीलंका की डिफेंडर्स FC के बीच डूरंड कप का दूसरा मुकाबला। फुटबॉल प्रेमियों में भारी उत्साह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पाकुड़ जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे पाकुड़ संवाददाता।
1: पाकुड़ जिले के अनुसूचित जाति जनजातीय उद्यमियों को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने प्रयास तेज कर दिया है। इसी कड़ी में झारखंड एसटीएससी हब ने कार्यशाला आयोजित कर उद्यमियों की क्षमता बढ़ाने के लिए तकनीकी ज्ञान, वित्तीय सहायता मुहैया कराने, उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर बात की झारखंड एसटीएससी हब के हेड किरण मारिया तीरू ने।
2: ये जो प्रोग्राम है इसके तहत हम लोग चाहते हैं कि जन जन तक एससी एसटी उद्यमी तक पहुंचे और उद्यमिता को बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से है, जिसमें उनको जागरूकता से लेकर के जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है जिसमें 4% का रिजर्वेशन है उनका हरेक सरकारी निविदा में पार्टिसिपेट करें निविदा में, क्योंकि 4% जो हमारे एससी एसटी उद्यमी गण है उनका पूरा नहीं हो पाता है हमारे सीपीएससीज में, तो उसके लिए ये प्रोग्राम रखी गई है।
1: समावेशी शिक्षा के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना एवं एलिम्को ने पाकुड़ जिले के 6 प्रखंडों में संयुक्त रूप से शिविर लगाकर दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण किया। इस पर बात की एलिम्को के डॉक्टर ज्ञानेंदु कुमार सिंह ने।
3: सर्व शिक्षा अभियान के तहत पिछले साल हम लोग असेसमेंट किए थे, तो उसमें बच्चों का

0: सहायक यंत्र उपकरण एड्स अप्लायंस सेट है जो दिव्यांग बच्चे मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सहायक यंत्र उपकरण यथा व्हील चेयर, ट्राई साइकिल, मोटराइज बैटरी चालित ट्राई साइकिल, क्रचेज, ब्रेल किट, श्रवण यंत्र, मानसिक मंद बच्चों के लिए TLM किट, तो ये सब सारे उपकरण वितरित करके जो चिन्हित किए गए थे पिछले साल, आज वितरण कार्यक्रम शिविर लगा के किया जा रहा है।
1: झारखंड सरकार द्वारा लघु खनिजों का चालान विपत्र के साथ उपलब्ध कराने की अनिवार्यता से परेशान संवेदकों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर राहत दिलाने की मांग की है। इस पर बात की संवेदक संघ के रितेश कुमार ने।
2: जो भी है हमारे यहाँ का एसोसिएशन, हम लोग DC मैम से आज मिले हैं, जिसमें 27 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन आया कैबिनेट का, जिसमें मैंडेटरी क्या है कि जो भी हम लोग माइनर मिलर यूज करेंगे उसका चालान हम लोग को डिपार्टमेंट में सबमिट करना होगा। तो इसमें काफ़ी माइनर मिलरल ऐसा है जो मार्केट में अवेलेबल तो है लेकिन चालान के साथ अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग जमा नहीं कर पा रहे हैं और साथ में मटेरियल भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम पूरा बाधित है। कंस्ट्रक्शन का जो भी डेवलपमेंट वर्क है वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है।
1: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान ट्रेसलेस मतदाताओं का पता लगाने एवं उनका गणना प्रपत्र भरवा कर जमा लेने और डिजिटाइजेशन को लेकर पाकुड़ में 3 दिनों का विशेष शिविर लगाया गया। इस पर बात की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने।
3: ASDD लिस्ट जो है हमारा उसको फाइनल करना था, वो तो जहाँ के मतदान केंद्रों में कुछ हमारे मतदाता है जो ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं BLO के द्वारा, उसी के रिगार्डिंग मेडिकल सीजे DLA ग्रुप को भी बोला गया कि अगर ये ऐसे मतदाता ट्रेस होते हैं तो उनका फॉर्म हम लोग जल्दी भरवा दें। और चूंकि कुछ भारी संख्या में मतदाता 100 के अराउंड मिले हैं जिनके बारे में BLA टू को भी जानकारी नहीं दी, तो एक बार हम लोग लास्ट प्रयास के तहत 2-3 दिन का कैंप जो है इस बूथ के विभिन्न एरिया में लगाएंगे ताकि अगर एक भी हो तो वो छूटे ली मिले।
1: पाकुड़ शहरी क्षेत्र में बीते 15 दिनों से शहरी जलापूर्ति बाधित रहने के कारण लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
4: अभी आप सुन रहे थे पाकुड़ जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। धन धनाधन गोल, इस फिल्म से हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत, जिसे गाया है ऋचा शर्मा और आनंद राज आनंद और साथियों ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। लीजिए पेश कार्यक्रम का ये पहला गीत, फिल्म का नाम बालिका वधू, आवाज अमित कुमार की।

बालिका वधु फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अमित कुमार की आवाज थी। कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम चोर और चांद। आवाजें हैं SP बाला सुब्रमण्यम और अनुराधा पौडवाल की।

अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल सुरों में गाए फिल्म चूर और चांद के इसी गीत के साथ ही सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स अब यहीं समाप्त हो

0: आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ऑल टाइम हिट्स। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम कानूनी सलाह। कानूनी सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवा रहे हैं भेंट वार्ता। विषय है गिरफ्तारी से संबंधित हमारे कानूनी अधिकार। इस बारे में विस्तार से जानकारियां दे रहे हैं अधिवक्ता अनुज कुमार रॉय और इनसे बातें कर रही हैं श्वेता रानी। तो आइए सुनते हैं इस भेंट वार्ता को। कार्यक्रम है कानूनी सलाह।
1: श्रोताओं, गिरफ्तारी छोटे बड़े आपराधिक मामलों में होती है, इस बात को हम सभी जानते हैं। और कभी कभी शक के आधार पर भी किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस बात को भी हम सभी जानते हैं। पर गिरफ्तारी के मामले में नागरिकों के कानूनी अधिकार क्या क्या हैं, इस मामले में शायद ही बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए आज के कानूनी सलाह कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाएंगे गिरफ्तारी से संबंधित हमारे अधिकारों के बारे में, और इस बारे में विस्तार से जानकारियां देंगे हजारीबाग के जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता श्री अनुज कुमार रॉय जी। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: धन्यवाद मैडम।
1: सर, सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी क्या है।
2: अपराध दो तरह के होते हैं, एक संज्ञेय अपराध होते हैं, एक असंज्ञेय अपराध होते हैं। पुलिस किसी भी व्यक्ति को संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो, दोनों अपराधों में गिरफ्तार कर सकती है कि अगर उसको लगता है कि सशंकित व्यक्ति अपराध कर सकता है, समाज को खतरा है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।
1: संघीय और असंघीय अपराध क्या होता है?
2: संघीय अपराध जो कि जमानतीय है, जिसमें सजा 3 साल से कम की सजा का अपराध होता है, और असंघीय अपराध वैसा अपराध है जिसमें 3 साल से ऊपर का सजा का प्रावधान है, उसे असंघीय अपराध करते हैं, और गैर जमानती होता है वो।
1: तो किस तरह के अपराध संघीय और असंघीय के अंतर्गत आते हैं?
2: संघीय अपराध जैसे छोटा मोटा चोरी हो गया, जैसे किसी का बटुआ चोरी कर लेना, या किसी का पेन चोरी कर लेना, किसी की गाड़ी चोरी कर लेना,
1: किसी का कुछ सामान छोटा मोटा,
2: छोटा मोटा सामान चोरी कर लेना, ये संज्ञेय अपराध के अंतर्गत आता है, जिसमें सजा 3 वर्षों का होता है, वो जमानतीय अपराध है। और असंज्ञेय अपराध 3 साल से ऊपर का सजा, जैसे किसी का मर्डर कर देना, किसी का रेप कर देना, किसी का छेड़छाड़ कर देना, किसी को लूट लेना, सड़क चलते लूट करना, या रिवॉल्वर का भय दिखा के लूट करना, ये असंज्ञेय अपराध है, उसमें से 3 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, वो असंज्ञेय अपराध और गैर जमानतीय अपराध कहलाता है वो।
1: अच्छा।
2: गिरफ्तारी जैसे जनरली सामान्य तौर पे संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी नहीं होती, असंज्ञेय अपराध में जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, और उसका पर्याप्त साक्ष्य पुलिस को मिल गया, तो उसको गिरफ्तारी हो जाएगी। और कोई पुलिस अगर किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को गिरफ्तार करता है, तो उस समय वो अपराधी नहीं है। उसका अधिकार ये है कि निकटतम थाना प्रभारी जो उसको गिरफ्तार करेगा, निकटतम न्यायालय में जो भी कंसर्निंग कोर्ट उसका होगा, उस कोर्ट में 24 घंटा के अंतर उसको उपस्थित करना होता है।
1: गिरफ्तारी के नियमों के बारे में बताएं।
2: जब किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी होती है, तो सबसे पहले वो जो अपराधी यानी वो जो व्यक्ति जो गिरफ्तारी जिसको किया जा रहा है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका ये अधिकार बनता है कि वो अपने जिसने गिरफ्तार किया, जो भी पदाधिकारी है थाना प्रभारी, उस पदाधिकारी से पूछे, उसका राइट्स बनता है कि हमको किस जुर्म पे गिरफ्तार किया गया, हमने कौन सा अपराध किया, वो राइट्स है उसका। और वो पदाधिकारी का भी कर्तव्य बनता है कि वो बताए कि आपको फलाने जुर्म में मैंने आपको गिरफ्तार किया। दूसरा चीज है कि आप अपने निकटतम वकील से बात कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं थाना प्रभारी को कि हम अपने वकील से बात करना चाहते हैं, आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। और अगर वो संज्ञेय अपराध है, तो आपके वकील आपको थाना से ही बेल करवा सकते हैं। अच्छा। जो कि मैंने पहले ही कहा कि संज्ञेय अपराध जिसमें की मामला छोटा मोटा मामला है, चोरी, हल्का फुल्का मारपीट, चोट चपेट, जिसमें 3 साल से कम का प्रावधान है, उसका बेल आप थाना से भी ले सकते हैं। तो ये आप अपने वकील को बुला के वहाँ पे जमानतनामा देंगे, और उसको बॉन्ड कहते हैं, पीआर बॉन्ड भरेंगे, और आप वहाँ से छूट सकते हैं। लेकिन अगर अपराध असंघीय अपराध है, तो पुलिस पदाधिकारी आपको नहीं छोड़ सकता। वैसी स्थिति में मजिस्ट्रेट के यहाँ लाएगा, मजिस्ट्रेट के यहाँ पाएंगे। वहाँ भी एक प्रोविजन है कि अभी एक रिमांड लॉयर आते हैं, जब आप थाना से कोर्ट आ गए, तो वहाँ रिमांड लॉयर आपसे पूछेंगे कि थाना में आपको देखभाल किया गया, जामा तलाशी किया गया, आपका चिकित्सा किया गया या नहीं किया गया, आपके साथ मारपीट किया गया है क्या, इस सारा चीज कॉलम भराएगा वो रिमांड लॉयर, सारा पुष्टिकरण लेंगे, तब आपकी गिरफ्तारी होगी, फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा।
1: सर, गिरफ्तारी से संबंधित जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, वो क्या क्या हैं जो आम नागरिकों के लिए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: सबसे पहले आपकी गिरफ्तारी किस जुर्म में हुई, ये जानने का हक।

0: अपना वकील रखने का हक है। और जैसे ही आपको पता चलता है कि आप सामान्य अपराध जिसमें कि संज्ञेय अपराध है, तो संज्ञेय अपराध में तो थाना आपको छोड़ देगा। ये जानने का हक है कि संज्ञेय अपराध है असंज्ञेय अपराध है थाना प्रभारी आपको बताएगा, या आप अपने वकील से पूछ सकते हैं। हर एक थाना में भी न्याय मित्र होता है, न्याय मित्र भी आपको इस तरह का बात करता है। दूसरी चीज क्या कि जब को पुलिस अगर आपको 24 घंटे के अंदर थाना में ले आया, आपका राइट है कि पुलिस आपको ले जाए, उसके पहले चेकअप कराएगा सदर अस्पताल ले जाके या कोई निकटतम जो चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाके आपको इलाज कराएगा, ये आपका राइट बनता है। और जब आप कोर्ट में आते हैं, कोर्ट में भी मजिस्ट्रेट पूछेगा आपसे नाम पता और आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक ठाक है, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आपको रिमांड किया जाएगा, अदरवाइज आपको रिमांड नहीं किया जाएगा,
1: फिर से चिकित्सा के लिए भेज दिया जाएगा।
0: हाँ, अगर आप
1: स्वस्थ हैं,
0: आप अस्वस्थ हैं तो चिकित्सा के लिए भेज दिया जाएगा। और अगर आप दवा चल रहा है तो जेल में भी व्यवस्था है, जेल में भी अस्पताल होता है, डायरेक्ट आपको अस्पताल शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ भी व्यवस्था है।
1: किसी भी तरह की गिरफ्तारी के लिए वारंट तो आता है सर, तो वारंट के बाद गिरफ्तारी और बिना पुलिस वारंट की गिरफ्तारी में क्या अंतर है और किन परिस्थितियों में ऐसी गिरफ्तारी होती है?
0: देखिए, अपराध का जो श्रेणी है दो श्रेणियों में बांटा गया है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध के लिए वारंट निर्गत नहीं होता, असंज्ञेय अपराध के लिए वारंट निर्गत होता है, नहीं भी होता है, बिना निर्गत किए भी पुलिस आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। सपोज कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और वहाँ पे चसंदीद गवाह है कि आपके अगेंस्ट में ये FIR लॉज होता है कि फलाना आदमी ने मर्डर किया है, आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और जो दूसरा प्रश्न आपका है कि वारंट ये कोर्ट निर्गत करता है, उसका भी बहुत सारा प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए सामान्य अपराध में भी वारंट निर्गत होता है, क्या है कि मान लीजिए आपने बेल करवाया, पुलिस पेपर सबमिट हो गया, प्रीवियस बेल कंफर्म हो गया, उसके बाद कई डेटों से आप नहीं आ रहे हैं और वो स्टेज चल रहा है गवाही का, संज्ञेय अपराध है लेकिन स्टेज चल रहा है गवाही का और आप नहीं आ रहे, 3 डेट 4 डेट अगर आप नहीं आए, आपके वकील साहब ने आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, वैसी स्थिति में वारंट जारी हो सकता है। पहले तो बेल बॉन्ड कैंसिल होगा, बेल बॉन्ड कैंसिल होने के बावजूद अगर आप नहीं आते हैं, 2 डेट जाता है तो NBW संज्ञेय अपराध में भी इशू होने का प्रोविजन है। ये डिपेंड करता है कोर्ट कंसर्न के ऊपर कि कोर्ट आपको कितनी लिबर्टी देती है। और असंज्ञेय अपराध जो है, असंज्ञेय अपराध में पहले तो आप गिरफ्तार हो गए, जेल चले गए, यहाँ से बेल होना नहीं है क्योंकि 3 साल से ऊपर का सजा है उसमें, मर्डर आपने किया, मान लीजिए 302 304 306 भी अगर लगा हुआ है, 306 भी है तब भी आपको यहाँ से बेल मिलना नहीं है। अगर आपके ऊपर हो गया वो हाईकोर्ट से बेल मिलेगा, जब तक बेल नहीं मिलेगा तब तक आप जेल में रहेंगे, तो वारंट तो निर्गत होना नहीं है। लेकिन वारंट बेल हो गया, आप बाहर आ गए, गवाही का स्टेज चल रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, तब न्यायालय जो है सो वारंट निर्गत करता है और वैसे में आपकी गिरफ्तारी होती है और ये दोनों संज्ञेय असंज्ञेय दोनों अपराधों के साथ लागू होता है।
1: न्यायालय ही वारंट जारी करती है या फिर किसी को गिरफ्तार करने के लिए और भी कहीं से वारंट जारी किया जा सकता है?
0: न्यायालय ही असंज्ञेय अपराध के लिए वारंट जारी करता है, संज्ञेय अपराध के लिए भी न्यायालय जारी करता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मिसयूज ऑफ डेट कहते हैं। उसका स्टेज है, केस का स्टेज है, उस स्टेज में जैसे गवाही चल रहा है, आप नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूसली आप नहीं आ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं कोर्ट का ऑर्डर का, तो आपको वारंट निर्गत होगा। हमेशा वारंट निर्गत होता है कोर्ट के द्वारा ही।
1: हम जानना चाहेंगे सर कि गिरफ्तारी के मामले में महिला और पुरुष दोनों के लिए समान प्रक्रिया और अधिकार है या दोनों में अंतर है?
0: आम बोलचाल की भाषा में तो लगता है एक जैसा, लेकिन कानूनी रूप में अंतर है। अंतर ये है कि किसी भी महिला को संध्या 5 बजे के बाद से सूर्योदय 5 बजे के पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। विषम परिस्थिति में ऐसा उदाहरण भी है, विधायक हुआ करते हैं, आज से 2-3 साल पहले ऐसा ही मामला हुआ था, धरना शांतिपूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन कानून की बातें अलग है, पदाधिकारी की बातें अलग है, उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन नियम ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिस पदाधिकारी होनी चाहिए, महिला कांस्टेबल हो, कोई भी महिला ही उसको गिरफ्तार कर सकता है, दूसरा उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता।
1: अच्छा। ये है मैडम
0: कि कस्टडी नहीं लगाना है, कस्टडी नहीं लगाना है, लॉकअप नहीं करना है उसको, महिला को, ये अंतर है दोनों के बीच में।
1: मान लीजिए कि अगर पुलिस कांस्टेबल किसी महिला को गिरफ्तार कर ले तो ऐसी स्थिति में पुरुष कांस्टेबल पर किस तरह की कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है?
0: विषम परिस्थिति में ऐसा हो भी सकता है, विषम परिस्थिति में ऐसा हो भी सकता है, ऐसे उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, विभागीय कार्रवाई होती है उसमें कि आपने कानून को तोड़ा है। व्यवहारिकता और कानून में अंतर है मैडम, कार्रवाई विभागीय कार्रवाई हो सकती है उनकी।
1: गिरफ्तारी के बाद कितने घंटों, दिन या बाद जमानत मिल जाती?
0: मैंने पहले ही आपको कहा कि जब आपकी गिरफ्तारी होती है आपका अधिकार बनता है कि आप जानो कि किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया गया है और ये जुर्म कैसा है, संज्ञेय है असंज्ञेय है। अगर संज्ञेय है तो पुलिस प्रशासन, थाना प्रभारी, भार साधक पदाधिकारी जो थाना का होता है, संज्ञेय अपराधों में 100 मोटो बेल दे देते हैं, यहाँ लिमिटेशन नहीं है, डिपेंड करता है थाना प्रभारी के ऊपर और आपके ऑफेंस के ऊपर, आपने ऑफेंस किस तरह से किया है। दूसरा, अगर संज्ञेय अपराध है तो संज्ञेय अपराध में अगर थाना किसी कारणवश से बेल नहीं दिया तो आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में लाएगा, कोर्ट में सारा प्रोसेस किया जाएगा आपका, जैसे आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा, मेडिकल चेकअप किया गया, उम्र पूछा जाएगा, मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद आपके अपराध अगर जमानतीय है और जमानत बंद पत्र आप देने में सक्षम है तो आपको वहाँ से बेल मिल सकता है, तुरंत मिल सकता है, लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जब तक आप बंद पत्र नहीं देंगे तब तक आपको जमानत नहीं दिया जा सकता। एक और प्रोविजन है कि पीआर बॉन्ड पे भी छोड़ा जा सकता है। बहुत ऐसे मामले हैं कि आदमी को बंधपत्र देने के लिए जमानतदार नहीं मिलते, वैसे स्थिति में कानून में एक प्रोविजन है पीआर बॉन्ड, पर्सनल बॉन्ड पे भी आप छूट सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर, कोर्ट को आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास जमानतदार नहीं है, हमको पीआर बॉन्ड पर छोड़ा जाए। एक और प्रोविजन अभी हमारे यहाँ चल रहा है कि जो व्यक्ति निर्धन है, असहाय है, गरीब है, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग से है, उनके साथ अन्याय हुआ और वो न्याय की प्राप्ति के लिए उनके पास धन नहीं है, संसाधन नहीं है, तो भारत सरकार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार हरेक जिला में रखा है, बनाया है, वहाँ से उन असिंचित व्यक्तियों को जिनको न्याय पाने के लिए संसाधन नहीं है मुफ्त में वकील, मुफ्त में सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही राहत की बात है ऐसे लोगों के लिए। कार्यक्रम में आगे जानना चाहेंगे आपसे कि तय समय के बाद भी पुलिस अगर रिहा नहीं करती है किसी गिरफ्तार व्यक्ति को या जमानत नहीं देती है तो उस पुलिस के ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और भुक्तभोगी इसकी शिकायत किसके पास कर सकता है?
0: जहाँ तक पुलिस प्रशासन जो है आवर हेल्पर्स के रूप में जाने जाते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और अपराध की श्रेणी जो दो तरह का अपराध है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में पुलिस प्रशासन के हाथ भी बंधे हुए हैं। हाथ इस तरह से बंधे हुए कि जिस पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया और अगर वो व्यक्ति का अपराध संज्ञेय अपराध है और बंद पत्र देने में सक्षम है तो देरी नहीं करेगा वो और उसे छोड़ देगा। ऐसा बहुत एहतियात बरता जाता है कि जानबूझकर पुलिस प्रशासन अपने स्तर से हेजिटेट नहीं करता किसी भी मुजरिम को, लेकिन अगर वो असंज्ञेय अपराध है, उसके हाथ बंधे हैं, वो रिहा नहीं कर सकता, वो कानून की प्रक्रिया से ही रिहा किया जा सकता है। लिमिटेशन नहीं है, पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है वहाँ पे। पुलिस प्रशासन का रोल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और हमारे आवर हेल्पर्स के रूप में है वो, और उनका कभी ये सोच नहीं होता कि हम किसी भी व्यक्ति को इरिटेट करें या परेशान करें या समस्या उत्पन्न करें। उसके लिए जो हमारा कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अनुरूप अपना काम करते हैं। और मुझे तो 10 से 11 साल प्रैक्टिस का हो गया, अब तक मैंने नहीं देखा कि किसी पुलिस प्रशासन ने जानबूझकर किसी को परेशान किया हो।
1: तो सर, गिरफ्तारी के बाद जमानत की अवधि के भीतर अगर पुलिस किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाती है गिरफ्तार व्यक्ति को, तो ऐसी स्थिति में किस तरह की सजा का प्रावधान है पुलिस के ऊपर और इसकी शिकायत गिरफ्तार व्यक्ति कहां कर सकता है?
0: मैडम, मैं सहमत हूं, कभी कभी होता है अगर दौड़ धूप करके किसी अपराधी को पुलिस को पकड़ना पड़ता है तो मानसिक संतुलन वो भी खो देते, क्योंकि वो भी मानव है, उनसे भी अपराध हो सकता है। तो उसके लिए प्रोविजन है, अगर किसी व्यक्ति को भार साधक अधिकारी ने या किसी थाना प्रभारी ने या कोई स्टाफ ने, पुलिस सिपाही किसी ने अगर गिरफ्तार किया, उसके साथ मारपीट नहीं करना है, लेकिन अगर मारपीट करता है, उसका चिकित्सा नहीं करवाता, जामा तलाशी नहीं करता है, गलत गिरफ्तारी करता है, वकील से नहीं मिलने दिया जाता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो कंसर्निंग कोर्ट में उसकी शिकायत कर सकता है और कंसर्निंग कोर्ट में जा सकता है, निगरानी के पास जा सकता है, मानवाधिकार के पास जा सकता है। रास्ते बहुत विकल्प खुले हुए।
1: सर, हम जानना चाहेंगे गिरफ्तारी से बचने के कुछ उपाय हो सकते हैं तो उस बारे में बताएं हमारे श्रोताओं।
0: अगर आपने कोई अपराध किया ही नहीं है और आपके अगेंस्ट में थाना में एफआईआर हुआ या कंप्लेन फाइल किया गया है कोर्ट में और वो सेक्शन जो है सो असंज्ञेय अपराध है, तो कानून में प्रावधान है कि आप एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल करो। एक तो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन फाइल कर सकते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ होता है। इन केस अगर डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से अगर बेल आपको न मिला तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इस बीच में अपनी ग्रीवांसेस, आपकी जो शिकायत है, वो कंसर्निंग जिला के एसपी के पास, डीएसपी के पास जाके केस का अपना सुपरविजन करवा सकते हैं। पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए। मान लीजिए सपोज कि किसी के यहाँ 498 का मामला हो गया, किसी महिला को जला के मार दिया गया, आप उसमें ससुर हैं, आपको एक्यूज बना दिया गया है, लेकिन ये घटना हजारीबाग की घटती है, उस समय आप दिल्ली में हैं, जिस दिन की घटना घटी उस समय दिल्ली में या दिल्ली में आप जॉब करते हैं या किसी फौज में कहीं दूसरे अन्यत्र स्थान पर हैं, तो आपको पर्याप्त साक्ष्य देना पड़ेगा कि जिस दिन की घटना है उस घटना के दिन मैं वहाँ नहीं था। अगर पर्याप्त साक्ष्य आपके पास है सुपरविजन में आपका नाम हट जाएगा। लेकिन एक सभ्य नागरिक होने के नाते अगर मुकदमा आपके ऊपर हो गया तो आपकी जिम्मेवारी बनती है, आप जिम्मेवारी से भागे नहीं, कानून को सहयोग करें।
1: और अब आखिर में चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी के मामले में धारा 41 यानी 41 क्या है इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को?
0: ये दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 41 40 ये आम नागरिक को भी ये अधिकार देती है कि अगर आपके सामने कोई अपराध हो रहा है, संज्ञेय असंज्ञेय अपराध हो रहा है, यही संभावना है।

0: संज्ञेय असंज्ञेय अपराध होने का, जान माल की खतरा किसी को हो सकती है, तो आम नागरिक को भी अधिकार है कि वो उस अपराधी की गिरफ्तारी करे। ये आम जन को अधिकार है गिरफ्तारी। आप गिरफ्तार करें उसको, लॉकअप करें, लॉकअप करके कंसर्निंग पुलिस प्रशासन को सौंपे, ये आपका राइट्स बनता
1: है धारा 41 के अंतर्गत।
2: तो सर आपने गिरफ्तारी से संबंधित जो बातें थी, हमारे जो अधिकार हैं कानूनी अधिकार, इस बारे में आप बहुत सारी बातें बताएं, विस्तार से आपने बहुत सारी जानकारियां दी और आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम कानूनी सलाह। कार्यक्रम कानूनी सलाह के अंतर्गत आज आपने सुना भेंटवार्ता, विषय था गिरफ्तारी से संबंधित हमारे कानूनी अधिकार। भेंटवार्ताकार थे अधिवक्ता अनुज कुमार रॉय और इनसे हमारी ओर से बातें कर रही थी श्वेता रानी।

ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

ये आकाशवाणी है। अब आप जागृति शर्मा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। नीट प्रश्न पत्र लीक की पृष्ठभूमि में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में सख्त प्रावधान शामिल करने के लिए लाए गए इस संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कारण सदन की कार्यवाही पहले एक बार करीब 40 मिनट के लिए अपराहन 2:30 बजे तक और फिर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब दिया और उनके जवाब के बाद सदन ने ध्वनि मत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। विधेयक पारित होने के बाद कांग्रेस सांसदों की नारेबाजी के बीच ही अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। चर्चा का जवाब देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा कि नीट प्रश्न पत्र लीक के मामले में सरकार ने फौरन कार्रवाई की और 12 जुलाई को जांच सीबीआई को सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि कल इस मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया गया है और आज से सुनवाई शुरू हो गई है। श्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नए संशोधन विधेयक के प्रभाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक अदालत में सुनवाई के साथ इस मामले में 5 महीने में फैसला आ जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक के विरुद्ध कड़े प्रावधान के साथ मूल कानून 2024 में लागू किया गया था और आज प्रश्न पत्र लीक संबंधी खामियां सामने आने के बाद सरकार ने माना कि कानून को और कड़ा बनाने की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा के दौरान कहा कि दिल्ली में मासूम बच्चों पर जुल्मों सितम ढाया गया, जबकि सरकार ने सर्वोच्च संयम के साथ कार्रवाई की और सुनिश्चित किया कि कोई भी हताहत नहीं हो। श्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने देश में पिछले कुछ साल में 152 बार प्रश्न पत्र लीक होने और इसमें 750 करोड़ बच्चों के प्रभावित होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पता नहीं प्रियंका गांधी ये आंकड़े कहां से लेकर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने 2024 का कानून लागू होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने की बात कही, जबकि ऐसे मामलों में 52 प्राथमिकियां दर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सरकार 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आई, जो कांग्रेस का अधूरा काम था। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 के प्रावधानों के अनुसार परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित संशोधनों के तहत सभी जांच 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी। विधेयक में राज्यों और केंद्र

शासित प्रदेशों को त्वरित अदालतें स्थापित करने का निर्देश देने का भी प्रस्ताव है। ये अदालतें आरोप पत्र दाखिल किए जाने के 3 महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी करेंगी। इससे पहले सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट प्रश्नपत्र लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर बुधवार को लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए। इसका सत्ता पक्ष ने तीखा विरोध किया और उनसे माफी की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि या तो नेता प्रतिपक्ष बताएं कि किस आधार पर उन्होंने देश के एक जिम्मेदार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाया है या फिर वे माफी मांगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी तथ्य जांच और साक्ष्य के किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था की आत्मा पर भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक संगठन ने कब्जा कर लिया है और पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो सिर्फ एक प्रतीक मात्र थे। उन्होंने छात्रों के विरोध प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए ये भी कहा कि प्रदर्शनकारी बच्चों के माता पिता में साहस नहीं है कि वे भाजपा और उसके वैचारिक संगठन का मुकाबला करें, लेकिन ये बच्चे सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि छात्रों ने डर को बाहर निकालकर चुनौती दी और खुलकर सवाल किया। उन्होंने सदन में गृहमंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर दावा किया कि उनमें हिम्मत नहीं है कि वे सदन में आ सकें। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री डरे हुए हैं। इसके बाद उन्होंने छात्रों पर बल प्रयोग का उल्लेख करते हुए गृहमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं तो सरकार को बताना चाहिए कि छात्रों पर बल प्रयोग का आदेश किसने दिया था। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो और कांग्रेस के सदस्यों ने एलओपी को बोलने दो और गृहमंत्री जवाब दो के नारे लगाए। सदन में काफी देर तक गतिरोध की स्थिति बनी रही। श्री राहुल गांधी ने कहा कि सड़कों पर इस देश के भविष्य ने जो किया वो कोई गुस्सा हिंसा और नफरत नहीं थी बल्कि ये युवाओं की अभिव्यक्ति थी तथा सत्तारूढ़ दल समेत सभी दलों को इसका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा के मित्र अपने बच्चों से भी इसके बारे में पूछेंगे तो आंदोलनकारी बच्चों के साथ उनकी भी सहमति ही पाएंगे। उन्होंने कहा कि लोग एक परीक्षा पर जितना पैसा खर्च कर रहे हैं वो सरकार के शिक्षा बजट से ज्यादा है। सत्ता पक्ष के टोका टोकी के चलते राहुल गांधी ने बोलने से इनकार कर दिया और अपनी सीट पर बैठ गए। इसके बाद श्री रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने एक असंसदीय शब्द का इस्तेमाल किया जिस पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें सुनने को तैयार हैं और वे अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि आप भावुक चेहरा दिखाकर सदन को गुमराह नहीं कर सकते। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अच्छी व्यवस्थाएं रही हैं और अच्छी मर्यादाएं रही हैं, मर्यादा बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई मर्यादा और तर्क से बोलता है तो देश सुनता है और सम्मान भी करता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी श्री राहुल गांधी से भाषण जारी रखने की अपील की और सत्ता पक्ष के सदस्यों से उनके भाषण के बीच में टीका टिप्पणी नहीं करने को कहा। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने भाषण जारी रखा। हालांकि दोनों पक्षों में नोकझोंक की स्थिति बनी रही और कार्यवाही 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने जन्म और मृत्यु के पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाला विधेयक भी आज सदन में पेश किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। संसदीय प्रक्रिया के तहत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करने के लिए विपक्ष के कुछ सदस्यों के नाम पुकारे। हालांकि कोई विपक्षी सदस्य नहीं बोला और इसके बाद श्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 2023

कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर दो स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज उस विधेयक को पारित कर दिया जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। उच्च सदन ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित विपक्ष के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे क्योंकि वे गृहमंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी सहित विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर गए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी, बीजू जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि यह विधेयक देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश के स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों का प्रिय नारा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के कारण वंदे मातरम को आजादी के बाद वो सम्मान नहीं प्राप्त होने दिया जो उसे मिलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इसी कारण वंदे मातरम के केवल 2 अंतरों को ही सरकार ने स्वीकार किया और इसके 2 ही अंतरे सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों में गाए बजाए जाते थे। श्री राय ने कहा कि आजादी मिलने के बाद पहले दिन प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देश पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी पर पूरा वंदे मातरम गाया था। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या ऐसे गायन में लगी किसी सभा में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना अथवा दोनों के प्रावधान हैं। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री तथा आरपीआई के रामदास अठावले, भाजपा के राधामोहन दास, मयंक कुमार नायक, डॉ अशोक कुमार मित्तल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोला बाबू राव, तेदेपा के विजया चिंता कायला, राजद के मनोज कुमार झा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना की डॉ ज्योति नागनाथ वाघमारे, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू, बीजेद की सुलता देव और अन्ना द्रमुक सदस्य डॉ एम थंबीदुरई ने हिस्सा लिया। विधेयक पारित होने के बाद भाजपा के माधवराव गोपछड़े, डॉ अनिल सुखदेवराव बोंडे और डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी तथा भाजपा के नाम निर्देशित सतनाम सिंह संधु ने आसन की अनुमति से विशेष उल्लेख के जरिए लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। विशेष उल्लेख के बाद 3:15 पर पीठासीन अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने उच्च सदन की बैठक पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। सदन की बैठक अब बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे होगी। विपक्षी सांसद दिल्ली में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यालय में दिल्ली पुलिस के प्रवेश और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष आयशी घोष को गिरफ्तार करने की कोशिश का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने नीट प्रश्नपत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग भी दोहराई। सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने आयशी घोष का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में दिल्ली पुलिस की एक टीम 2021 में जेएनयू में हुए प्रदर्शन से जुड़े मामले में आयशी घोष को गिरफ्तार करने के लिए कल पार्टी कार्यालय में दाखिल हुई। उनकी बात का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल किया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के कार्यालय में पुलिस के प्रवेश का आदेश किसने दिया। आरोपों का जवाब देते हुए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि यह एक सामान्य कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होती है और उसने उसी के अनुरूप कार्रवाई की है। श्री नड्डा ने कहा कि वे भी छात्र आंदोलन से जुड़े रहे हैं और उन्हें भी ऐसी कई कार्रवाइयों का सामना करना पड़ा था। माकपा तथा अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने इस घटना पर विरोध जताया। सभापति ने सदन में शून्यकाल शुरू करने और आसन की अनुमति से सदस्यों से अपने अपने मुद्दे उठाने के लिए कहा।
इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में पिछले सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री

प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी उठाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इसका विरोध किया। विपक्षी सदस्य श्री शाह के बयान की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल चलाने का प्रयास किया और भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौर, तेजवीर सिंह, डॉ लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राजीव भट्टाचार्य जी ने यातायात जाम, सरकारी स्कूलों में खेल के मैदानों की स्थिति और खाली पड़ी जमीनों में सौर ऊर्जा उत्पादक संयंत्र लगाने संबंधी मुद्दे उठाए और सरकार से इनके समाधान की मांग की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी था। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दिया। बैठक स्थगित करने से पहले सभापति ने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों को आसन के समक्ष नहीं आने की चेतावनी दी। 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा है। मॉनसून सत्र में आज पहली बार उच्च सदन में शून्यकाल हुआ, लेकिन केवल 4 सदस्य ही अपने मुद्दे उठा पाए। इस सत्र में प्रश्नकाल एक बार भी नहीं हो पाया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत।

कार्यक्रम आपकी चाहत सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हाजिर हैं हम आपकी ढेर सारी फरमाइशी खतों को और खूबसूरत नगमों को लेकर। कीजिए स्वीकार श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुना रहे हैं अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में, फिल्म है दिलबर। पसंद है आप सभी दोस्तों की माली टोला खिरगांव से। आप हैं वीरेंद्र भगत, मालती भगत, विकास भगत, जितेंद्र, रितेश, रोहित, ऋषि और राहुल भगत। इसी गीत को पसंद किया है चेपाकला बड़का गांव से। आप हैं बाबूलाल ठाकुर, सविया ठाकुर, दिलेश्वरी, भरत, मंजू, संतोष, विकास कुमार ठाकुर, प्रभात कुमार, जितेश, आदर्श, अनुराधा, रुक्मणी, प्रियंका और दीपिका। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत आया रिंगनी छत्तीसगढ़ से। आप हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा और परिवार के सभी सदस्य। इसी गीत के लिए आप सभी दोस्तों ने भी खत भेजा। आप हैं तस्नीम कौसर, शाहिन सुल्ताना, इफ़ज़ाल ताज और एम ए मलिक। आप हैं बरकाकाना से। तो आइए, आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये पहला गाना, फिल्म का नाम दिलबर।

दिलबर फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, अलका याग्निक की आवाज थी। और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म का नाम बेटा। पसंद आप सभी दोस्तों की। कालका से आप है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और परिवार के सभी सदस्य। मोहाली से आप हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है बड़ा बाम्बू गांव सुपाई साई से। आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा। दिल्ली से आप हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ये खत आया हजारीबाग पतरातू से। बेसिल खलखो, मधु, ऋतु, रचना, मीतू, श्वेता, पल्लवी, रोहित, प्रवीण, नदीम, मनीषा और परिवार के सभी सदस्यों का आपने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा। नया टोला भिकनपुर भागलपुर से गणेश पासवान, सुधा पासवान, पूजा पासवान, विकास पासवान, नितिन पासवान और मनोज पासवान ने। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं बेटा फिल्म का ये गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के युगल स्वरों में आप सुन रहे थे बेटा फिल्म का ये गाना। और अब कार्यक्रम में अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम लोफर, आवाज आशा भोसले की, पसंद आप सभी दोस्तों की। ग्राम पूछरा से आप हैं महेश राम, वर्षा देवी, सरिता देवी, पिंटू फुलवासी देवी और परिवार के सभी सदस्य। ये खत आया है ग्राम सिंघानी, जिला हजारीबाग से आप हैं लक्ष्मी रानी, सृष्टि रानी, रूबी देवी, श्री प्रसाद, आशा देवी और सुमन कुमारी। मेन रोड बड़कागांव से दिनेश मालाकार, नीरज मालाकार, आशीष विकास, रंजना गुड़िया, गोलू भोला और इनके मम्मी पापा ने भी इसी गीत को पसंद किया है। झुमरी तिलैया से आपने भी इसी गीत के लिए फरमाइशी खत भेजा, आप हैं जगन्नाथ प्रसाद साहू। खिरगांव माली टोला से कल्लू माली, अरविंद मालाकार, आदर्श मालाकार और अनिकेत मालाकार ने भी इसी गीत को सुनना चाहा है। तो चलिए हम आपको बिना देर किए सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना, फिल्म का नाम लोफर, आवाज आशा भोसले की।

आपने ट्यून किया 102.1 मेगाहर्ट्ज और इस वक्त आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत। और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। खरसावां से आप हैं सुकरा नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक, मंजू नायक और प्रद्युम्न नायक। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जफर हुसैन, नाइमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी। सीसीएल बरकाकाना से आप हैं रविंद्र वर्मा, अमन वर्मा, आरती वर्मा, उर्वशी, रिया, परी, कोको, चारू और आरके वर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा और परिवार के सभी सदस्य। स्टेशन रोड झुमरी तिलैया से आप हैं विजय शर्मा, मनोज मगधिया, हरजीत सिंह और अंशु मगधिया। तो आइए आप सभी दोस्तों की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत। फिल्म का नाम कांटे, आवाजें सुनिधि चौहान और आनंद राज आनंद का।

सुनिधि चौहान और आनंद राज आनंद के युगल सुरों में गाए फिल्म कांटे के इसी गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी चाहत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या के आज का अंक न्यूज 8:09 और स्पोर्टलाइट आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान करने वाला पेपर लीक रोकने वाला विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता व्यक्त की। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोक
1: अब समाचार विस्तार से लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर भी।
1: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: कल ही प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: श्री सिंह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने की भी आलोचना करते हुए इसे अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। ये विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक के कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
3: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय मंत्रियों और भाजपा के नेताओं ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना की। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि श्री राहुल गांधी अपने संवैधानिक पद की गरिमा बनाए रखने में विफल रहे हैं।
5: आज राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो संसदीय नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी पर आरोप लगाया जबकि उनके पास इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है। कभी भी कोई लाठी चार्ज, टियर गैस, कैनिंग या पानी के बौछार का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है। ये उस मौके पर अनलॉफुल असेंबली को देखते हुए उस मौके के गजेटेड अफसर, पुलिस अफसर और प्रशासन के लोग ये निर्णय लेते हैं। ये मिथ्या आरोप उन्होंने माननीय गृह मंत्री पर लगाया है।
1: केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरोप लगाया कि सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भाषा संसदीय कार्यवाही के लिए अनुचित थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जनभागीदारी आंदोलन है। इस पहल का लक्ष्य जागरूकता, सामुदायिक सहभागिता और निरंतर जनभागीदारी को बढ़ावा देकर नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए युवाओं को सामूहिक राष्ट्रीय मिशन में एकजुट करना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में भारतीय पारंपरिक कला रूपों के कलाकारों से मुलाकात की और उनके कार्यों का अवलोकन किया। बनारस भित्तिचित्र, थंका नायका, केरल भित्तिचित्र, बसोहली सुरपुर और मैसूर जैसी कला शैलियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 12 कलाकार कलाकार निवास कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति भवन में रह रहे हैं। कलाकार निवास कार्यक्रम भारत की कलात्मक परंपराओं की भावना का उत्सव है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज आगामी नीट स्नातक काउंसलिंग 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। श्री नड्डा ने कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और योग्यता आधारित तरीके से संचालित की जानी चाहिए। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान से राज्य के बड़े हिस्से को मानवीय संकट में डाल दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ के कारण 4 लोगों की मौत हो गई है।
6: बाढ़ का पानी लगातार आगे बढ़ रहा है। उफनती बैतरणी नदी भारी तबाही मचा रही है जबकि भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर में बाढ़ की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मयूरभंज में लगातार बारिश और नदियों के उफान ने संकट को और बढ़ा दिया है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि 304 ग्राम पंचायत में लगभग 3,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। बचाव और राहत कार्य जारी है। इस बीच आईएमडी

0: कलाहंडी, नवरंगपुर और कोरापुट जिले में ऑरेंज वार्निंग जारी की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार वर्षा के कारण कई जिलों में जनजीवन प्रभावित है।
2: छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पंटोरा में स्थित कन्या आश्रम में पानी भरने से 50 से अधिक छात्राओं को दूसरे स्थान पर भेजा गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी जिला कलेक्टरों सहित अन्य अधिकारियों को सतर्क रहने और जरूरी उपाय करने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान छत्तीसगढ़ के बालोद और कांकेर जिलों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, कोंकण, गोवा, पंजाब, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में भी तेज वर्षा का अनुमान है। ऊपरी असम में आई विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर विधानसभा का पहला बजट सत्र आज निर्धारित समय से दो दिन पहले समाप्त हो गया। एक रिपोर्ट।
3: पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री अतुल बोरा ने सदन को बताया कि राज्य सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम कल ऊपरी असम का दौरा करेगी ताकि बाढ़ पीड़ितों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जा सके। सदन ने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में एक मिनट का मौन भी रखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। उधर ब्रिटेन में रहने वाले कश्मीरियों ने आज बर्मिंघम स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए दूतावास के बाहर जूते रखे। कई ब्रिटिश सांसदों ने कथित कार्रवाई की निंदा की। सांसद नाज शाह और इमरान हुसैन ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी को बर्बर बताया और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण समाधान की मांग की। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नौसेना के लिए निर्मित 8 पनडुब्बी रोधी जलपोतों में से 7वें जलपोत मछलीपट्टनम का आज जलावतरण किया गया। ये जलपोत समुद्र के भीतर की निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान और कम तीव्रता वाले समुद्री अभियान के साथ साथ बारूदी सुरंग भेदन क्षमता से लैस है। 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री की ये परियोजना भारतीय पोत निर्माण उद्योग की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करती है। दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई के नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी को गोली लगने की अफवाहों का खंडन किया है। ये अफवाह मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के निष्कर्षों से मेल नहीं खाती। पुलिस ने कहा कि सर्टिफिकेट में घाव को हल्की चोट बताया गया है। डॉक्टर के अनुसार गोली लगने का कोई सबूत नहीं है। पुलिस ने लोगों को ऐसी अफवाह फैलाने से पहले प्रामाणिक स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक निजी स्कूल में 5 वर्षीय बच्चे के साथ शिक्षक द्वारा कथित यातना और अमानवीय व्यवहार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और वाराणसी पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने कहा है कि लगभग 6 दशकों की हिंसा के बाद देश वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उपलब्धि वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए 2015 की राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के दृढ़ कार्यान्वयन तथा केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से हासिल हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमरीश सक्सेना।
4: सेंसेक्स 889 अंक ऊपर चढ़कर 77,655 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 265 अंक की तेजी के साथ 24,250 पर बंद हुआ। उधर अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 21 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर की तुलना में 95.64 रुपये पर बंद हुआ।
1: ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारतीय मुक्केबाजों ने अब तक 9 पदक सुनिश्चित कर लिए हैं। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 7 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। जम्मू कश्मीर में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रीनगर के मैसूमा स्थित ऐतिहासिक दशनामी अखाड़े से पारंपरिक पवित्र गदा चारी मुबारक को विधिपूर्वक निकाला गया। ये समारोह श्री अमरनाथ जी गुफा मंदिर की वार्षिक यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रावधान वाला पेपर लीक रोधी विधेयक पारित किया। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 4 लोगों की मौत और 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाज अंकुश, साक्षी, अरुंधति, सचिन और नरेंद्र ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब तक 9 भारतीय मुक्केबाजों ने पदक सुनिश्चित किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Lok Sabha passes anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. Rajya Sabha clears legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem, makes insult to national song a criminal offence. Flood situation grim in Odisha, claiming 4 lives and affecting nearly 4 lakh people. Heavy rainfall also disrupts normal life in Chhattisgarh. UN Human Rights Office voices concern over Islamabad's crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Death toll rises to 40. At the Commonwealth Games, 9 Indian boxers assure medals for the country after sealing semi-final berths. The Lok Sabha today passed the anti-paper leak bill proposing tougher penalties and fast-track courts to curb exam malpractices. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 incorporates several significant provisions including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of properties of convicted offenders. The legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the amendment in the bill has been brought to make the law more stringent and ensure speedy justice in paper leak cases.
6: The earlier bill and the amendment today are reaffirmation of this government's deep commitment to safeguard the welfare of the students and the youth of this country. And therefore, this bill can be described as a milestone legislation in the history of Indian Parliament.
5: Dr. Singh criticized leader of the opposition and Congress MP Rahul Gandhi for using unparliamentary language, saying it is inappropriate and unfortunate. Replying to Mr. Gandhi's accusation against Union Home Minister Amit Shah, Dr. Singh said the government repeatedly clarified that no shots were fired and only tear gas was used.
7: ये बार बार स्पष्ट किया गया.
8: The government repeatedly clarified that no bullets were fired and that tear gas was used. And if no bullets were fired, then the question of giving an order to fire does not arise at all. Moreover, the authority to issue such an order rests with the magistrate, not the minister.
7: मंत्री के पास नहीं.
5: Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju strongly objected to the remarks of Mr. Gandhi and demanded an apology from him in the House. Earlier participating in the discussion, Congress MP Rahul Gandhi said the students' protest on the NEET issue was not violence or hatred but a deep expression of the youth and all political parties must respect this expression. After the passage of the bill, the lower house was adjourned till tomorrow. On the passage of the Anti-Paper League Bill in the Lok Sabha, Education Minister Prahlad Joshi said the legislation aims to dismantle the paper leak ecosystem and increase transparency, credibility and fairness in the examination process. Home Minister Amit Shah has congratulated every student in India on the passage of the bill. In a social media post, Mr. Shah assured that the Narendra Modi government will spare no one who attempts to imperil the future of students and will leave no stone unturned to ensure that they face the full wrath of the law. The Rajya Sabha has passed the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. The bill will further amend the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The proposed legislation seeks to give Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana and making insult to the national song a criminal offence. These offences are punishable with imprisonment up to 3 years, a fine or both. Replying to a discussion on the bill, Minister of State for Home Nityananda Rai said the amendment in the bill reflects the collective commitment to the soul of India, national consciousness, cultural heritage and the ideals of the freedom struggle.
8: I humbly urge the Honourable House to pass the Prevention of Insults to National Honour Bill 2026 unanimously and contribute towards further strengthening the unity and honour of our nation and preserving the immortal history of our freedom struggle.
5: After the passage of the bill, the upper house was adjourned till tomorrow. Our correspondent brings a report on today's proceedings in both houses of parliament.
9: Both the Houses of Parliament today transacted legislative business. The Lok Sabha passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, while the Rajya Sabha cleared the Prevention of Insults to National Honour Amendment Bill 2026. Minister of State for Home Nityanand Rai introduced the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The Lower House also extended the tenure of Joint Parliamentary Committee examining the legislation related to One Nation, One Election up to the first day of the last week of the winter session of Parliament 2026. Both Lok Sabha and Rajya Sabha also faced adjournments today as opposition created uproar over alleged police action during students' protest over NEET issue, and due to this, question hour in both the houses could not be taken up. The Lok Sabha is scheduled to take up Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 tomorrow, the Micro, Small and Medium Enterprises MSME Development Amendment Bill 2026 is scheduled to be taken up in Rajya Sabha. With Anand Kumar, Anupam Mishra, Akashwani News, Delhi.
5: Several union ministers and BJP leaders today criticized Leader of Opposition Rahul Gandhi over his remark on the Union Home Minister Amit Shah in the Lok Sabha regarding alleged police action during the students' protest on the NEET paper leak issue. Talking exclusively to Akashwani, Union Minister S.P. Singh Baghel said Mr. Gandhi failed to uphold the dignity of the constitutional position he holds.
10: Today Rahul Gandhi did not uphold the dignity of the leader of the opposition. Instead, he used words that were unparliamentary. He made allegations against the Home Minister despite having no evidence to substantiate them. At no point a minister issues order for a lathi charge, firing tear gas or water cannon. Such decisions are taken by the senior officers, police officials and administrative authorities present at the spot, depending on the situation and circumstances.
5: Union Health Minister Jagat Prakash Nadda today reviewed preparedness for the forthcoming NEET UG counselling 2026. The Ministry of Health and Family Welfare said it reaffirms the government's commitment to ensuring a transparent, merit-based, technology-enabled and student-friendly admission process for undergraduate medical courses across the country. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of stories and more, log

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, किसी रिश्ते का सबसे दुखद पल या यूं कहें दुखद क्षण वो नहीं होता जब दो लोग अलग होते हैं। दुखद पल वो होता है जब दो लोग साथ रहते हुए भी एक दूसरे तक पहुंच नहीं पाते। शब्द होते हैं पर आपसी समझ नहीं होती, साथ है लेकिन सुकून नहीं होता, बातचीत होती है लेकिन दिल की बात नहीं होती। और ये रिश्ता बाहर से तो वैसा ही दिखता रहता है लेकिन भीतर उसका जीवन खत्म होता जाता है।

बहुत लोग साथ रहते हैं फिर भी एक दूसरे को कभी महसूस नहीं कर पाते। उनके बीच हजारों मील की दूरी होती है। स्त्री और पुरुष का रिश्ता सिर्फ एक छत के नीचे साथ रहने का नाम तो नहीं है ना। किसी भी रिश्ते को बाहर से देखने पर वो अक्सर दो लोगों की कहानी दिखाई देता है, लेकिन भीतर उतरकर देखिए तो सही, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते। हाँ, वहां दो लोग रहते हुए भी नहीं रहते।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आज के फनकार।

आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं कॉमेडियन अभिनेता जॉनी वॉकर।

0: घबराए।
1: जी हाँ, सिने जगत का ये लोकप्रिय नाम है इनका, लेकिन इनका नाम कुछ और है। आपको बता दें, 11 नवंबर 1920 के दिन इनका जन्म हुआ था बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी के रूप में। बाद में ये फिल्मी नाम गुरुदत्त साहब ने इन्हें दिया, जॉनी वॉकर। पर्दे पर इन्हें देख करके आप जरूर मुग्ध हो गए होंगे, क्योंकि कॉमेडी के रूप में इन्होंने बहुत ही सुंदर काम किया।
0: प्यार का हो बेझगड़ा या बिजनेस का हो झगड़ा, सब लफड़ों का बोझ हटे जब पड़े हाथ एक तगड़ा।

भारतीय हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय कॉमेडियन के रूप में जॉनी वॉकर हमेशा याद किए जाएंगे। बिना पिए पीने वाले की भूमिका इतनी सुंदर ये पर्दे पर निभाते थे कि इनकी छवि को देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे, दर्शक हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। इनका बहुत ही आकर्षक चेहरा था, उस पर से पेंसिल की तरह पतली इनकी मूछें थी जिन्हें देखते ही हंसी आ जाए। जॉनी वॉकर, इनका जन्म 11 नवंबर 1920 को हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, और एक मिल वर्कर के यहाँ इनका जन्म हुआ था। बाद में इनका परिवार बॉम्बे में आ गया और यहाँ इन्होंने बहुत सारे काम किए जीविकोपार्जन के लिए। फिल्मों में इन्हें छोटे मोटे रोल मिलने लगे। और आगे की बातें से पहले हम आपको गाना सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का।

0: कर सुन बंधु ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके।
2: जॉनी वॉकर की फिल्मों का सुनहरा दौर था सन 1951 से लेकर सन 1997 तक यानी 1997 तक। मुंबई आने के बाद जॉनी वॉकर ने बेस्ट की बसेस में कंडक्टर का काम किया। बेस्ट की बसेस में ये कॉमेडी का रोल भी करते थे और जो पैसेंजर थे उनका मनोरंजन करते थे, लोग

उस जमाने के सुप्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी जॉनी वॉकर को बस में देखते रहते थे, वहाँ ये एक्टिंग करते थे। बलराज साहनी सन 1951 में फिल्म बाजी की स्क्रिप्ट लिख रहे थे। उसी दौर की फिल्म हलचल में इन्हें एक भूमिका दी गई। गुरुदत्त साहब जो कि उस जमाने में फिल्म का निर्माण करते थे, उन्होंने इनके काम को देखा और पसंद किया और बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी को एक नया नाम दिया, जॉनी वॉकर।

0: लंबा जीवियों को लड़ा की जरूर लुम्बा ने मुझे कहे मारे मारा कर दिया पापा
1: चाहे कोई खुश हो चाहे गालियां हजार दे
0: अरे मस्तराम बन के जिंदगी के दिन गुजार दे।
2: फिल्मकार गुरुदत्त जॉनी वॉकर की भूमिका को देखकर बहुत ही प्रभावित होते थे, खास तौर से पीने वाले की भूमिका। लेकिन आगे चलकर इन्होंने तरह तरह की भूमिकाएं की, लेकिन उसमें कॉमेडी का पुट हमेशा होता था और उस जमाने के नायक के बराबर कॉमेडियंस को भी सम्मान मिलता था।

0: मसला बात नहीं है डर की, ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर,
1: लाइन क्लियर बाय।
2: इनकी कामयाब फिल्में थी मेरे महबूब, सीआईडी, प्यासा, चोरी चोरी। इन फिल्मों में कॉमेडी के साथ साथ चरित्र अभिनेता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया और इन्हें बहुत ही सम्मान मिला। सन 1950 से लेकर 1960 तक फिल्मी करियर जॉनी वॉकर का बहुत ही सुनहरा था, किंतु इसके बाद फिल्मकार गुरु दत्त के निधन के बाद जॉनी वॉकर का करियर डगमगा गया। सन 1964 से इन्हें एक नया मोड़ मिला फिल्मी करियर में, जब जॉनी वॉकर डायरेक्टर बिमल रॉय और विजय आनंद से मिले और इन दोनों ही निर्देशक और फिल्मकारों ने इन्हें बहुत ही गोल्डन चांस दिए।
3: जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा, जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा है, हम जो थोड़ी सी भी के जरा झूमे, हाय सबने देखा जंगल में।

0: जॉनी वॉकर को अवार्ड्स भी मिले। फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड मधुमति फिल्म में विशेष भूमिका के लिए, फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड शिकार फिल्म की भूमिका के लिए।
1: आज दहिया का याद आवत है,
2: तबीयत नरम है आज।
1: नरम है तो हमसे पूछो नुक्सा, कंपाउंडर के हाथ के नीचे भी काम किया है, बोलो क्या तकलीफ है।
2: नींद नहीं आती रात भर।
1: नींद नहीं आवत है पर का है? रोग तो बोलो, सर दुखत है, पेट दुखत है?
2: दुखता उखता नहीं, कस मसा है सारा बदन, नींद नहीं आती।
1: ओ ये तो नवा रोग लगा थे, सोचो तेज बहादुर, खूब सोचो।
2: सोचना कैसा, कुछ इलाज करो ना हमारा।
1: ठहरो, पहले ये बताओ सोवत कैसी हो, चित पट के करवट
2: कैसे? ऐसे
1: बराबर लेटो,
2: भाता है ना ऐसा लेटना।
1: नींद ना आए तो क्या फायदा।
2: अच्छा ये कैसा?
1: दुई कौड़ी का।
2: तो फिर कैसे?
1: इधर घूमो करवट,
2: पल्ले नहीं पड़ता, तुम ही घुमा लो ना।
1: गोबर गणेश कहीं की।
0: जॉनी वॉकर ने 300 फिल्मों में काम किया। इनकी चर्चित फिल्में हैं सन 1951 में बाजी।
3: मिस्टर जो डिक्रूज, सन ऑफ जॉर्ज डिक्रूज, तुम उधर क्या देखता?
4: उधर मैं टेलीफोन देखता था। तुमने कितना अच्छा टेलीफोन लगाया, नहीं डबल कनेक्शन वाला, हॉल में भी लगा और बेडरूम में भी।
3: यू फूल, तुम हमको फूल बनाता, तुम टेलीफोन को नहीं छोकरी को देखता था।
4: छोकरी छोकरी टेलीफोन छोकरी के हाथ में था?
3: यस।
4: ओ गॉड, जब ही हम सोचता था वो टेलीफोन वाला हाथ आदमी का नहीं हो सकता है, कहीं को हम खाली उसका हाथ देखता था ना। लेकिन डार्लिंग, जो बात तुम्हारे हाथ पे है ना वो किसी में नहीं। डार्लिंग तुम इसी लड़की का बात करता था ना, इसका अंकल पैसे नहीं भेजता है।
3: हम उसका बात करते तो वो ठीक है, पर तुम कहीं को उसका बात करता है। डोंट फॉरगेट तुम हमारे पेइंग गेस्ट है।
5: वो तुम्हारा पेइंग गेस्ट हो या हमारा, रेंट किसी को नहीं देगा। लूसी बहुत रात हो गया, सोने दो ना बेचारे को, नहीं सोएगा तबीयत खराब होगी।
6: राइट राइट।
3: मिस सुजन फर्नांडिस, तुम अभी तक नहीं सोया?
5: कैसे सोएगा, नींद नहीं आता।
4: जब तक मैं नहीं सोऊंगा ये नहीं सोएगी।
3: यू शट अप। सुजन तुम्हारा ड्रेसिंग गाउन किधर है? तुम क्या बोला, तुम क्या बोला?
4: मैं बोला तुम सिस्टर हो, कितना अच्छा है, साथ में सोता है साथ में उठता है। मैं तुम लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा।
7: तुम जिसे कहता है शादी, रोनो है पूरा।

0: बर्बादी, जो तुम ललचाओगे पीछे पछताओगे, माइंड यू जाएगी आजादी।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने हास्य अभिनेता जॉनी वॉकर पर। चलते चलते हम आपको बता दें, आज के इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर था शहनाज अख्तरी का, संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी किस्मत। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम जुदाई। आवाजें हैं अमित कुमार और अलका याग्निक की।

आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी ज्वेल थीव। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के युगल सुरों में फिल्म हम दोनों का ये गाना।

आपने ट्यून किया है 102.1 मेगाहर्ट्ज़ और इस वक्त आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम मेरे सनम।

आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक फिल्म से। कार्यक्रम एक फिल्म के अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं वर्ष 2001 में आई फिल्म कभी खुशी कभी गम के कुछ चुनिंदा गीत। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनने वाले आप तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। लीजिए पेश है फिल्म कभी खुशी कभी गम का ये पहला गीत।

करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म कभी खुशी कभी गम वर्ष 2001 में रिलीज हुई और यह फिल्म वर्ष 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के कुल बजट की बात करें तो 30 से 40 करोड़ रुपए रही इसकी बजट, और बॉक्स ऑफिस पर देश विदेश के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 136 करोड़ रुपए इस फिल्म ने कमाई की।

फिल्म कभी खुशी कभी गम का गीत अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक फिल्म के अंतर्गत। दोस्तों हम आपको बता दें कभी खुशी कभी गम फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी जैसे दिग्गज कलाकार। इस फिल्म के सभी गीतों को लिखा समीर और अनिल पांडे ने। गीतों के लिए धुन तैयार किए जतिन ललित की जोड़ी, संदेश सांडिल्य और आदेश श्रीवास्तव ने।

इस ब्लॉकबस्टर फिल्म के अवार्ड्स की बात करें तो 47वें फिल्म फेयर अवार्ड्स से 47वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में से सम्मानित किया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड काजोल को प्रदान किया गया इस फिल्म के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर अभिनेत्री जया बच्चन को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही IIFA स्क्रीन और जी सिने अवार्ड से भी इस फिल्म को नवाजा गया।

तो काफ़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही और इसके सभी गीतों को काफ़ी पसंद किया गया लोगों के द्वारा और ये फिल्म भी काफ़ी खूबसूरत बनी थी जिसकी वजह से इसकी लोकप्रियता आज भी है। चलिए हम आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का ये आखिरी नगमा।

कार्यक्रम एक फिल्म से यही समाप्त होता है। आज की हमारी फिल्म थी कभी खुशी कभी गम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम था। हम आकाशवाणी के हजारीबाग केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.1 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए। मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि यह विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
1: संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कार्य संपन्न हुए। हालांकि कार्यवाही के दौरान कई बार व्यवधान भी देखने को मिला। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। इसके अलावा लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक की जाँच कर रही संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल संसद के शीतकालीन सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। नीट मुद्दे को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार बाधित हुई। इस कारण लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से आज संसद भवन में स्काई रूट एयरोस्पेस के सह संस्थापक और सीईओ पवन चंद्रा ने अपनी टीम के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के बारे में उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में स्काई रूट एयरोस्पेस की प्रेरणादायक यात्रा, विक्रम 1 मिशन और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के भविष्य को लेकर कंपनी की योजनाओं पर चर्चा हुई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। मरने वाले प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 40 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरमी लॉरेंस ने कहा है कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। ओडिशा में लगातार जारी तेज बारिश और नदियों में आए उफान ने राज्य के विशाल भूभाग को गंभीर मानवीय संकट में डाल दिया है। इस कारण 4 लोगों की मृत्यु हो गई है और हजारों लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ने बाढ़ की बिगड़ती और बेहद अस्थिर स्थिति के मद्देनजर बचाव और राहत कार्यों को

तेज कर दिया है। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की है। पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणॉय, थारुन मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हजारीबाग केंद्र है FM 102.1 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 और 15 सेकंड हो रहे हैं। यही संपन्न होती हमारी आज की यह सभा। कल सुबह 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे कल के कार्यक्रमों को साथ लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।